अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। और अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम श्री राम चरित मानस गान। आज के गायक कलाकार हैं रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर, और साथ ही संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्रीराम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, और अब अगला कार्यक्रम है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। इस कार्यक्रम में आज हम आपको एक ही गायक कलाकार हरिओम शरण और साथियों के स्वर में गाई चंद भक्ति गीत सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं ये पहली भक्ति रचना।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण में एक ही गायक कलाकार हरिओम शरण और साथियों के गाए चंद भक्ति रचना, और अब सुनते हैं ये भक्ति गीत।

हरि ओम शरण और साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम समर्पण अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।

हम आकाशवाणी के जायवासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पे। सुबह के 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद सुबह के 5:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत में रीना मिश्रा के गाए चंद गीत। सुबह 7 बजे सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा। समाचार प्रभात में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह के 8 बजे। आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार सुबह के 8:30 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक में आज आप सुनेंगे कैलाश चंद्र महतो और साथियों के गाए चंद कुरमाली लोकगीत सुबह के 8:40 पर। कार्यक्रम विविधा हम प्रसारित करेंगे सुबह 9 बजे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे NCERT। पूर्वाहन के 10:30 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। हमारी शाम की सभा आरंभ होगी कार्यक्रम विवरण के साथ शाम के 5:02 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता में आज आप सुनेंगे एक ही संगीतकार को शाम के 5:05 पर। फिल्म संगीत सुनेंगे शाम के 5:30 पर। मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनेंगे शाम के 6 बजे। सुबह 6:02 पर सुनेंगे बांग्ला कार्यक्रम सात्र।

स्वास और ग्रामीण जीवन, इस पर वार्ता सुनेंगे भोलारा नाथ टूडू के, भोलानाथ टूडू से। साथ ही मिशन वात्सल्य योजना पर जानकारी प्राप्त करेंगे। शाम 6:55 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। शाम 7:30 पर सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान माने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। पालक, मेथी, धनिया और मूली की खेती पर चर्चा होगी आज इस कार्यक्रम में। साथ ही सुकर पालन से लाभ पर जानकारी प्राप्त करेंगे कृष्णा कुमार से। इनसे बातें करेंगे ठाकुर चंद्र मुर्मू। कार्यक्रम के साथ होंगे ठाकुर चंद्र मुर्मू। फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे रात्रि के 8:00। समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे रात्रि के 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में।

रात्रि 10 बजे सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग आप सुनेंगे रात्रि के 10:30 पर। रात्रि 11 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रीना मिश्रा के गाए चंद गीत।

और अब अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम जुहार चायवासा। अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के समान है, ये अनमोल वचन है मुंशी प्रेमचंद जी की। इस वचन के साथ ही कार्यक्रम जुहार चायवासा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं देशभक्ति गीत महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में, जिसे हमने लिया है फिल्म उपकार से। गीत रचना गुलशन वावरा की है, संगीतिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ों में, जिसे हमने लिया है फिल्म सीता और गीता से। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है आर जी बर्मन ने।

0: और अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर के स्वर में, आनंद बख्शी की रचना है, एस डी बर्मन ने संगीत दिया है, फिल्म का नाम है आराधना।
1: तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मी की निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना, ना।

गीत, इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप अभी सुन रहे थे लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी की रचना थी, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। और अब सुनते हैं ये अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म घरौंदा से। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है जयदेव ने और आवाज़ें हैं भूपेंद्र और रूना लैला की।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह, रूना लैला की आवाज़ों में फिल्म घरौंदा का गीत। गुलजार की रचना थी, संगीत दिया था जयदेव ने। और अब सुनते हैं फिल्म क्रोधी का गीत। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

प्रेम रोग, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर लता मंगेशकर की आवाज़ों में। पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना थी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है साजन, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने, गीत लिखा है समीर ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम जोहार चायवासा में। राजा हिंदुस्तानी, इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। समीर की रचना है, नदीम श्रवण के संगीत पे हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म का इस गीत के साथ ही श्रोताओं इस फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम जोहार चायवासा अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, पुनः होगी मुलाकात अगले कार्यक्रमों में। तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पे। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात में, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

आपके साथ मैं मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया।

0: डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

0: कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
1: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
2: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
3: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
4: इन माय ओपिनियन विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंड्रम और केरला बट फॉर द होल ऑफ इंडिया। इफ इवन अ फ्रैक्शन ऑफ शिपमेंट्स प्रेजेंटली हैंडल्ड थ्रू द फॉरेन पोर्ट्स लाइक कोलंबो, जबल अली इन दुबई और सिंगापुर कुड बी ब्रॉट बैक टू विजिंजम, आई एम श्योर दैट वी कैन क्रिएट एनॉर्मस वैल्यू विद इन इंडिया थ्रू ट्रेड, लॉजिस्टिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट इवन अलाइड इंडस्ट्रीज।
2: बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुअनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग गालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिक

0: पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध। अपराध रोकना महत्वपूर्ण, बाद की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है। 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Polling begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and lone Lok Sabha seat in Assam. BJP announces names of 8 candidates from Uttar Pradesh for Rajya Sabha elections. President Draupadi Murmu to be on a 3-day visit to Himachal Pradesh beginning today. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive against Houthis. And in men's cricket, first T20 international of the 5-match series between India and West Indies to be played in Lucknow today. Polling has begun for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and Nogaon Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu, voting is taking place for Madhuran Thakam and Dharapuram assembly seats in Puducherry, for Thattan Chowdhury assembly seat and Rejinagar and Nondigram assembly seats in West Bengal. More from a Kolkata correspondent.
4: The by-election in Nondigram was necessitated after Chief Minister Shubhendu Adhikari, who won both Nondigram and Bhavan in Bhavanipur. Similarly, the Rejinagar seat fell vacant after sitting MLA Humayun Kobir retained Nauda and resigned from Rejinagar. In Nondigram, 16 candidates are in the fray, including BJP's Hashirani Roth and Congress candidate Milon Pradhan.

0: sectors. Jammu and Kashmir is likely to witness light snowfall and rain over higher reaches from today till Saturday. According to Meteorological Department, J&K will witness thunderstorms, gusty winds and scattered rainfall in the next few days. Met Department advised people to ensure safe storage of apples and paddy in view of the expected weather conditions. The Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over parts of Kerala, Mahe, South Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. IMD has also predicted thunderstorms with lightning and gusty winds over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha and West Bengal today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Abhishek. India-European Free Trade Association, EFTA pact, set to boost trade and investment, says Prime Minister, leads the statesman. Make predators fear the law, Supreme Court pushes Delhi police on safety of women in capital, reports the Pioneer. The Times of India, citing a survey by the National Statistics Office, NSO, says that only 15% going to work use public transport like buses, trains, trams or auto rickshaws. In football, after Brazil, India face another South American giant in Uruguay friendly at the Salt Lake Stadium, reports the Indian Express. And finally, Nobel for Medicine spotlights research on interplay between brain and light, states the Economic Times. German-US scientists win honor in medicine for using light to unravel secrets of the brain, writes the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Sarabjit. In someone news, the Indian Embassy in Bucharest has informed that all three Indian nationals aboard the commercial vessel MV Royad Mamadov are safe. The vessel came under attack in the Black Sea, leading to reported deaths of two foreign nationals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Polling begins for by-elections to five assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and lone Lok Sabha seat in Assam. BJP announces names of eight candidates from Uttar Pradesh for Rajya Sabha elections. President Draupadi Murmu to be on a three-day visit to Himachal Pradesh beginning today. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive against Houthis. And in men's cricket, first T20 international of the five-match series between India and West Indies to be played in Lucknow today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है. 8:30 हुए हैं. थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार.
3: मौसी, सुबह सुबह आप यहाँ
4: बहु पेट से है ना,
3: तो भगवान से सब कुछ अच्छा करने की कामना करने आई थी.
4: ये तो खुशी की बात है.
3: घर में पल रहा बच्चा और माँ स्वस्थ रहे, इसके लिए समय समय पर बहु की डॉक्टरी जांच बराबर करवाती रहना.
4: मैंने बहु का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में लिखवा दिया है. उसे समय समय पर जांच के लिए सरकारी अस्पताल भी ले जाती हूँ.
5: गर्भ के दौरान 4 बार अवश्य जांच कराएं.
4: गर्भावस्था के दौरान 100 आयरन की गोली और टीटी के इंजेक्शन अवश्य ले.
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी.
7: माँ बनना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिन तक रोज ही दवा लूं?
8: बहू, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है.
9: अरे माँ छोड़ो भी, खाना खा तो रही है ठीक से.
8: अब 2 कमरे की बत्ती जली तो तेल खत्म.
10: और बहू का क्या,
8: वो भी तो दो दो जान संभाल रही है.
10: बहू, ये गोली खून की कमी नहीं होने देती
8: और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा. चांस क्यों लेना है.
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी.
11: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा. पहले मुख्य समाचार. राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने 6 जिलों के साथी जल जीवन मिशन की समीक्षा. लापरवाही बरतने वालों ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश. रांची रिम्स की सेवा नियमावली और फैकल्टी मैनेजमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी. अपर मुख्य

0: सचिव ने कहा, खोले जाएंगे 10 नए विभाग। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच की सरकार को चेतावनी, कल हाईकोर्ट सुनवाई में सीआईडी रिपोर्ट मजबूती से पेश न होने पर 18 अक्टूबर से उग्र आंदोलन की घोषणा। मॉनसून की विदाई के बीच आज रांची, धनबाद और गुमला सहित 14 जिलों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। और रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच के लिए ऑफलाइन टिकटों की बिक्री आज भी जारी, पहले दिन 8000 से ज्यादा बिकी टिकटें। और अब समाचार विस्तार से। लातेहार के बेतला में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने 6 जिलों की जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने हर घर नल से जल पहुंचाने के कार्यों में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। ठेकेदारों और अभियंताओं को चेतावनी देते हुए विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने लापरवाही बरतने वाले संवेदकों को तुरंत ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा पुनर्गठित कोयला खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति में चतरा सांसद कालीचरण सिंह को दोबारा सदस्य बनाया गया है। सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली इस 31 सदस्यीय समिति में राज्य के सांसद सुखदेव भगत, महुआ माझी और प्रदीप वर्मा को भी सदस्य नियुक्त किया गया है। रांची के रिम्स में फैकल्टी मैनेजमेंट, प्रशासनिक कामकाज और सेवा नियमावली में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में रिम्स की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल की व्यवस्था और नियमावली में सुधार को लेकर अपर मुख्य सचिव ने विस्तृत जानकारी दी।
1: यूजी की सीट से 250 हो गया है, उसके लिए भी रिस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता है। पीजी की जो सीट है वो 100 बढ़ाना है, 175 से 275 करना है। और जो सुपर स्पेशलाइजेशन का पोस्ट है वो अभी 9 सीट है, इसको हम लोग मिनिमम 100 करने के लिए कहे हैं। उसके लिए पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, प्लस नर्सेस की संख्या कम है वो बढ़ाने की बात हुई थी। साथ ही 10 या 11 डिपार्टमेंट खोले जाने हैं नए नए, जो यहाँ पे नहीं चल रहे उनको भी खोला जाना है।
0: राज्यों में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर जेपीएससी रिफॉर्म मंच ने आंदोलन की चेतावनी दी है। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि यदि सरकार ने 7 अक्टूबर की हाईकोर्ट की सुनवाई में सीआईडी जांच रिपोर्ट और कैबिनेट नोट मजबूती से पेश नहीं किया तो छात्र 18 अक्टूबर से दोबारा उग्र आंदोलन शुरू करेंगे।
2: आगामी 7 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट में अपनी भी एग्जाम को राज्य सरकार ने रद्द किया है, उन तमाम एग्जाम को लेकर के एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। और पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने काउंटर एफिडेविट माननीय न्यायालय में जमा किया है, लेकिन माननीय न्यायालय का ये मांग है कि आप 17 अगस्त को जो डिसीजन लिए तो आपको डिसीजन किन परिस्थितियों में लिए, आपको सीआईडी ने अपना इन्वेस्टिगेशन नोट जो दिया उस नोट को आपको माननीय न्यायालय में जमा करना होगा।
0: रांची जिले में सर्वजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन राशि भेज दी गई है। प्रथम चरण में 1,86,000 से अधिक लाभुकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है। प्रशासन ने बाकी लाभुकों से जल्द बैंक खातों में आधार सीडिंग कराने की अपील की है। ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर केंद्रीय पिछड़ी जाति संघर्ष समिति ने आज रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में बंद का आह्वान किया है। बंद के मद्देनजर प्रशासन ने सभी 5 जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बेटियों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ बेटियों से मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि देश का उज्जवल भविष्य बेटियों के सपने, शिक्षा और उनके सशक्तिकरण में ही बसता है।
3: आज हमारी बेटियां जो देश की भविष्य है उनके लिए आप बेहतर ढंग से कैसे सके? आप सब लोग भी।

0: मेहनत के साथ आप अच्छा से शिक्षा भी ग्रहण कर रही है, तो आप पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ जो विकसित भारत का जो संकल्प है उस संकल्प को भी आगे बढ़ाने में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने प्रमुख पूजा पंडालों और प्रस्तावित पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने भीड़ नियंत्रण और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं।
2: अभी तैयारियां चल रहा है, पहले तो हम लोग पार्किंग व्यवस्था के बारे में देखे थे ताकि लोगों को सुविधा हो और मैक्सिमम गाड़ी लगाया जा सके, तो उसमें बैरिकेडिंग से लेके जो लाइटिंग की व्यवस्था है उसके साथ में हम लोग जो नगर निगम का जो ऑफिसर्स है उनके साथ में हम लोग संयुक्त इसका निरीक्षण कर रहे हैं। हम लोग का यही टारगेट रहेगा कि जो लोगों को कोई परेशानी ना हो और सब मैक्सिमम लोगों को काफी आसानी से ये फेस्टिवल है और सब सब इंजॉय करते हैं।
1: उधर खूंटी जिले में भी जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिले के उपायुक्त जावेद हुसैन और पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने संयुक्त रूप से विभिन्न पंडालों और रावण दहन स्थल का भौतिक सत्यापन किया। तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने बताया कि सभी पूजा समितियों को अग्निशमन व्यवस्था, पुख्ता बैरिकेडिंग और आपातकालीन निकास द्वार दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं।
3: और पर्व त्योहारों से रिलेटेड आज जिला प्रशासन पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस प्रशासन की पूरी टीम ने निरीक्षण किया। कुछ पंडालों का हम लोगों के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। लोगों से को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि टाइमली अपना व्यवस्थित तरीके से जो भी विसर्जन वगैरह का कार्यक्रम होता है वो सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ नगर पंचायत की भी टीम थी और हमारे अंचल की भी टीम थी, उनको भी निर्देश दिया गया है कि आप भी ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी प्लानिंग कर सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार की किसी को असुविधा ना हो।
1: राज्य में मौसम की विदाई के बीच मौसम विभाग ने आज रांची, धनबाद और गुमला समेत राज्य के 14 प्रमुख जिलों में अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में आज आसमान में बादल छाए रहने, तेज आंधी चलने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टी20 मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। मुकाबले की ऑफलाइन टिकटों की बिक्री आज भी जारी रहेगी। टिकट पाने के लिए स्टेडियम के काउंटरों पर सुबह से ही खेल प्रेमियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जेएससीए उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि कल पहले दिन ऑनलाइन और ऑफलाइन 8,000 से अधिक टिकटों की बिक्री हुई। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच के टिकटों की बिक्री की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पहले दिन 8,033 टिकट बिके, रांची में मैच के दिन बारिश की संभावना। हिंदुस्तान के शब्द हैं, झारखंड गवर्नर की बेटी श्रुति भाजपा से यूपी में राज्यसभा प्रत्याशी। दैनिक जागरण ने लिखा है, ज्ञानेश को निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। प्रभात खबर लिखता है, राज्य में 11,79,000 दावे और घर घर सत्यापन बाकी, ये 8 दिन में संभव नहीं, सीईओ ने आयोग से मांगा और समय। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने 6 जिलों के साथ की जल जीवन मिशन की समीक्षा। लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने का निर्देश। रांची रिम्स की सेवा नियमावली और फैकल्टी मैनेजमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी। अपर मुख्य सचिव ने कहा, खोले जाएंगे 10 नए विभाग। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच की सरकार को चेतावनी। कल हाईकोर्ट सुनवाई में सीआईडी रिपोर्ट मजबूती से पेश न होने पर 18 अक्टूबर से उग्र आंदोलन की घोषणा। मॉनसून की विदाई के बीच आज रांची, धनबाद और गुमला सहित 14 जिलों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। और रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच के लिए ऑफलाइन टिकटों की बिक्री आज भी जारी, पहले दिन 8,000 से ज्यादा बिकी टिकटें। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
2: अरे पोस्टमैन साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, बच्चों के टीकाकरण के बारे में कुछ जानकारी दो ना हमको।
3: अरे भोला, इसके लिए अपने निकटतम सहिया या ANM दीदी से संपर्क करो।
2: अच्छा,
3: इतना ही नहीं, गर्भवती महिला की जांच और देखभाल, खेल मनोरंजन की जानकारी, परिवार नियोजन की सलाह जैसी बहुत सी जानकारियां अब झारखंड सरकार उपलब्ध करा रही है।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम सहिया या ANM दीदी से संपर्क करें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: बच्चों के विकास के लिए विटामिन ए है बहुत जरूरी।
7: विटामिन ए बच्चों को बनाता है तंदुरुस्त, दूर करता है शरीर की कमजोरी।
6: हरी सब्जी, शाकाहारी भोजन, ये है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत।
7: तो अपने बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए 6 माह के बाद बच्चे को विटामिन ए युक्त भोजन खिलाएं।
6: साथ ही 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की खुराक पिलाएं।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से, FM के 101.7 MHz पे। अब सुनते हैं हमारे केंद्र से लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुरमाली लोकगीत कैलाश चंद्र महतो और साथियों के स्वर में।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक में कुर्माली लोकगीत कैलाश चंद्र महतो और साथियों के सुर में। और अभी ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम माटी की महक अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। कैसे हैं श्रोताओं? हमें तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप स्वस्थ हैं और अपना सेहत का ख्याल रख रहे हैं और हमारे साथ बैठे कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, क्यों है ना श्रोताओं? कार्यक्रम विविधा में हम कई ऐसे विषयों पर बातें करते हैं। इन दिनों मौसम बदल रहा है और ऐसे में इसका

असर सेहत पर पड़ता है, विशेष करके इन दिनों दस्त की बीमारी हो रही है, बुखार, सर्दी, जुकाम, बदन में दर्द, ये सब। तो कुछ कुछ बीमारियाँ, कुछ कुछ इस तरह की बातें हो जाती है थोड़ी मोटी, जैसे सर्दी जुकाम हुआ, बुखार, हल्का बुखार, या फिर दस्त की बीमारी, यानी दस्त होने लगे बार बार। तो ऐसे में हम लोग कुछ सबसे पहले हम लोग प्राथमिक उपचार करते हैं, है ना। उसके बाद यदि वो एक दिन में ठीक नहीं हुआ, सारा दिन में मैंने 24 घंटे में ठीक नहीं हुआ, तो दूसरे दिन में हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। या फिर बात एकदम बिगड़ने लगती है, मान लीजिए बार बार बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तो हम तुरंत फिर इलाज ज़रूर कराएं। लेकिन कुछ घरेलू नुस्खों पर मैं आपसे आज बातें करूँगी, वो भी दस्त की बीमारी पर। दस्त हम लोग जानते हैं, दस्त बार बार होने से शरीर से पानी की जो मात्रा है वो घट जाती है। तो ऐसे में तो हम लोग घर में रखे रहते हैं ORS के जो पैकेट आते हैं, घोल जिसको हम बनाते हैं उसको रखते हैं, या फिर हम घर में भी बनाते हैं, है ना। घर में जैसे 1 लीटर पानी में चीनी और फिर नमक, जैसे 1 लीटर पानी में छोटा चम्मच का 6 चम्मच चीनी दे दिया, या आधा चम्मच नमक मिला कर उसको थोड़ा थोड़ा हिला करके उसका अच्छी तरह से घोल तैयार कर लिया, फिर हम थोड़ी थोड़ी देर में उसको हम पीते रहें, तो जो शरीर में पानी की मात्रा जो घट जाती है ना, वो फिर संतुलन बनाए रहता है। यानी हम ये ORS का जो घोल है उसका काम करता है। लेकिन ये जो ORS का जो घोल है, ये जो पैकेट है, इसको हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसको रखना ज़रूरी है। साथ ही पका हुआ केला खाने से, जो बार बार पकाना होता है ना, दस्त होने लगता है, यानी कि बहुत ही पानी जैसा पकाना हो रहा है, तो उसको क्या करता है, पेट को ताकत मिलती है, मल को जो है गाढ़ा करता है केला, पका हुआ केला खाने से। तो कुछ ज़्यादा मात्रा में केला खा लीजिए, तो देखिएगा जो पानी जैसा पखाना हो रहा है वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, घर में दही और जीरा, 1 कप ताज़ी दही में 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा मिलाकर खाने से जो है वो क्या होता है, अच्छा लगता है और पाचन ठीक रहता है, और पाचन ठीक रहने से ये दस्त की जो बीमारी है वो होगी नहीं, है ना, बार बार दस्त नहीं आएगा। फिर नारियल का पानी तो पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर से पानी घट जाता है ना, तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट से, यानी कि पानी की कमी को पूरा करता है। फिर अदरक की चाय पीनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा बार बार दस्त होने से ना पेट में ऐठन मड़ोरर आने लगती है, और संक्रमण को कम करने में ये मदद करती है चाय, अदरक वाली चाय। इसलिए ना जो पेट में ऐठन मड़ोरन आने लगती है, तो इससे बचने के लिए हमें अदरक वाली चाय ज़रूर से ज़रूर पीनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो है हम जैसे खाते हैं, जैसे हम लोग जैसे घर में माँ लोग क्या करती थी पहले, बहुत पका हुआ एकदम गीला भात जिसको बोलेंगे, एकदम चावल को पूरी तरह से गीला, एकदम गीला कर लेती, उबाल लेती थी, उसको खिलाती थी माड़ के साथ, है ना। सादी खिचड़ी, उबला हुआ आलू, इस तरह का चीज़ माँ खिलाया करती थी। और जैसे दूध, मसालेदार भोजन, तला भुना चीज़, ये एकदम उसे परे रखते थे, कभी नहीं देते थे, देना खाना भी नहीं चाहिए। तो उबला हुआ चीज़ भी, चीज़ों से हमें परहेज करना तो ज़रूरी है ही। साथ ही साथ खान पान पर थोड़ा सा हम यदि ध्यान देते हैं, ज़्यादा चाट मसाला, ज़्यादा तेल मसाला, गरिष्ठ भोजन से हम यदि बचे रहते हैं, विशेष करके जब मौसम बदलता है ना उस समय, तो पेट का खास ख्याल रखा जाता है, और ठंडा पानी जो बार बार पीने की आदत है, फिर इसे निकाल कर वो ना पिए, थोड़ा सुसुम पानी, विशेष

पास जाएं, इलाज ज़रूर कराएं, क्योंकि इससे जो है आपको राहत मिलेगी और आप अच्छा अच्छा रहेगा, सेहत अच्छा, किसी खास बीमारी से आप, बड़ी बीमारी से आप बचे रहेंगे। तो कोई भी बीमारी हो, तुरंत हम थोड़ी देर के लिए तो हम लोग प्राथमिक उपचार करते हैं घरेलू नुस्खों के जरिए, लेकिन बात बनती नहीं है, बिगड़ती हुई महसूस हो रही है, तो आप इलाज ज़रूर कराएं, ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज कराएं। तो चलिए, बातें तो होती रहेगी, लेकिन मौसम का खास ख्याल रखेंगे, सेहत का बहुत ज़रूरी है, खान पान पर विशेष ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये सुंदर सा गीत। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शुभाशीष मित्रा के स्वर में।

0: मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: इस विराम के बाद श्रोताओं पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम विविधा में, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वार्ताकार हैं अंजना कनौजिया।
1: बीसवीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति थे। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 के पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीरसिंह गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता भगवती देवी और पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनका एक भाई ईशान चंद्र था। ईश्वर चंद्र के बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। बाद में इन्होंने कलकत्ता संस्कृत कॉलेज में एडमिशन लिया। शारीरिक अस्वस्थता, घोर आर्थिक कष्ट तथा गृह कार्य के बावजूद ईश्वर चंद्र ने प्राय प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में 50 रुपये मासिक पर मुख्य संस्कृत पंडित के पद पर काम किया। कलकत्ता संस्कृत कॉलेज से इन्होंने 5 साल के बाद 1846 में सहायक सचिव के रूप में डिप्लोमा प्राप्त किया। इसी कॉलेज द्वारा उन्हें संस्कृत और दर्शन शास्त्र अध्ययन में महारत हासिल करने पर विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। तभी से वे ईश्वरचंद विद्यासागर कहलाने लगे। लोकमत ने उन्हें दानवीर सागर का संबोधन दिया है। जानते हैं इनके सामाजिक योगदान को। ईश्वर चंद्र जी का भारतीय समाज में सबसे बड़ा योगदान विधवा पुनर्विवाह और लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत रही। वे एक अच्छे भारतीय शिक्षक और समाज सुधारक थे। वे चाहते थे कि हर हाल में विधवा महिलाओं की फिर से शादी होनी चाहिए, आखिर उन्हें भी जीवन जीने का हक है। उस समय बंगाल में विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। छोटी उम्र में ही बालिकाओं का विवाह हो जाता था और पति की मृत्यु के बाद उन्हें अपना सर मुंडवाकर सफ़ेद वस्त्र धारण कर कठोर अनुशासन और नियमों का पालन करते हुए जीवन भर पति के परिजनों की सेवा करनी पड़ती थी। ईश्वर चंद्र जी ने शास्त्रीय प्रमाणों से विधवा विवाह को वैध प्रमाणित किया और तत्कालीन सरकार को एक याचिका भी दी, जिसमें विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून बनाने की मांग की गई थी। उनके

अथक प्रयासों के कारण ही 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। 26 जुलाई को ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 पास किया था। लॉर्ड डलहौजी ने स्वयं इस नए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया था और लॉर्ड कैनिंग ने इसे पास किया था। ईश्वर चंद्र जी ने चुनौती लेकर पहली बार 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में विधवा पुनर्विवाह अपने दम पर करवाया था। इसमें 10 वर्ष की बाल विधवा कालीमती वधू और सीचंद विद्यारत्न वर थे। यही नहीं, उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र नारायण चंद्र बंदोपाध्याय का विवाह भी पत्नी दीनमणि देवी की सहमति से एक विधवा से ही करवाया था। इसके साथ ही उन्होंने दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में समान रूप से योगदान दिया। 1856 से 1860 के बीच इन्होंने लगभग 25 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया था। स्थापना। ईश्वर चंद विद्यासागर लड़कियों की शिक्षा के हिमायती थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में लड़कियों की शिक्षा के लिए विभिन्न स्कूलों की स्थापना की तथा कुल 35 स्कूल खुलवाए। वे हिंदू महिला स्कूल के सचिव भी थे, जिसे बाद में बैथुन महिला स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। स्थानीय भाषा और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलों की एक श्रृंखला के साथ कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। उनका दृढ़ विश्वास था जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी को शिक्षा का अधिकार है, और उन्होंने निचली जाति के लोगों के लिए संस्कृत कॉलेज का परिसर खोल दिया था। उन्होंने विद्वानों को प्राचीन पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने और समकालीन उपयोग के लिए उनकी व्याख्या करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपने छात्रों को भारतीय और पश्चिमी दोनों दर्शन का अध्ययन करने और दोनों के सर्वश्रेष्ठ को अवशोषित करने की भी चुनौती दी। उनके द्वारा लिखित पुस्तकें इस प्रकार हैं। बंगाली गद्य साहित्य को सरल और आधुनिक बनाने में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने बंगाली अक्षरों को लिखने और पढ़ाने के तरीके में क्रांति ला दी थी। उनके द्वारा लिखित पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। बेताल पंचविंशति, जो 1847 में प्रकाशित हुई। बांग्ला आर्य इतिहास 1848 में। जीवन चरित 1850। बोध द्वय, जो 1851 में प्रकाशित हुई। उपक्रमणिका भी 1851 में प्रकाशित हुई। वर्णपरिचय 1854 में प्रकाशित हुई, जिसका अर्थ है अक्षर का परिचय। आज भी बंगाली वर्णमाला सीखने के लिए परिचयात्मक पाठ के रूप में यह पुस्तक प्रयोग की जाती है। इसके साथ ही आसान सुपाठ्य बंगाली भाषा में संस्कृत व्याकरण की जटिल धारणाओं की व्याख्या करते हुए दो अन्य पुस्तकें उपक्रमणिका और व्याकरण कौमुदी लिखी हैं। इसके साथ ही अन्य दो पुस्तकें कोठामाला और सितार बनवास 1856 में प्रकाशित हुई। उन्होंने बंगाली समाचार पत्र सोमप्रकाश भी लिखा। इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1856 से शुरू हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से बेताल पंचविंशति भारतीय पृष्ठभूमि वाली किंवदंतियों और कहानियों का संग्रह थी, जो मूलतः संस्कृत में लिखा गया था। आइए जानते हैं उनके विचारों को। भारत के इतिहास में ईश्वरचंद विद्यासागर ऐसे महापुरुष के रूप में दर्ज हैं, जिनकी सोच और कार्य करने के तरीके समय से बहुत आगे थे। उनका विचार था कि शिक्षा का अर्थ केवल सीखना, पढ़ना, लिखना और अंकगणित ही नहीं है, बल्कि इससे व्यापक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। भूगोल, ज्यामिति, साहित्य, प्राकृतिक दर्शन, नैतिक दर्शन, शरीर विज्ञान, राजनीतिक अर्थव्यवस्था आदि में शिक्षा बहुत आवश्यक है। हम ऐसे शिक्षक चाहते हैं जो बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को जानते हों और साथ ही धार्मिक पूर्वाग्रहों से मुक्त हों। विद्यासागर विद्यावणिक के नाम से भी प्रसिद्ध थे। 1885 में ईश्वरचंद विद्यासागर ने 24 सुकिया स्ट्रीट में एक पुस्तक भंडार कोलकाता पुस्तकालय खोला था। उनकी अपनी और अन्य कॉपीराइट पुस्तकें यहीं से प्रकाशित होती और बेची जाती थी। इन्हीं कारणों से विद्यासागर को विद्यावणिक या व्यवसायी शिक्षा शास्त्री भी कहा जाता है।

0: ये जानते हैं उनका झारखंड से रिश्ता। ईश्वरचंद विद्यासागर 1873 में जामताड़ा जिला के कर्माटांड गांव आए थे। उन्होंने अपने जीवन के 18 वर्ष से अधिक यहीं व्यतीत किए। उन्होंने अपने घर के परिसर में एक लड़कियों का स्कूल और वयस्कों के लिए एक रात्रि स्कूल की स्थापना की थी, जिसे वे नंदन कानन कहते थे। उन्होंने गरीब और वंचित आदिवासियों को चिकित्सा प्रदान करने के लिए एक मुफ्त होम्योपैथी क्लिनिक भी खोला था। उनकी मृत्यु के पश्चात विद्यासागर का निवास नंदन कानन उनके बेटे ने कोलकाता के मलिक परिवार को बेच दिया था। इससे पहले कि नंदन कानन को ख़त्म किया जाता, बंगाली एसोसिएशन बिहार ने 29 मार्च 1974 को घर घर जाकर एकत्र किए गए एक एक रुपये के चंदे से इसे खरीद लिया। विद्यासागर के नाम पर कन्या विद्यालय पुनः प्रारंभ किया गया है। निःशुल्क होम्योपैथी क्लिनिक स्थानीय आबादी की सेवा कर रहा है। विद्यासागर के घर को मूल स्वरूप में ही बरकरार रखा गया है।
1: ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये वार्ता श्रोता हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए, इसके लिए हमें खेद है, क्योंकि समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। वार्ताकार थी अंजना कनौजिया। तो चलिए, इसी के साथ आज का कार्यक्रम विविधा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः तुरंत मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ज पे हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। आइए सुंदर सा प्यारा सा गीत सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म दुश्मन से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी की रचना है, संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

0: अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
7: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
6: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम रस रंजन में। एक दूजे के लिए इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में।

प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। एस एच बिहारी की रचना थी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरे हमसफर का ये खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ों में।

मेरी हम सफ़र इस फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम रस रंजन से अपराधा को दीजिए इजाज़त। पुनः होगी तुरंत अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

और अब सुनते हैं कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है उमंग कार्यक्रम में
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का सबसे मजबूत आधार है। आज की मेहनत कल के उज्जवल भविष्य की पहचान है।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन।
2: ईदूग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है,
0: आज का बरसात और मेंढक कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। पर्यावरण में हर जीव का यानी चींटी से लेकर हाथी तक एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है
2: जी।
0: हमें पशु पक्षियों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए
2: जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
0: और इसके साथ हमें मिला है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार जी का,
2: चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन जी ने लिखा है,
0: मैं आप लोगों का उमंग कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ। बड़ी ही सुंदर और आनंदमयी प्रस्तुति रहती है
2: जी।
0: कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो जाता है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप और संगीता गोप के साथ साथ लिपि गोप और दीपाली गोप ने भी हमें संदेश भेजा है।
2: पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए के अंतर्गत प्रेरक प्रसंग की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है जो बेहद पसंद आ रही है। प्रेरक प्रसंग छोटे जरूर है लेकिन इसमें ज्ञान की जानकारी, शिक्षा का संदेश भरपूर प्राप्त होता है। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा जी एवं दशरथ मांझी जी के प्रेरक प्रसंग सुनकर सुखद संदेश प्राप्त हुआ। आगे के भी प्रेरक प्रसंगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रेरक प्रसंग सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं आइए इस सप्ताह अब हम चलते हैं चर्चा की दुनिया में। हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरस्कारों की।
2: अजीत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी व्यक्ति के महान काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है?
0: विमलेश जी, मेरा अनुमान है आप बात कर रही हैं नोबेल पुरस्कार की।
2: बिल्कुल सही अजीत जी, लेकिन आज की कहानी नोबेल पुरस्कार के साथ साथ उस व्यक्ति की भी है जिसके एक फैसले ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी जारी है और उस विरासत को हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं।
0: तो चलिए श्रोताओ आज सुनते हैं नोबेल पुरस्कार की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ष 1833 से, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था अल्फ्रेड नोबेल।
2: बालक अल्फ्रेड नोबेल को बचपन से ही विज्ञान और अध्ययन में विशेष रुचि थी। वे बहुत ही जिज्ञासु थे और हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। बड़े होकर वे रसायन विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में काम करने लगे।
0: श्रोताओं उन दिनों सड़क बनाने और खानों का उत्खनन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था
2: जी।
0: पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना बहुत ही श्रम साध्य कार्य था और इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
2: अल्फ्रेड नोबेल ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों पर भी शोध किया। शोध और प्रयोग करने के क्रम में एक बार उनकी प्रयोगशाला में भयंकर विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल को जान गंवानी पड़ी।
0: उनके इन प्रयोगों का भारी विरोध हुआ लेकिन श्रोताओं अल्फ्रेड ने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने डायनामाइट की खोज की।
2: खनन, सुरंग बनाने और निर्माण कार्यों में डायनामाइट के उपयोग से काम बहुत आसान हो गया। अब आसानी से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता था। लेकिन विस्फोटकों का इस्तेमाल युद्ध में भी होने लगा। डायनामाइट के कारण बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को जान गंवानी पड़ती थी। समाज में अल्फ्रेड नोबेल की कटु आलोचना हुई। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को सामूहिक स्थानों में भी लोगों की निंदा सुननी पड़ती थी।
0: और इसी क्रम में श्रोताओ अल्फ्रेड नोबेल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन और इतिहास की धारा बदल दी।
2: क्या हुआ था अजीत जी?
0: विमलेश जी, वर्ष 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक अखबार ने गलती से स्वयं अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की खबर प्रकाशित कर दी जबकि वे जीवित थे
2: जी।
0: अखबार में उनके बारे में प्रकाशित खबर उन्होंने स्वयं पढ़ी। मालूम है अखबार में क्या छपा था?
2: जी, क्या छपा था?
0: अखबार में छपा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई।
2: और श्रोताओं, इस घटना ने उन्हें गंभीरता से सोचने का अवसर दिया। वे सोचने लगे, मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस रूप में याद करेगी।
0: जी श्रोताओं, डायनामाइट के आविष्कार से उन्होंने अथाह धन कमाया था। अब उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी विरासत के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया। और पता है श्रोताओं, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया?
2: 1895 में अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसी व्यवस्था के लिए रखने के लिए निर्णय लिया जिसके ब्याज की राशि से उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
0: और श्रोताओं, फिर हुआ ये कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार व्यवस्था की गई, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
2: शुरुआत में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
0: और बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ।
2: जी
0: विमलेश जी, मुझे इस पूरी कहानी में एक बात बड़ी प्रेरक लगती है।
2: वो कौन सी अजीत जी?
0: वो यह है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया उसे केवल अपने लिए रखने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगाया जिससे मानवता के लिए किए गए महान कार्यों को पहचान मिल सके।
2: जी अजीत जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। जी हाँ श्रोताओ, नोबेल पुरस्कार की कहानी केवल पुरस्कार पाने वालों की कहानी नहीं है, ये उन विचारों की कहानी भी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
0: तो श्रोताओ, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें वास्तव में क्या सिखाती है?
2: शायद यही कि जीवन में केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने दुनिया को क्या दिया।
0: जी बिल्कुल, और दुनिया को कुछ देने के लिए हमें पुरस्कार ही मिले ये जरूरी नहीं है।
2: जी
0: कोई शिक्षक किसी बच्चे को शिक्षा देकर, कोई डॉक्टर सेवा करके, कोई वैज्ञानिक नई खोज करके और कोई साधारण व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करके भी समाज में अपना योगदान दे सकता है।
2: यानी महानता केवल बड़े पुरस्कारों में नहीं।

0: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी।
0: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है चतुर गीदड़।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
2: मगरमच्छ अपने आप से।
3: तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। मित्र कछुए।
4: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो?
3: क्या बताओ मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं।
4: क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली?
3: अरे मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता।
4: हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है।
3: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा।
4: अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो।
3: ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
2: एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर कहता है,
4: हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया।
5: क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो?
4: मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
5: है? क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था।
4: क्या कहा?
5: कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
4: आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। देखो, बेचारा मरा पड़ा है।
2: गीदड़ डरते डरते कुछ पास

0: कबूतर धीमे स्वर से कहता है,
1: अरे ये तो बिल्कुल शांत है।
2: नहीं नहीं, अरे ये तो सांस ले रहा है भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है?
3: हाँ, देखते नहीं, ये तो मरा पड़ा है।
1: पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा।
3: नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है।
0: तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए कहता है,
3: तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम चतुर गीदड़।
5: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया, ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
6: या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
4: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक।
7: इस कार्यक्रम में महायोगी अष्टावक्र के बारे में जानकारी देते हुए उनके दर्शन की चर्चा की गई है तथा बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा राजदरबार के एक विद्वान को पराजित किया और न्याय की स्थापना की।
8: त्रेता युग में आरुणी उद्दालक नाम के महर्षि थे, वे महापंडित, वेदों के ज्ञाता और तर्क वितर्क में निपुण दार्शनिक थे।
9: उनकी सुजाता नाम की पुत्री थी, ऋषि उद्दालक के सर्वश्रेष्ठ और प्रिय शिष्य थे ऋषि कहोड़। मेधावी और मेहनती कहोड़ वेद शास्त्रों में अपना अधिक समय बिताते थे। गुणवती, रूपवती और विदुषी सुजाता भी वेदों की ज्ञाता थी। एक दिन,
10: कहोड़, मैं तुम्हारे ज्ञान और सेवा से प्रसन्न हूं। जैसे ही तुम्हारी शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण होती है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी सुजाता से कर दिया जाए।
11: जो आज्ञा आचार्य।
10: तुम दोनों मेरे आश्रम में रह सकते हो, और मैं ये भी चाहूंगा कि अपने शिष्यों की शिक्षा का कार्य भी जारी

0: पति कहोड़ और पत्नी सुजाता संगमा नदी के किनारे ऋषि उद्दालक के आश्रम में सादगी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती हो गई।
1: भले ही क्यों ना मेरा शिशु अभी गर्भ में है, मैं उसे पवित्र मंत्रों से अवगत करवाऊंगी।
2: समय बीता, सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। उसके शरीर में 8 स्थानों पर विकृतियां थीं, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। शरीर में विकृतियों के बावजूद बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। सुजाता अपने नवजात शिशु को लेकर अपने पिता

उद्दालक के आश्रम में आ गई। लगभग इसी दरमियान ऋषि उद्दालक की पत्नी को भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेत केतु रखा गया। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक को अपना पिता ही मानने और कहने लगे और मामा श्वेत केतु को अपना भाई कहते थे। एक समान आयु के श्वेत केतु और अष्टावक्र मामा भांजे मानो भाई भाई की शिक्षा साथ साथ हुई।

0: ऐसे में दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक।
1: 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए।
2: ए, ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है, जाओ अपने पिता की गोदी में बैठो।
0: बालक अष्टावक्र ने अपमानित महसूस किया और रूठे हुए वो अपनी माँ के पास आए।
3: माँ, क्या मैं तुमसे जन्मा हूँ, है ना?
4: तुम रो क्यों रहे हो मेरे बेटा अष्टा, क्या हुआ?
3: माँ, मुझे बताओ कौन है मेरे पिता? तुम चुप क्यों हो? क्या महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं है?
4: हाँ अष्टा, महर्षि उद्दालक तेरे पिता समान है, वो तेरे धर्म पिता है बेटा।
3: तब कहोर कौन थे? मन कठोर कर सच बोलो माँ।
4: बेटा, वो पिता है तेरे बेटा, पिता है।
1: आखिर नाना और पिता का भेद तो खुलना ही था। गरीबी से परेशान और धन कमाने की आशा में कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए मिथिला में राजा जनक के दरबार गए। जब उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया तो राजा जनक ने उनका स्वागत किया।
5: राजा जनक, मैं ऋषि कहोड़। ओह पूज्य ऋषि, आप सही समय पर आए हैं। हमारे यहां बंदी नाम का एक विद्वान है, शास्त्रार्थ वाद विवाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
6: हे राजन, मुझे कोशिश करने दे।
7: आचार्य कहोड़ और आचार्य बंदी के बीच होने वाला यह शास्त्रार्थ अत्यंत रोचक होगा और घातक भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है।
0: शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हुआ परंतु अधिक देर ना चल सका क्योंकि कहोड़ बंदी के सामने टिक ना पाए थे।
1: फिर बेचारे कहोड़ को भी बाकी पराजितों की तरह कठोर दंड दिया गया।
8: अत्यंत दुख है, मैंने एक और ऋषि को खो दिया है जो यज्ञ में भाग लेने आए थे। अब यज्ञ सफल कैसे होगा?
0: जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बता दिया कि ऋषि कहोड़ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे।
6: श्वेत केतु,
8: अष्टावक्र, मुझे
6: प्रतिशोध लेना है और बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। आओ मिथिला राजा जनक की सभा में चलते। सुना है 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए महायज्ञ को राजा जनक पूर्ण नहीं कर पाए।
8: हाँ,
6: उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है।
8: कब चलना है?
6: बस अभी तुरंत।

0: 14 वर्षीय मामा भांजे श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों मिथिला में राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए।
1: बालक, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हो?
2: हम ऋषि उद्दालक के शिष्य हैं। हम मिथिला नरेश से मिलना चाहते हैं। कृपया आप हमें उनके पास ले चलें।
3: ब्राह्मण बालकों को राजा जनक के पास ले जाया गया।
4: बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है?
5: मेरा नाम श्वेत केतु है। हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं।
2: और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है तथा शास्त्रार्थ में पराजित हुए लोगों के भाग्य के बारे में भी। मैं बंदी को चुनौती देने और उन्हें पराजित होते देखने आया हूं।
4: मुझे तुम्हें अवश्य सावधान करना चाहिए। तुम आचार्य बंदी के ज्ञान, उनके शास्त्रार्थ कौशल से परिचित नहीं हो। अब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है।
2: ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सामना कभी भी मेरी क्षमता के विद्वान से नहीं हुआ। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं दंभी बंदी को हारते हुए नहीं देख लेता।
0: जनक को लगा कि आश्वस्त अष्टावक्र जिद पर अड़े हुए हैं।
4: मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगे तो मैं तुम्हें आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा। तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है? जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता? और दिल किसके पास नहीं है? और ये भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज वेग से बहती है?
2: हे राजन, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बहती है।
4: अत्यंत सुंदर।
3: राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए।
4: ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूँ। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है।
2: विद्वानों के संरक्षक और आश्रय दाता मिथिलेश की जय हो।
0: दरबार में बैठे सभी लोग खिल खिलाकर हंसने लगे।
2: मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं।
3: अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे।
4: अन्य सभी हंस रहे हैं ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार, आप क्यों हंस रहे हैं?
2: आप सब अपने आप को महान समझते हैं और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है? परखा है मन की आंखों से? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है।
4: हे ब्राह्मण कुमार, तनिक समझाकर स्पष्ट करें।
2: हे राजन, मंदिर के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता।

0: कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वयव है और मंदिर सावयव है। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता है राजन।
1: बालक, तुम तो विलक्षण हो और मेधावी वक्ता भी।
2: वाक द्वंद्व का अंतिम दिवस है आज। वाद विवाद करने के लिए मैं इन होनहार बालकों को यज्ञ मंडप में महापंडित बंदी से मिलने की अनुमति देता हूं। मंडप में एक वेदी पर आचार्य उद्दालक के शिष्य अष्टावक्र और दूसरी वेदी पर राजपंडित बंदी।
3: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक, और इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
4: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
3: मुकुल सिंह,
4: वीरेंद्र
3: और हमारी आज की विशेषज्ञ
4: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।
7: से हो तो हम बढ़िया हैं, है ना,
8: और हमारे श्रोता भी बहुत बढ़िया हो।
7: तो हमारी ये आशा हमेशा मतलब पूरी होगी, हमारे सुनने वाले भी अच्छे हों और हमारे आसपास जितने लोग हैं वो सभी भी अच्छे हों। और कहते हैं ना कि हम अपने विचार में जितनी पॉजिटिविटी भरते हैं ना उतना ही अच्छा होता है, है ना, और विचारों पर हम जितना नियंत्रण रखते हैं उतना हम जीत पाते हैं। किसी भी कार्य को करने की पहली सीढ़ी हमारे विचार होते हैं। पहले हम विचार करते हैं, फिर उस विचार को कार्य के रूप में देते हैं। कार्य का परिणाम विचार की शुद्धता पर निर्भर करता है।
8: हाँ उषा दी, और अच्छे विचार से प्रेरित कार्यों का परिणाम भी अच्छा ही होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों को कभी बेलगाम ना होने दें।
7: और ये भी बता दें कि भगवान बुद्ध ने भी कहा था हम अपने विचारों से ही बने हैं। विचारों के कारण जन्म जन्मांतरों का चक्कर चलता है। हमें सदा अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। पहले अपनी आशाएं और आकांक्षाएं कम करो, फिर विचार अपने आप कम होने लगेंगे। भाई जब इनकी बात जब आ जाती है तो हमें बहुत सोचना पड़ता है कि हम अपने विचारों से ही ओतप्रोत अपने काम करते हैं, और जितना भी अच्छा या बुरा काम करते हैं वो हमारे विचार ही उसे निर्देशित करते हैं ना।
8: हाँ।
7: तो जितना हो सके हम अपने विचार को अच्छा रखें, और ये चाहें कि कोई भी काम हम करें तो खूबसूरती के साथ करें, वो अच्छा होगा। और बस जब विचार अच्छे हो ना तो किसी की बुराई हमें नहीं करनी है, है ना।
8: विचार अपने हमेशा शुद्ध रखने चाहिए। और हम, आपने सही कहा कि जैसा हम विचार रखेंगे हमारा हमारे कर्म में भी वो दिखता है,
7: असर आता है। हाँ, इसलिए अपने काम पर ध्यान लगाना है, और जितना हो सके हम लोगों से मुस्कुरा कर मिले तो हमारे विचार सबसे पहले अच्छे हो जाते हैं, और फिर हम यही कह सकते हैं ऑल इज वेल।

जाके बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल ऑटो को करके गोल ऑटो को करके गोल सीटी पर जाके बोल

0: एचआईवी एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: बता दी, नहीं ना, हाँ?
2: नहीं दे,
1: मन तो चलिए अब जोहार रांची कार्यक्रम में हम कुछ और बातें करते हैं। और ऐसा हम आपस में बातें कर रहे थे ना कि हम झारखंड में जितने भी आज का मौसम के बारे में बात करना है तो वो बात कर ले या ना करें।
2: तो मौसम तो की जानकारी बहुत जरूरी है।
1: तो आज झारखंड में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ साथ रुक रुक कर भी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना जताई गई है।
2: और 6 से 9 अक्टूबर के दौरान गरज, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है, यानी आज से ही। और आज का अधिक

0: न्यूनतम तापमान जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस।
1: और दोपहर या शाम में भी बौछारें पड़ेंगी और तापमान में भी नरमी रहेगी, ऐसा देखने को ही लग रहा है ना।
0: हाँ,
1: कि
0: हाँ.
1: कभी धूप अचानक से लग रही, फिर कभी बादल छा जा रहे हैं, तो थोड़ा मौसम में
0: कभी गर्मी भी महसूस हो रही है।
1: आराम
0: हाँ,
1: लग रहा है
0: हाँ,
1: और
0: हाँ.
1: गर्मी भी महसूस हो रही। यानी कि ये जो बदलते मौसम है ना मीनाक्षी, इसमें हम सभी को बहुत सोच समझ कर चलना है कि हम करें या ना करें, बाहर जाएं या ना जाएं, क्या खाना है क्या खाएं ना खाएं, हर चीज पर ध्यान
0: यानी
1: रखना
0: अपनी
1: है।
0: सेहत का ख्याल
1: सेहत
0: रखना
1: का भी
0: है।
1: ख्याल रखना है, मौसम के हिसाब से आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, बुजुर्ग के साथ, तो उनका भी ध्यान रखना है ना कि बाहर जाएंगे तो हम किस तरह से हर चीज की हमें सहूलियत मिल सके। तो चलिए हम इस मौसम का आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: जोहारा जी कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है।
1: और देखो, जब प्यारे गीत होते हैं ना, तो लगता है कुछ हम उसमें गुम से हो जाते हैं, है ना। लेकिन गुम होने की बात नहीं है, कुछ आगे के भी पन्ने जिसे हम पलटते हैं और इतिहास के पन्ने खोलकर उसमें घुसते हैं, कुछ अच्छी अच्छी जानकारियां भी उसमें है ना।
0: बिल्कुल, देखते हैं आज कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी थी।
1: तो 1862 में भारत में भारतीय दंड संहिता IPC आधिकारिक रूप से पारित की गई थी।
0: 1995 में खगोलविदों ने सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करने वाले पहले बाहरी ग्रह एक्सोप्लैनेट 51 PGB की पहचान की थी आज के दिन।
1: और आज ही के दिन 1994 में यूनेस्को ने वर्ष 1995 को संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। मतलब 94 में बात हुई थी और 95 से मनाने की घोषणा हुई। और उसके बाद 1999 में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में प्रारंभ हुई थी।
0: और वैश्विक मंदी के मद्देनजर 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नकद सुरक्षित अनुपात में 0.5% की कटौती का फैसला भी आज के दिन किया था।
1: और अब चलते हैं आज के दिन जन्मे हुए व्यक्तियों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। 1893 में मेघनाथ साहा गणित और भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे, और इनके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी अपने श्रोताओं को देते हैं कि मेघनाथ साहा जो एक भारतीय खगोल विज्ञानी थे और जिन्होंने तारों के तापमान और रासायनिक संरचना को समझने के लिए प्रसिद्ध साहा समीकरण का प्रतिपादन किया था।
0: इनका जन्म 6 अक्टूबर 1893 को ढाका के पास शियोर ताली गांव में हुआ था।
1: और इनका योगदान रहा साहा समीकरण के बारे में, है ना। और ये भी बता दें कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ है, किनका और जन्म हुआ है। तो आज के दिन 1949 में पुणे के खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी की आधारशिला रखी गई थी।
0: और 1989 में न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था आज के दिन।
1: और हम ये भी बता दें कि आज के दिन किनका किनका जन्म हुआ था उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। लेकिन उसके पहले आज क्या क्या सप्ताह मनाए जा रहे हैं, कुछ खास दिवस हैं, इसकी पहले हम जानकारी दे दें, है ना। भारत में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है।
0: और इसका उद्देश्य भी हम अपने श्रोताओं को बताएं कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता का जश्न भी।
1: और विशेष उपलब्धि है इस मिशन के साथ, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th देश बना था। और आज ही भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह भी मनाया जा रहा है,
0: जो 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है।
1: इसका मुख्य उद्देश्य है देश के वन्य जीव वनस्पति के।
0: और इसकी परिकल्पना वर्ष 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा की गई थी।
1: और उद्देश्य,
0: हाँ, इसका उद्देश्य भी है कि लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा करना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना और वन्य जीव संरक्षण में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है,
1: ताकि हमारे वन्य जीवन प्राणी जितने भी हैं उनकी सुरक्षा हम कर सकें, इसी की जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। और हर साल एंटी अस्पृश्यता सप्ताह, जो हर साल 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ शुरू होता है।
0: और इसका भी उद्देश्य है कि समाज से छुआछूत और जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त किया जाए और समानता और भाईचारे का संदेश देना।
1: और और उसके बाद हम बातें करते हैं कि आज के दिन किनका जन्म हुआ था। मेघनाथ साहा के बारे में तो हमने बता ही दिया है, और ये भी बता दें कि आज विनोद खन्ना का भी जन्मदिन है ना। तो हम चाहते हैं कि महान अभिनेता, इनके बहुत सारे फिल्म हम सभी ने देखे हैं और हम उनको याद भी करते हैं। तो चलो उनकी फिल्माएं, एक प्यारे से गीत को हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं
0: जो है जुर्म फिल्म से।

0: और इतिहास में हम कुछ और बातें करना चाहते हैं। यह खास है आज बाबा खड़क सिंह के बारे में। इनका दिवंगत तिथि आज है 6 अक्टूबर 1963।
1: ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और सिख नेता बाबा खड़क सिंह, जिनका निधन 6 अक्टूबर 1963 को हुआ था।
0: और राजनीतिक नेता, सेंट्रल सिख लीग के अध्यक्ष थे और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय सेनानी भी थे, और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पहले अध्यक्ष भी थे। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र की एक प्रमुख सड़क का नाम उनके नाम पर बाबा खड़क सिंह मार्ग रखा गया है। और ये जो बाबा है ना, खड़क सिंह, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी, सिख नेता, जैसा कि हमने बताया, ये थे। उनके निरता, देशभक्ति और दृढ़ संकल्प के लिए उन्हें जाना जाता है।
1: और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के तोशखाने की चाबियों को लेकर जब सिखों और ब्रिटिश सरकार के बीच विवाद हुआ, तो बाबा खड़क सिंह ने इस

0: आंदोलन का नेतृत्व किया था
1: और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था और चाबियां उन्हें सौंपनी पड़ी थी। इस जीत पर महात्मा गांधी ने टेलीग्राम भेजकर बधाई दी थी उन्हें कि भारत की आजादी की पहली लड़ाई की जीत हो गई है। हाँ, और उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जेल भी गए थे।
0: उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कभी समझौता नहीं किया। जेल में रहने के दौरान भी उन्होंने अंग्रेजी नियमों के आगे झुकने से मना कर दिया था।
1: हम भी ऐसे हमारे दिल से
0: नमन
1: करते हैं, नमन करते हैं और ये शौर्य गाथा भी सुनते हैं।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

देश की सुरक्षा कवच देश का संबल तीनों भारतीय सेनाएं बचते

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: पराक्रम के संदेश के बाद फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है जोहार रांची कार्यक्रम में. और हम एक विशेष जानकारी अपने श्रोताओं को देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश के जो खास खास लोग हैं ना, जो कितनी मेहनत करते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश के भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, क्या क्या नहीं करते हैं, है ना.
2: क्या खास जानकारी है
1: ये? खास है आज नोबेल पुरस्कार हमारे तीन वैज्ञानिकों को मिला है, और ये सभी हैं डॉक्टर पीटर हेगमैन और डॉक्टर जॉर्ज नागेल और डॉक्टर कार्ल डी सेराथ.
2: और किस बता दी
1: नियंत्रित करने की दिशा में विज्ञान को सबसे बड़ी सफलता पानी में तैरने वाले एक सूक्ष्म हरे शैवाल से मिली है. मतलब कि शैवाल को भी ढूंढना इतना आसान काम नहीं है, है ना. हम तो कितनी सारी शैवाल जिसे काई कहते हैं ना, वो तो मिलता है, यूं ही देखते हैं, उसे सफाई करके हटा देते हैं, लेकिन देखो खोजने वाले क्या
2: भी
1: क्या नहीं खोजते हैं, है ना. और इस क्रांतिकारी तकनीक को ऑप्टोजेनेटिक्स नाम दिया गया है, जिसकी मदद से वैज्ञानिक अब प्रकाश यानी रोशनी के जरिए मस्तिष्क की कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं. बताओ मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा सुनकर ना हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं.
2: यानी हरे शैवाल से सुलझेगा अब दिमाग का रहस्य.
1: इस खोज की नींव जर्मनी के बायोफिजिसिस्ट डॉक्टर पीटर हेगमैन और डॉक्टर जॉर्ज नागेल ने रखी. उन्होंने पाया कि हरा शैवाल प्रकाश की दिशा में तैरने के लिए विशेष प्रोटीन का इस्तेमाल करता है, और ये दोनों ने शैवाल के चैनल रोडोप्सिन और एक और दो नामक प्रकाश संवेदनशील प्रोटीनों की पहचान की, जो नीली रोशनी पड़ते ही विद्युत संकेत पैदा करते हैं. इसके बाद अमेरिकी न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल डी सेराथ ने इस खोज को आगे बढ़ाया और इंसानी मस्तिष्क के अध्ययन से इसे जोड़ा.
2: हाँ, या फोटो रिसेप्टर प्रोटीन, ये भी अपने श्रोताओं को हम बता देते हैं
1: कि लाइट सेंसिटिव प्रोटीन को फोटो रिसेप्टर प्रोटीन कहा जाता है. ये विशेष अणु रोशनी पड़ते ही सक्रिय हो जाते हैं और अपना आकार बदलकर विद्युत तरंगे पैदा करते हैं. मस्तिष्क की कोशिकाओं में डाले जाने पर ये रोशनी से सीधे सिग्नल भेजते हैं, जिससे न्यूरॉन्स की कार्यप्रणाली और मस्तिष्क के रसायनों पर नियंत्रण संभव हो पाता है. यानी कि इतनी सारी जो प्रयोग है एक छोटे से शैवाल से किया गया है, और जो हमारे सीधे ब्रेन को ही अट्रैक्ट करेगा और ब्रेन को ये मतलब कि कंट्रोल करेगा. बहुत सारे जो दिमाग में अनसुलझे जो रहस्य हैं, सबसे पहले तो तनाव को ही ले, जो तनाव के बारे में किसी को भी आज तक जानकारी नहीं मिल पा रही थी, और इसका रहस्य अब सुलझ जाएगा. तो कितनी बड़ी उपलब्धि है ना
2: इसके लिए, की मदद से ये संभव हो पाया.
1: हाँ, तो हमारे ये वैज्ञानिक, इन्हें हम तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे सभी वैज्ञानिक इसी तरह के तरह तरह के प्रयोग करके हमारी जीवन शैली को आगे आसान बनाते रहें, है ना. और भी बहुत कुछ ऐसा है, जैसे कि सीखने, नींद, व्यवहार और गति को नियंत्रित करने वाले न्यूरल सर्किट की स्पष्ट पहचान की गई है, है ना. और पार्किंसन, डिप्रेशन, नशे की लत और ब्रेन स्ट्रोक के सटीक कारणों और उपचार की खोज भी की जा रही है. और 2020 वायरस की खोज से इलाज आसान हो जाएगा. हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे जे अल्टर माइकल और ब्रिटेन के वैज्ञानिक चार्ल्स एम राइस को वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और वायरस की खोज हुई थी 1979 में. इस तरह के कितने सारे जो खोज है वो किए जा रहे हैं, जो हमारे सामने एक एक कराते हैं और हमारे जीवन को बहुत ही सुखमय और खुशमय बना देते हैं, और हमारा दिल फिर से कहने लगता है कि बस खुश हो जाओ. और इसके लिए हम एक गीत सुनवाते हैं.
2: बिल्कुल.

0: अब जो है रांची कार्यक्रम में
1: अगला जो हम पारी है हमारी पन्ने की वो है स्वास्थ्य की।
0: बिल्कुल
1: है ना। हाँ। देखो सारे काम कर लेते हैं लेकिन जब हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो फिर कोई भी काम में मन नहीं लगता और कोई काम अच्छा भी नहीं होता।
0: इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है और इसके लिए बहुत
0: सारी बातें। स्वस्थ रहना यानी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तभी हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं।
1: और जो ये मौसम है ना जब इसमें बदलाव आते हैं ना तो इसका पूरा प्रभाव हमारे हेल्थ पर पड़ता है। और मौसम के बदलाव के साथ साथ अगर हम अपने शरीर को नहीं ढालते हैं तो फिर उसके कई तरह के परिणाम निकलने के आते हैं। सर्दी जुकाम खांसी बुखार गले में खराब

0: और एलर्जी जैसी कई समस्याएं हो जाती हैं, इसलिए विशेष सावधानी हमें बरतने की जरूरत है, खास करके पानी।
1: हाँ, तो पानी की मात्रा कभी आप कम ना होने दें अपने शरीर में, और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और साथ साथ पौष्टिक आहार भी लेते रहें।
0: और पानी जो पीने की बात कही ना, तो वो सबसे पहले तो साफ पानी हो, बंद जगह पर रखे हुए हो, रास्ते में कहीं भी आप जाएं और प्यास लगे तो पानी ना लें, बल्कि आप आजकल तो हर जगह बोतल में पानी मिलते हैं, तो आप उसे खरीद कर पी सकते हैं, या फिर घर से एक अपने घर का पानी बोतल में भर कर ले सकते
1: सबसे
0: हैं।
1: अच्छा तरीका तो यही है कि
0: हाँ,
1: आप अपना पानी
0: घर
1: अपने
0: से
1: घर से
0: लेकर
1: ही
0: चले।
1: लेकर चलें तो वो ज्यादा अच्छा
0: खुद के साथ,
1: होगा।
0: बच्चों के साथ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर आप ऑफिस जाते हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग किसी काम से बाहर जाते हैं, सबसे पहला चीज है पानी, क्योंकि 70 से 80% जो भी बीमारियां हैं ये पानी से ही उपजती हैं, इसलिए इसका खास ख्याल रखें। और अगर हो सके तो अपने साथ कुछ खाने का भी सामान जरूर रख लें, ताकि बाजार के खुले खाने को हम खाने की जरूरत
1: अवॉइड
0: ना
1: कर
0: पड़े।
1: सके।
0: हाँ। और दूसरी बात है अपनी स्वच्छता, यानी कुछ भी खाने के पहले आप अपने हाथों की सफाई जरूर कर लें, है ना, और बच्चों को भी इसकी आदत डलाएं।
1: क्योंकि हाथों से ही हमारे शरीर में है जो
0: कीटाणु प्रवेश
1: कीटाणु
0: करते
1: जाते
0: हैं।
1: हैं, तो जब तक हमारे हाथ साफ नहीं होंगे तो हम बीमारियों से नहीं बच पाएंगे, इसलिए हमारे
0: यानी
1: शरीर
0: उन्हें
1: में।
0: न्योता देंगे
1: हाँ,
0: खुलेआम,
1: बिल्कुल।
0: है
1: हाँ,
0: ना।
1: तो कुछ भी खाने पीने से पहले इतना तो जरूर है कि अपने हाथों
0: सफाई का
1: को,
0: ध्यान रखना है,
1: आप बाहर हो या घर पे हो, कहीं भी हो, इस बात का ख्याल हमें हमेशा रखना है।
0: करना है। और बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि जैसा होता है ना कि बारिश में सभी भीग रहे हैं, उनको देखकर अगर हम भी भीगने चले गए, और हो सकता है कि हमें वो बारिश हमारे शरीर को पसंद ना आए और कई तरह की परेशानी शुरू हो जाए, तो औरों के देखने के हिसाब से अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है इसका ज्ञान हमें जरूर रखना चाहिए, कि हम कितनी धूप कितनी पानी को हम झेल सकते हैं, उसी के
1: और
0: हिसाब
1: इसका
0: से
1: शिकार बुजुर्ग और बच्चे जल्दी जल्दी
0: जल्दी
1: हो
0: पड़
1: जाते
0: जाते
1: हैं।
0: हैं,
1: हाँ,
0: इसलिए
1: क्योंकि
0: इसका
1: उनकी
0: ध्यान
1: वो
0: रखना
1: प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो
0: थोड़ी कम
1: कमजोर
0: हो
1: होती
0: जाती
1: है।
0: है। हाँ, और मौसम के अनुसार कपड़ों का भी चुनाव कर लेना है हमें, है ना। जब बारिश आए तो आप जो नायलॉन और सिल्कन के कपड़े ना पहने, वो बदन में चिपक जाते हैं, बहुत देर तक उसकी जो ठंडक रहती है। सूती
1: हल्के
0: वस्त्र
1: कपड़े
0: पहने,
1: पहने।
0: हाँ
1: हाँ, हल्के,
0: सूती
1: जो
0: वस्त्र पहने।
1: अगर भीग भी जाएं तो फिर वो
0: मुझे तो ऐसा
1: आसानी से
0: लगता है
1: सूख
0: ना
1: जाएं।
0: मीनाक्षी, कि गर्मी हो या सर्दी, अगर सूती वस्त्र आप हमेशा पहनना को चाहते हैं तो आपके लिए हमेशा के लिए अच्छा होता है ना,
1: हाँ, वो आरामदायक
0: आरामदायक
1: होते
0: भी है और
1: हैं।
0: स्किन के लिए भी अच्छा होता है। और जैसे भी ठंडे और गर्म वातावरण में अचानक से बदलाव आती है, तो उसका भी ख्याल हमें करना चाहिए, कि बहुत ज्यादा तेज धूप में अगर आप घूम रहे हैं और अचानक से आप ठंडा पेय पदार्थ को ना लें।
1: या फिर बाहर आप धूप में हैं, गर्मी में हैं, तो डायरेक्ट आप एसी के प्रभाव में ना आए या एसी ना
0: से
1: चला लें
0: निकलकर
1: अपने
0: धूप
1: घर
0: में,
1: में। हाँ
0: हाँ, और एसी से निकलकर
1: हाँ
0: सीधे धूप में भी ना
1: हाँ
0: जाए।
1: तो ये सबसे ज्यादा असर
0: ये
1: करता है।
0: छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लक्षण अगर आप पर बने रहते हैं, एक दो दिन में खुद ही से ठीक ना हो जाते हैं, तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, है ना, क्योंकि हम जितना भी अगर सतर्क रहते हैं तभी स्वस्थ रह सकते हैं। और
1: बस मौसम में अपना ख्याल रखें, और हमारे कहने का मतलब यही है कि आप खाने पीने पर अपना ख्याल
0: खास ख्याल
1: ज्यादा
0: करें।
1: रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्योंकि इसका हमारे शरीर पर बहुत
0: गहरा
1: ज्यादा
0: असर
1: असर
0: पड़ता
1: पड़ता
0: है।
1: है।
0: और एक बात और मीनाक्षी, कि अगर कहीं थोड़ी सी बीमारी आ जाती है, और आजकल लोग क्या करते हैं ना, कि खुद से दवा गूगल में सर्च करते हैं और उसके परेशानी को देखकर दवा
1: कई
0: मंगाकर
1: बार
0: खा
1: ये
0: लेते हैं,
1: खतरनाक हो जाता
0: और
1: है।
0: यह खतरनाक हो जाता है। फार्मासिस्ट से भी जाकर खुद ही दवा पूछ कर ना लें, बेहतर होगा कि अगर आप अपने डॉक्टर से संपर्क करते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी सी बीमारी थोड़ी सी दवा से ही ठीक हो जाए,
1: और
0: है ना,
1: कई बार तो घरेलू नुस्खे ही
0: घरेलू
1: काम आ
0: नुस्खे।
1: जाते हैं,
0: हाँ
1: और आप कोशिश कीजिए कि घरेलू नुस्खों से ही अगर
0: हाँ
1: आप
0: एक दो दिन
1: छोटी
0: में
1: छोटी
0: अगर
1: बीमारियों से निजात पा लेते हैं तो वो बेहतर है।
0: बेहतर है, और अगर दो तीन दिन के बाद में भी ठीक नहीं होते हैं, तो आप जरूर डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और
1: और
0: बस आप
1: उनके परामर्श पर ही
0: दवा
1: दवा
0: ले
1: लें।
0: सकते हैं। और सबसे पहले कहते हैं ना कि ये जो शरीर है ना, ये स्वास्थ्य का खजाना है, इसे हम कभी लूटने न दें, और अपने मन को बहुत ही खूबसूरत और खुशियों से भरा हुआ रखना चाहिए। इसके लिए कभी कभी

0: जो है रांची कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, यानी अब
1: खेल
0: जगत में हम आ गए हैं, तो अब खबरें श्रोताओं को बताते हैं। तो लखनऊ में T20 सीरीज का पहला मैच आज वेस्ट इंडीज से होगा, रोमांचक मैच की उम्मीद भी है,
2: की जा रही है। सूर्यवंशी पर सैमसंग को प्राथमिकता दे सकता है एशियाई खेलों का चैंपियन भारत। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ मंगलवार को यहां होने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में आत्मविश्वास के साथ उतरेगी,
0: यानी आज
2: आज से।

0: और इस खेल को देखने के लिए जितने भी खिलाड़ी प्रेमी हैं, खेल प्रेमी हैं, वो सभी तैयार हैं, जोश खरोश के साथ, और इनका भी उत्साह वर्धन कर रहे हैं। भाई करना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे देश के खेल की बात है ना, और ये जीते इसके लिए हम इन्हें अभी से शुभकामनाएं दे रहे हैं, है ना। और उसके बाद में अभी एक और जानकारी अपने स्टेट लेवल पर, राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2026-27 के तहत मंगलवार से खेलगांव स्थित अल्बर्ट एक्का स्टेडियम और हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में खो खो और कबड्डी प्रतियोगिता शुरू होगी।
1: और 7 अक्टूबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में राज्य के सभी 24 जिलों के अंडर 17 बालक बालिका वर्ग के 1,152 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें कबड्डी और खो खो के 576 खिलाड़ी शामिल हैं।
0: यानी जब खेल की बात चल रही तो थोड़ी सी और जानकारी अपने श्रोताओं को देते हैं।
1: और अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए सोमवार से टिकट की बिक्री शुरू हो गई है।
0: अब शुरू हो गई क्या कहोगे, सारी टिकट तो खत्म हो चुकी बिक गए है ना, और ऑनलाइन तो
1: उत्साह
0: है, ऑनलाइन तो खत्म हो गए हैं, अब देखो ऑफलाइन में भी अगर टिकट मिल जाए तो सही, और नहीं तो फिर हमारा टीवी सहारा है ना।
1: 9 अक्टूबर के लिए सब तैयार
0: है। हाँ, सभी तैयार हैं, और हम खेल के मैदान पर और हमारे खिलाड़ियों पर, और हम चाहते हैं कि हमारे ये भारत के सिकंदर हैं वो किसी से कम नहीं है।

0: और देखते देखते जोहार रांची कार्यक्रम का वक्त भी समाप्त हो रहा है उषा जी।
1: तो चलो हम अपने श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं और कहते हैं नमस्कार जोहार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोता अपने फरमाइशी गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में और आपके साथ है आपकी दोस्त उषा जायसवाल। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ताल फिल्म का ये प्यारा सा नगमा।

गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं ए आर रहमान, आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में अभी आप ताल फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था बड़ा बाम्बू सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, निशा प्रकाश, ललित प्रधान, किरण केसरी, राजकुमार केसरी, श्यामदेव नायक और देबेन जी, चक्रधरपुर ग्राम लेहिया गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बनमाली बेसरा, बसंती, अनु सिद्ध कुमारी और पूजा। आप सभी थे छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और अब चलिए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। स्काई फोर्स फिल्म का ये गीत है। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं तनिष्क बागजी। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और अफसाना खान की। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। आप सभी श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से। बलिया से हैं ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति रॉय और नवनीत रॉय। लीजिए अपनी पसंद का ये गीत सुनिए।

श्रोताओं, अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म रुस्तम से। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और संगीतकार हैं आरको पावो मुखर्जी। इस गाने को गाया है आतिफ असलम ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं ओल्ड लिसनर ग्रुप मगनपुर से अमजद अली अब्बास आलम। आप सभी हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, राजनंद गांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान इरफान, बुलंदशहर से बदरुवली अंसारी, फर्जुवली फर्जीवली, लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभनंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। लीजिए अपनी पसंद का ये प्यारा सनगमा सुनिए।

श्रोताओं, आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं रुस्तम फिल्म से। गीतकार है मनोज मुंतशिर और संगीतकार है जीत गांगुली। इसे गाया है अरिजीत सिंह और पलक मुच्छाल ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेंगी से भागवत वर्मा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर, सरिता गम्हाणकर, सिद्धांत और प्रिंस एकांश गम्हाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित और कुमारी ध्वनि गम्हाणकर।

0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए देश के लिए।

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: श्रोताओं, इस संदेश के बाद आपकी पसंद का एक और गाना हम आपको सुनवाते हैं. इसे हमने लिया है सुल्तान फिल्म से. गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार विशाल शेखर. आवाज है राहत फतेह अली खान की. पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जादू का किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, मोहम्मद वकील राही, नाज प्रवीण, आलम शेख और चांदनी नाज. और आप हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल. राजेश, अपनी पसंद का ये गीत सुनिए.

श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब इस समय दिन के 12 बज रहे हैं। आज आप सुनेंगे गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में आपके साथ होंगे अवधेश, लता और खुशबू। लीजिए सुनेंगे इनसे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: कभी कभी जिंदगी की छोटी सी खुशी भी हमारे पूरे दिन को खूबसूरत बना देती है। चेहरे पर मुस्कान हो और मन में उम्मीद तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। इसलिए हर दिन की शुरुआत इस विश्वास के साथ कीजिए कि आज का दिन कल से बेहतर होगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि सकारात्मक सोच हमारे भीतर नई ऊर्जा भरती है। जिंदगी में परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अगर हौसला बना रहे तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।
0: इसी सकारात्मक सोच के साथ मैं आपकी रेडियो सखी खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। सभी सखियों को खुशबू का प्यार भरा नमस्कार,
1: और गृहलक्ष्मी की सभी सखियों को लता की ओर से भी प्यार भरा नमस्कार। और हम सब के साथ एक और शख्स साथ है, वो है,
2: और मेरी तरफ से भी गृहलक्ष्मी सुनने वाली तमाम बहनों को नमस्कार।
0: बहनों, आज की दुनिया में हमारे आसपास बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। घर का काम हो या बच्चों की पढ़ाई हो, बैंक का काम हो या फिर खरीदारी हो और पैसे का लेन देन, ऐसे कई काम हैं जो अब मोबाइल और इंटरनेट के जरिए आसानी से किए जा सकते हैं।
1: सही कहा खुशबू तुमने, और इसी बदलाव ने महिलाओं के लिए सीखने और आगे बढ़ने के नए रास्ते भी खोले हैं। आज एक महिला अपने घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मोबाइल के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकती हैं।
0: सखियों, हम बातें कर रहे हैं डिजिटल शिक्षा की, जिसके माध्यम से आज महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है।
1: हाँ, डिजिटल शिक्षा का महत्व केवल मोबाइल चलाना या इंटरनेट पर जानकारी देखना ही नहीं, बल्कि इसका यह अर्थ है कि डिजिटल माध्यमों का सही और सुरक्षित तरीके से उपयोग करना और उसके जरिए अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाना।
0: बिल्कुल, आज अगर किसी महिला के पास स्मार्टफोन है और उन्हें इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना आता है तो उनके सामने सीखने के अनगिनत अवसर है। जैसे वे कई नई भाषा सीख सकती है, कंप्यूटर सीख सकती है, कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकती है या फिर अपनी रुचि के अनुसार किसी काम को व्यवसाय का रूप भी दे सकती है।
1: हाँ बिल्कुल बहनों, मान लीजिए किसी महिला को सिलाई की अच्छी जानकारी है और वह केवल अपने परिवार या आसपास के लोगों के कपड़े सिलती थी, लेकिन डिजिटल माध्यम से वह नए नए सिलाई कई डिजाइनर उत्पाद जो होते हैं जिसे डिजाइनिंग कर सकती है, वो तमाम चीजें सीख सकती है, ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकती है और अपने बनाए गए कपड़ों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करके नए ग्राहक भी बना सकती है।
0: बिल्कुल लता, और यही डिजिटल शिक्षा की सबसे बड़ी ताकत है, यह हुनर को अवसर से जोड़ती है। एक महिला के पास कोई कला या कौशल पहले से हो सकते हैं, लेकिन उसे बाजार तक पहुंचाने की जानकारी ना हो तो डिजिटल शिक्षा के माध्यम से वह यह कर सकती है। और अपने उत्पाद को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, ग्राहकों से कैसे संपर्क किया जाए या ऑनलाइन भुगतान कैसे लिया जाए, ये सभी वो इस माध्यम से सीख। और
1: हाँ बहनों, इतना ही नहीं, आज महिलाएं घर बैठे कई तरह के काम भी सीख रही हैं और सीख भी सकती हैं, जैसे ऑनलाइन ट्यूशन, कंटेंट लेखन, डिजिटल मार्केटिंग, हस्तशिल्प, खाना बनाने के कौशल और इस तरह के छोटे छोटे व्यवसाय के कई आयाम यहाँ पर छुपे हैं।
0: बिल्कुल, और खास बात ये है सखियों कि इसके लिए हमेशा घर से बाहर जाकर प्रशिक्षण लेना जरूरी नहीं है। कई बार महिला अपने घर की जिम्मेदारियाँ निभाते हुए भी अपने खाली समय में सीखना, कुछ नया सीखना शुरू कर सकती है।
1: हाँ बहनों, इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक छोटा सा कदम भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है।
0: बिल्कुल, आर्थिक आत्मनिर्भरता का मतलब केवल बहुत अधिक पैसा कमाना नहीं है बहनों, बल्कि इसका यह मतलब भी है कि महिला अपने आर्थिक फैसलों को समझ सके, अपनी जरूरतों के अनुसार निर्णय ले सके और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में योगदान दे सके।
1: हाँ बहनों, डिजिटल शिक्षा महिलाओं को वित्तीय रूप से जागरूक बनाने में भी मदद करती है। आज बैंकिंग से जुड़े बहुत से काम मोबाइल के माध्यम से किए जा सकते हैं, जैसे पैसे भेजना, भुगतान करना, बैंक खाते की जानकारी रखना या सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इन सब के लिए डिजिटल जानकारी उपयोगी है।
0: लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक है उतनी ही सावधानी भी मांगती है। महिलाओं को डिजिटल लेन देन करते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए।
1: हाँ खुशबू, ये तो बहुत अहम बात है, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ, बहनों, जब भी हम डिजिटल ऑनलाइन मंच पर काम कर रहे हो, हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपना किसी भी तरह का कोई भी OTP, पासवर्ड, पिन या बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी है और किसी भी लिंक पर बिना जांचे क्लिक नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और सखियो, डिजिटल शिक्षा के साथ डिजिटल सुरक्षा की जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए जैसा कि लता ने भी बताया, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल महिलाओं को डिजिटल बनाना नहीं बल्कि उन्हें सक्षम बनाना, जागरूक करना और आत्मविश्वासी बनाना भी है।
1: हाँ, और जब एक महिला सीखती है तो उसका लाभ केवल उसे नहीं मिलता बल्कि वह अपने बच्चों और परिवार के दूसरे सदस्यों को भी इसका सुरक्षित और सही इस्तेमाल करना सिखाती है।
0: और यही तो इसकी खूबसूरती है कि एक महिला का डिजिटल रूप से सशक्त होना पूरे परिवार के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलता है।
1: इसलिए जरूरी है कि जिन महिलाओं को अभी डिजिटल साधनों का इस्तेमाल करने में झिझक होती है, वे धीरे धीरे इसकी शुरुआत करें और इसे जाने।
0: बिल्कुल, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, शुरुआत चाहे छोटी हो लेकिन अगर सीखने की इच्छा हो और आगे बढ़ने का हौसला हो तो वही छोटी शुरुआत भविष्य में बड़े बदलाव का कारण बन सकती है।
1: आज डिजिटल शिक्षा महिलाओं को केवल जानकारी नहीं दे रही बल्कि उन्हें अपनी पहचान बनाने में और अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर भी दे रही है।
0: इसलिए हम डिजिटल तकनीक को केवल मनोरंजन का साधन ना माने बल्कि इसका इस्तेमाल ज्ञान बढ़ाने, हुनर निखारने, रोजगार के अवसर तलाशने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए भी करें।
1: क्योंकि जब महिला आर्थिक रूप से सक्षम होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है
0: और शायद यही आत्मविश्वास को हम कह सकते हैं अपने सपनों को पंख देना, अपनी पहचान बनाना और अपनी मेहनत से अपनी मंजिल तक पहुंचना, ताकि आसमान भी हमारी पहुंच से दूर ना हो।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो मैनो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। मैनो, बच्चों की परवरिश करना शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे जिम्मेदारी वाला काम है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे, अच्छा इंसान बने, पढ़ाई के आगे बढ़ने की जो रास्ते हैं उसे अपनाएं और जीवन में सफल हो। लेकिन बच्चों को बड़ा करते समय अक्सर एक सवाल सामने आ ही जाता है,

0: बच्चों को ज्यादा है।
1: लता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को ज़्यादा प्यार दिया जाए या ज़्यादा अनुशासन में रखा जाए। तो कुछ माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को बहुत प्यार देंगे तो वो बिगड़ जाएगा, वहीं कुछ माता पिता कहते हैं कि बच्चों को इसकी बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे मन में दो बातें आती है, प्यार और अनुशासन, और दोनों ही जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
0: हाँ, क्योंकि अगर बच्चे प्यार तो हो सकता है कि वह धीरे धीरे जिद्दी और अपनी बात मनवाने वाला बन जाए, और अगर हम बात पर डांट लगाते हैं, रोक टोक और सख्ती करते हैं, तो बच्चा डरने लगेगा और अपने मन की बात मानना बंद।
2: और अनुशासन भी हो, लेकिन दोनों अपनी सही जगह पर।
1: देखिए, बच्चों को प्यार की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। जब बच्चा छोटा होता है और गिर जाता है, तो वो सबसे पहले पिता के सहारा मिलेगा, और यही भरोसा आगे चलकर उसके व्यक्तित्व की नींव भी रखता है।
2: लेकिन प्यार मतलब ये नहीं है कि बच्चे उसे हर वह कहता है कि मुझे अभी मोबाइल चाहिए।
1: माँ बाप सोचते हैं कि चलो मोबाइल, लगता है कि उन्होंने समस्या को हल कर लिया, लेकिन धीरे धीरे यह बच्चा सीख जाता है कि उन्हें और जिद करने से मेरी बात मान ली जाएगी, और ये उसकी आदत में शुमार हो जाता है।
2: बिल्कुल,
0: और प्यार का मतलब है बच्चे की भावना समझना, उनकी बात सुनना और उन्हें सुरक्षित करना, पूरी होना जरूरी नहीं है।
1: उदाहरण के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि माता पिता बच्चे से ये कह सकते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें अभी मोबाइल चलाना है, लेकिन मोबाइल का समय खत्म हो चुका है, कल तुम तय समय पर इसे चला सकते हो। तो इससे न बच्चे को अपमान महसूस होगा और न ही उनकी हर बात माता पिता द्वारा मान ली जाएगी, और यही है प्यार के साथ अनुशासन।
2: बिल्कुल, इसका मतलब है कि हमें बच्चों के लिए समय सीमा तय करनी होगी और तय समय सीमा पर ही उन्हें मोबाइल की अनुमति।
0: और जैसा बच्चा अपना खिलौना खेलने के बाद इधर उधर छोड़ देता है, माता पिता हर बार खुद उठाकर रख देते हैं, तो बच्चा जिम्मेदारी भी सीखना चाहता है, और इसी तरह वह प्रैक्टिस में ही वह बच्चा सीखता है।
1: जब हम प्यार और अनुशासन की बात कर रहे हैं, तो अनुशासन जानना होगा कि अनुशासन आखिर है क्या।
2: बिल्कुल,
1: अनुशासन का मतलब केवल डांटना या बच्चों को अनुशासन जो फर्क है ना, वो उसके साथ उसको जिम्मेदारी सिखाना है
2: और उसे जिम्मेदारी देना भी अनुशासन जरूरी है, और इस तरह से बच्चा काम भी सीखता है और उसे ये महसूस भी नहीं होता कि माता पिता हर समय उसके पीछे पड़े हुए होते हैं।
1: अगर बच्चे खिलौने के लिए जिद कर रहे हैं, तो हमें ये कहना चाहिए कि उनको मतलब प्यार से कहा जा सकता है कि चलो हम दोनों मिलकर खिलौने को सही जगह, कभी कभी को होता है ना कि बच्चे खिलौने खेलते हैं और इधर उधर बिखेर करके रख देते हैं, और
2: फिर हाँ,
1: और अक्सर माएं आकर डांटती हैं कि अरे तुम, हम हमेशा साफ करते रहते हैं, साफ सफाई करते हैं, तुम लोग चीजें बिखेर कर यहाँ वहां रख देते हो। तो ऐसे में उनको डांटना नहीं है, उनके साथ ये कहना है कि चलो हम दोनों मिल करके ये चीजें सही जगह पर रख देते हैं, और बच्चा धीरे धीरे ये अपनी आदत बना लेता है, कल उसको माँ को कहने की जरूरत नहीं होगी, पिता को कहने की जरूरत नहीं है कि अपनी चीजें अपनी जगह पर रखो, बच्चा स्वयं ये चीजें करने लगता है।
0: बिल्कुल, और बहनों एक बात जो है वो सबसे बड़ी बात ये कि अपने बच्चे, जब बच्चा कोई अच्छी बात सुने, पढ़ाई समय पर करे या अनुशासन दिखाए, तो खुलकर उनकी तारीफ करे। आपका एक शाबाश उसके अंदर अनुशासन की आदत को पक्का कर देता है और खुद भी रोल मॉडल बने। बच्चे बातों से कम और हमें देखकर ज्यादा सीखते हैं। अगर हम खुद घर में संयम और अनुशासन रखेंगे ना, तो वह भी यही सीखेंगे।
2: और साथ ही एक एक और जरूरी बात यह है कि बच्चों को डांटने से पहले उसे कई तरह की बातें नहीं सुनानी चाहिए और साथ ही उनका किसी तरह से तुलना नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा कोई गलती भी कर देता है तो हम उन्हें तुरंत डांटने के बजाय उन्हें समझा सकते हैं और ये नहीं कहें कि तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता, तुम बड़े शरारती हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ऐसे शब्द है ना बच्चों के मन पर गहरा असर डालते हैं। गलती तो हुई है लेकिन गलती पर बात करें और बच्चों के व्यक्तित्व पर नहीं और किसी से तुलना ना करें।
1: और ये कहना भी बेहतर है कि तुमने होमवर्क नहीं किया और तुमसे सही नहीं हुआ, जो आप कह रही हैं कि कभी बच्चों को ये एहसान नहीं कराना चाहिए कि तुम ये काम नहीं कर सकते हैं। माता पिता के लिए एक और बहुत बड़ी चुनौती है कि माता और पिता दोनों बच्चे के सामने, भले उनको आपस में विवाद हो सकता है लेकिन बच्चों के सामने एक जैसा रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों के जो फैसले होते हैं उसमें ही विरोधाभास हो।
2: बिल्कुल।
1: अगर माँ किसी बात के लिए मना कर रही है और बच्चा तुरंत पिता के पास जाकर के वो चीज मांगता है और पिता कह देते हैं ठीक है ना ले लो, बच्चा धीरे धीरे यह समझने लगता है कि किससे अपनी बात मनवाई जा सकती है
2: और किस तरह से मनवाई जा सकती है।
0: इसलिए माता पिता को बच्चों के सामने एक दूसरे के फैसले का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी बात पर असहमति भी है तो उसे बच्चे के सामने नहीं बल्कि आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए।
2: और हाँ, अनुशासन का मतलब ये भी नहीं है कि घर में हर समय नियमों की लंबी सूची लगी रहे। बच्चों के लिए कुछ साफ और आसान नियम ही बहुत होते हैं, जैसे कि समय पर उठना हो, अपना सामान रखना हो, पढ़ाई करना हो, खेलना भी बहुत जरूरी है और खाना खाते समय मोबाइल ना चलाना, घर के छोटे छोटे कामों में मदद करना।
0: हाँ,
1: और इन नियमों का जो पालन है ना वो माता पिता खुद भी करें, क्योंकि बच्चे हमारी बातें कम और हमारे व्यवहार को ज़्यादा देखते हैं। अगर हम बच्चे से कहते हैं कि खाना खाते समय मोबाइल नहीं देखना चाहिए और खुद पिता जब खाना खा रहे हैं तो मोबाइल देखते हैं तो बच्चा नहीं मानेगा आपकी बात।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे को अनुशासन सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद अनुशासित रहना। एक और बात जो है बहनों वो यह है कि आज बहुत जरूरी है कि बच्चों को जो हम लोग इग्नोर करने की जो टेंडेंसी हम में आ गई है, बच्चा कुछ कहना चाहता है और हम सुनते नहीं, ये कतई नहीं होना चाहिए। उनकी बातें सुने, उनको समय दे।
2: और साथ ही लता ये भी बहुत जरूरी है कि बच्चों को ना सुनना भी सीखना होगा, क्योंकि हर बात बच्चों की नहीं मानी जा सकती। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे तुरंत मिल जाना बच्चों के लिए हमेशा अच्छा नहीं होता है, इसलिए कभी कभी उन्हें इंतजार भी करवाना चाहिए ताकि उनमें धैर्य आए, जो कि व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और कभी कभी अपनी इच्छा छोड़नी भी सीखनी चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में जरूरी नहीं है कि हर चीज तुरंत मिल जाए और कभी कभी मेहनत करने से भी बहुत सारी चीजें हासिल होती है, ये उसे सीखना भी होगा और समझना भी होगा।
1: क्योंकि जिंदगी में हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। अगर बच्चा छोटी छोटी बातों में धैर्य रखना सीखता है तो आगे चलकर मुश्किल परिस्थितियों का सामना भी वो बेहतर तरीके से कर पाएगा। लेकिन इन सबके पीछे जो सबसे जरूरी चीज है ना कि बच्चों के साथ बातचीत। दिन में कुछ समय ऐसा जरूर होना चाहिए माता पिता के पास कि बच्चे से वे प्रश्न पूछें, वो ये जाने कि भाई आपके स्कूल में आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इनसे क्या होता है कि बच्चों को खुशी मिलती है।
0: बिल्कुल।
1: और उनसे ये भी पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या परेशानी है, कोई बात है जो तुम हमसे कहना चाहते हो तो कह सकते हो।
0: हाँ, ऐसे में हो सकता है कि बच्चा उस समय कुछ ना बताए, लेकिन अगर उसे पता है कि उसके माता पिता उसकी बातें सुनेंगे और तुरंत डांटेंगे नहीं तो धीरे धीरे वह खुलने लगेगा और आपसे अपनी तमाम परेशानियां, हंसियां, खुशियां, जितनी भी चीजें हैं वो कुछ साझा करेगा।
2: और शायद यही है बच्चों का प्यार या बच्चों का भरोसा जीतने का तरीका जिसे माता पिता कर सकते हैं। गलती होने पर भी माता पिता के वो पास आ सकता है अगर बच्चे खुलकर अपनी बातें कह सकते हैं और बच्चों को ये भरोसा हो कि माँ बाप उसे उनकी गलती पर डांटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे।
1: लेकिन बहुत ज्यादा लाड़ प्यार है जो बच्चों को कमजोर बना सकता है और बहुत ज्यादा सख्ती उसे भीतर से तोड़ सकती है। इसलिए जरूरत है कि हम बीच का रास्ता अपनाएं, बच्चे को प्यार दें लेकिन हर जिद उसकी पूरी ना करें, उसे नियम सिखाएं लेकिन हर समय उसे डांटे नहीं, उसकी गलती बताएं लेकिन उसे बुरा बच्चा न कहें, उसकी बात सुने लेकिन सही बात समझाने से पीछे भी न हटें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और साथ ही ये भी है कि बच्चों की परवरिश कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें हर दिन एक ही तरीका काम करे, है ना, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। किसी बच्चे को ज्यादा समझने की जरूरत होती है तो किसी को ज्यादा प्रोत्साहन की तो किसी को थोड़ी की।
1: क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है ना, सिर्फ एक ऐसा बच्चा बनाना नहीं होना चाहिए जो हमारी बात माने, हमारा लक्ष्य एक ऐसा इंसान तैयार करना होना चाहिए जो हर सही गलत को समझ सके, अपनी जिम्मेदारी ले सके और दूसरों का सम्मान कर सके और मुश्किल समय में खुद सही फैसला।
2: बिल्कुल सच्चे होते हैं।
0: और शायद बच्चों की अच्छी परवरिश का सबसे सुंदर संतुलन भी यही है, प्यार इच्छा भरोसा करना।

0: तो बहनों अब बातें होंगी तनाव कम करने की। बहनों आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी और आज हम बात करेंगे तनाव कम करने के लिए दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव जो है वो जरूरी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव जैसी हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है और काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक चिंताएं, मोबाइल और सोशल मीडिया पर बढ़ता समय, ये सब धीरे धीरे हमारे मन और शरीर पर असर डालते हैं। तो बहनों हम तनाव से बच सकते हैं इसके लिए हमें खुद फैसला करना होगा कि हम तनाव कैसे अपना कम करेंगे और इसके लिए आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की भी जरूरत है।
1: बिल्कुल, और इसके लिए आप छोटे छोटे से उपाय कर सकती हैं, जैसे कि आप कोई प्यारा सा संगीत सुन सकती हैं, सुबह की सैर कर सकती हैं, प्रकृति को निहार सकती हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे सुकून भरी चाय पी सकती है और हम सहकर्मियों से बातें कर सकती है।
0: देखो खुशबू, बातें तो होती ही रहेंगी और कार्यक्रम जो है हमारा वो हमेशा बहनों के साथ आगे चलता रहेगा। तो बहनों को ये बता दे कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी और घड़ी की जो सुइयां हैं इशारा तो कर रही है कि अब समय हो चला है बहनों से विदा लेने का, लेकिन जब बातें हो रही है तनाव कम करने की ना, तो बहनों को यह भी बता दे कि बहने आपको अगर तनाव हो भी रहा हो ना, तो आप अगर अपने लिए वक्त निकालेंगी ना, तो शायद उस तनाव से आप दूर रह पाएंगी।
1: बिल्कुल, और तनाव तो जिंदगी में आते रहेंगे जाते रहेंगे, वैसे ही ये प्रोग्राम जैसे कि आता ही है, और लेकिन अब हमारे जाने का भी वक्त हो चुका है लता। तो अब अपनी बातों को विराम देना होगा। तो अब अपनी सखी खुशबू
0: और लता को दीजिए इजाजत
2: और साथ में अवधेश को भी
0: नमस्कार।

0: रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, इसके पहले ये संदेश।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जा...

0: स्वयंनी घट पड़े भारतीय सेना।
1: आकाश फिल्म संगीत का कार्यक्रम लीजिए। सबसे पहले सुनिए वीर जारा फिल्म का ये प्यारा सा नगमा। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है मदन मोहन ने। आवाज है संजय की।

श्रोता हूँ, आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म शैतान से। गीतकार हैं कुमार और संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी। आवाजें हैं जुबिन नौटियाल की और साथ में अमित त्रिवेदी हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अब आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, आई हेट लव स्टोरी। इस फिल्म का ये प्यारा सा गाना सुनिए। कुमार के लिखे गीत को संगीत से सजाया है विशाल और शेखर ने। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की।

क्यों हो गया ना। इस फिल्म का गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं, जावेद अख्तर का लिखा ये गीत है और संगीत शंकर एहसान लोय का है। इसे गाया है साधना सरगम और उदित नारायण ने।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं पिंजर फिल्म से। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं उत्तम सिंह। आवाजें हैं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम की।

श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय दिन का 1 बजने को है। आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार कुछ ही पलों बाद।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियात क्रेन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: उन्नत स्लिपवे 4 नई क्रेन के साथ शिपयार्ड को 45,000 डेडवेट टन तक के जहाजों के निर्माण और जलावतरण में सक्षम बनाएगा। इससे बड़े जहाजों के निर्माण की उसकी क्षमता में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट चिंता का विषय है, क्योंकि इससे विमानन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ पड़ा है। श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार स्थिति का आकलन करने के लिए विमानन और तेल विपणन कंपनियों के साथ कीमतों पर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों तथा महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 476 अंक बढ़कर 72,859, जबकि निफ्टी 132 अंक की वृद्धि के साथ 22,688 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों का आज सुबह अमृतसर हवाई अड्डे पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स. Defense Minister Rajnath Singh has said India needs a strong and integrated maritime ecosystem to further enhance its maritime power and strengthen the country's defense capabilities. The Defense Minister today launched Fleet Support Trip 1, laid the keel for Fleet Support Trip 5, and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Vishakhapatnam. Addressing the gathering, Mr. Singh said Fleet Support Ship 1, named Surya, will strengthen the Indian Navy's reach, endurance and operational effectiveness. He said the new Slipway and Goliath crane at HSL will further enhance the shipyard's capacity to undertake large shipbuilding projects. The Defence Minister said the Indian Navy has repeatedly demonstrated its capabilities in the Indian Ocean region as a first responder and preferred security partner. Polling is underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Voting is taking place for Madurantakam and Dharapuram assembly seats in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat where voting is taking place is Nagaon in Assam. Counting of votes will be taken up on Friday. Vice President C.V. Radhakrishnan has said Sanskrit is the golden string which connects all Indian languages. Addressing the second convocation of Sri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University in New Delhi today, Mr. Radhakrishnan said every Indian language is contributing. Modi has taken several initiatives of the National Education Policy 2020 has further strengthened this vision by placing special emphasis on the Indian knowledge system. Union Minister of State for Jal Shakti, Dr. Raj Bhushan Chaudhary, today said India has undertaken one of the largest water conservation efforts in its history, reflecting the strength of Jan Bhagidari and cooperative federalism. Addressing the Water Innovation Summit in New Delhi, he said around 1.58 crore groundwater structures have been created under various rural development initiatives across water-stressed states. The BJP today hit out at the Congress, alleging that a sponsored attempt is being made by opposition parties, especially the Congress, to create an atmosphere of anarchy in the country. Talking to media in New Delhi, BJP national spokesperson Sambit Patra said the opposition parties are making derogatory remarks against the country's constitutional bodies in a sponsored manner.
2: अभी कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा
4: है. Made on Indian Army, India's Supreme Court, Hindustan Aeronautics Limited, HAL, Indian Hindus and EVMs. We believe that the Congress Party is still trying to create anarchy and an atmosphere of disorder in the country by using the Election Commission. Before the so-called rally and march take place, it is our responsibility as a political party to accurately place the issue before the people of the country and explain what is happening in the Election Commission and what is happening in the matter before the Supreme Court.
2: पूरा विषय जो सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है वो क्या हो रहा है.
3: Opposition parties held a protest march today from Parliament House to the Nirvachan Sadan, headquarters of the Election Commission of India, over alleged irregularities in the Special Intensive Revision (SIR) process and the demand to sack Chief Election Commissioner CEC Gyanesh Kumar. However, while heading towards the Election Commission, security personnel stopped them inside Akashwani Bhavan. Congress President and Leader of Opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge, Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi, and opposition MPs from other parties staged a sit-in on Parliament Street. India's women's cricket captain Harmanpreet Kaur has stepped down as captain across all three formats. The 37-year-old announced her decision after a BCCI review meeting in Guwahati. Harmanpreet led India to its maiden ODI World Cup title last year and also guided the team to gold at the Asian Games. She captained India in 5 tests, 51 ODIs and 155 T20 internationals, having led the T20 side since 2016 and taken charge of the ODI team in 2022. And with that, we end this news bulletin.
0: आकाशवाणी रांची से

0: मौसम विभाग ने 14 जिलों में जारी की आंधी तूफान की चेतावनी। और रांची के खेलगांव में खेलो झारखंड राज्य स्तरीय खो खो और कबड्डी चैंपियनशिप शुरू। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 1000 से ज्यादा खिलाड़ी दिखा रहे दमखम। और अब समाचार विस्तार से। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी कोर कमिटी की एक उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक में संगठन प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश के शीर्ष नेता शामिल हैं। बैठक में आगामी सांगठनिक कार्यक्रमों और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा जारी है। पिछड़ा जाति संघर्ष समिति के आह्वान पर आज रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और लोहरदगा में ओबीसी समाज का चक्का जाम आंदोलन जारी है। गुमला में सुबह से ही प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, वहीं सिमडेगा के झूलन सिंह चौक पर एनएच 143 को जाम कर दिया गया है, जिससे दुकानें और यात्री वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप है। उधर खूंटी में भी बंद का असर दिख रहा है। खूंटी रांची रोड स्थित हुटार चौक पर बंद समर्थकों ने वाहनों को रोककर प्रदर्शन किया और दुकानें बंद कराईं। दक्षिण पूर्व रेलवे के एजीएम मनीष जैन ने टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों और थर्ड लाइन परियोजना की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान सिख समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मिलकर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को नियमित करने की मांग भी रखी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री जैन ने कहा कि टाटानगर स्टेशन के पुनर्विकास का काम दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
1: हम लोगों ने टाटा स्टेशन का एक रिव्यू किया है, जिसमें कि एग्जिस्टिंग स्टेशन का भी फैसिलिटीज इंस्पेक्शन किया गया, निरीक्षण किया गया, और उसके अलावा जो यहाँ रीडेवलपमेंट का वर्क हो रहा है उसके बारे में भी रिव्यू करके कि उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं काम को, जिससे कि पैसेंजर्स को और बेहतर फैसिलिटीज जल्द से जल्द मिल सके।
0: रांची के मोरहाबादी मैदान में आगामी 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 5 दिवसीय जेसोवा दीपावली मेले का आयोजन किया जाएगा। जेसोवा के मनु झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेले से होने वाली आय का उपयोग समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए किया जाएगा। मेले में हर शाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे।
2: जसोवा दिवाली मेला 2026 का आयोजन मोरहाबादी मैदान रांची में किया जा रहा है, जो दिनांक 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा। मेला आगंतुकों के लिए सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। इस वर्ष भी जसोवा दिवाली मेला 5 दिनों का आयोजित किया जा रहा है।
0: सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह क्षेत्र के 3 युवकों की पुरुलिया में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वे बाइक से छाता मेला देखकर लौट रहे थे, तभी मालती चेक पोस्ट के पास एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुट गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से जीवन में आज की हमारी विशेष श्रृंखला में बात डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर की।
3: CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नागरिकों को विभिन्न प्रदान के सुदूर जिलों में मील का पत्थर साबित हो रहा है, जहां नागरिक आधार, आयुष्मान भारत, पीएम किसान और बैंकिंग जैसी सुविधाएं सीधे अपने गांव में प्राप्त कर रहे हैं। देश के अंतिम व्यक्ति तक तकनीक पहुंचाने के संकल्प

0: के साथ डिजिटल इंडिया का यह कारवां झारखंड के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुंच चुका है। इस बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
1: पहले बिल भरने के लिए, कहीं एप्लीकेशन देने के लिए, रिजर्वेशन के लिए, बैंक से जुड़े काम हो, ऐसी हर सेवा के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते। रेलवे का आरक्षण करवाना और गांव में रहता हो तो पूरा दिन खपा करके शहर में आता था और फिर लाइन में लगता था रेलवे आरक्षण के लिए। आज वो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाता है और वहीं से उसका काम हो जाता है, गाँव में ही हो जाता है।
0: प्रधानमंत्री के इसी विजन का असर राज्य के गुमला जिले में साफ देखा जा सकता है। यहाँ नागरिकों को बैंकिंग या सरकारी फॉर्म के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इस सहूलियत पर जिले के लाभुक बेहद उत्साहित हैं।
2: मेरा नाम निर्मल बड़ा है। जाति आवास्य के लिए CSC सेंटर, मतलब जो प्रज्ञा केंद्र, हम लोग के लिए काफी लाभदायक है।
3: मेरा नाम अनीता कुमारी है। जब से सरकार की ये CSC सेंटर वाली योजना आई है, हम लोग को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।
0: यह व्यवस्था सिर्फ सेवा ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए रोजगार का जरिया भी बनी है। गुमला के CSC संचालक आलोक कुमार के मुताबिक, पूर्व में बेरोजगार रहने के बाद अब वे खुद के साथ अन्य युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं। साफ है कि CSC की इस पहल से आज गुमला सहित पूरा राज्य आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल के साथ रांची समाचार कक्ष से मैं कुंदन कुमार वर्मा।
4: मजबूत घरेलू और वैश्विक संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 462 अंक बढ़कर 72,845 पर, जबकि निफ्टी 140 अंक की बढ़त के साथ 22,696 पर था। और इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,32,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। राज्य में मॉनसून की विदाई के बीच मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में आसमान में घने बादल छा गए हैं। मौसम विभाग ने आज रांची, धनबाद और गुमला समेत राज्य के 14 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और रांची के खेल गांव में आज से राज्य स्तरीय खेलो झारखंड खो खो और कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में राज्य के सभी 24 जिलों के 1,152 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अंडर 17 वर्ग के ये मुकाबले अल्बर्ट एक्का स्टेडियम और हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होंगे। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक शुरू। संगठन प्रभारी और शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में बन रही भावी सांगठनिक रणनीति। रांची, गुमला, खूंटी और सिमडेगा सहित 5 जिलों में आज OBC बंद का असर। चक्का जाम से वाहनों का परिचालन ठप। टाटानगर में रेलवे AGM और DRM ने किया स्टेशन परिसर का मुआयना। पुनर्विकास और थर्ड लाइन परियोजना की प्रगति की हुई समीक्षा। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में छाए घने बादल। मौसम विभाग ने 14 जिलों में जारी की आंधी तूफान की चेतावनी। और रांची के खेल गांव में खेलो झारखंड राज्य स्तरीय खो खो और कबड्डी चैंपियनशिप शुरू। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 1,000 से ज्यादा खिलाड़ी दिखा रहे दमखम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी कार्यक्रम में। हमारी आज की कलाकार हैं सिप्रा बोस, इनसे आप सुनेंगे ये उपशास्त्रीय संगीत। सबसे पहले मिस्र खमाज में ठुमरी, बोल हैं साजन अब घर आजा, और खातिर से या लिहाज से गजल सुनिएगा, और एक और पर बारामासा दादरा में सुनवाएंगे आज हुना आए।

मनोरंजनी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं उपशास्त्रीय संगीत। हमारी आज की कलाकारा हैं श्रीमती सिप्रा बोस। इनसे लीजिए सुनिए बारामासा दादरा में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सिप्रा बोस की आवाज में ये बारामासा, और इसी के साथ आज का अनुरंजनी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चंद गजलें भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाजों में। लीजिए सुनिए सबसे पहले ये गजल भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये गजल मिताली सिंह की आवाज में, और इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, इस समय दिन का 2 बजने को है और आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से मिडडे न्यूज और दोपहर समाचार थोड़ी ही देर में।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स with the midday news. The headlines. Defence Minister Rajnath Singh launches Fleet Support Ship 1 and lays keel for Fleet Support Ship 5 at Hindustan Shipyard in Visakhapatnam. Polling underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. E-Sanjeevani crosses 50 crore teleconsultations, marking a milestone in India's digital healthcare initiative. World Bank raises India's GDP growth projection by 0.5% to 7.1% for current fiscal.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और 19 स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल

0: ने उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिपबिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिपवन भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मधुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मधुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
2: नर्मदा नदी में साधु बे पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। विधानसभा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
2: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
4: स्टैच्यू यूनिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है। हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
2: अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज़

0: आईआर ऐप और पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ ओपीडी परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
3: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
4: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने

0: बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
1: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था, और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट सीजेआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। सीजेआई ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे, उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हुतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदैदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्रिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती। इसके पहले ये संदेश।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर।
2: हमारे देश की सेवा, देश प्रेम, कर्तव्य साहस और अनुशासन की भावना से ओतप्रोत हमारे फौजी भाई, उनके लिए ये प्रोग्राम, उनको हमारा दिल से नमन।

हमारा देश सुरक्षित है। सेना की ताकत उनके अनुशासन और आपसी भाईचारे में है। कठिन परिस्थितियों में भी, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो या रेगिस्तान की गर्मी, हर परिस्थिति में हमारे सैनिक भाई अडिग रहते हैं। और उनकी वर्दी, वो केवल कपड़ा नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की भरोसे का प्रतीक है। जब ये सरहद पर तैनात होते हैं तो हमारा पूरा देश चैन से सोता है। अपने देश की मिट्टी के लिए वो हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहते हैं, हमारे भारतीय सैनिक।

हमारे भारतीय सैनिक जिस जगह पर खड़े हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, वहां जाने के लिए आजकल युवाओं के साथ साथ हमारी बहनें भी आगे बढ़ती हैं। पता है सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन जो लोग इसके लिए आगे आते हैं उन्हें कौशल, चरित्र और जीवन की दिशा के रूप में भरपूर लाभ और सम्मान मिलता है। सेना में शामिल होना सशक्त बनने, अधिक सीखने और किसी उद्देश्य के लिए खड़े होने का मार्ग है। यदि आप भी अपनी क्षमता, योगदान और सहभागिता से भरा जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे सैनिक भाई या बहन बन सकते हैं, जिन पर हमारे देश को हमेशा नाज रहता है। माना कि ये बहुत ही मुश्किल और चुनौती भरा काम है, लेकिन हमारे देश में इनका सम्मान सर्वोपरि है।

हमारे फौजी भाई अपने देश की सेवा के लिए पूरे मन से तन से लगे रहते हैं, अपने परिवार के साथ में अलगाव में रहते हैं। उनके परिवार को भी हम दिल से नमन करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए ऐसा देश प्रेम भेजा है। और देश प्रेम से जुड़ा एक और गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज का जय भारती कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 अक्टूबर को रांची आएंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर कृषि विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। इसे लेकर कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज की अध्यक्षता में कृषि निदेशालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में कृषि मंत्री के कार्यक्रम को लेकर आवश्यक तैयारी और विभागीय स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। पिछड़ा जाति संघर्ष समिति के आह्वान पर आज रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और लोहरदगा में ओबीसी समुदायों ने चक्का जाम कर दिया। इन जिलों में आंदोलनकारियों ने वाहनों को रोककर प्रदर्शन किया और दुकानें बंद कराईं। गुमला में सुबह से ही प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के केंद्रीय महासचिव दिलीप नाथ साहू ने बताया कि ओबीसी वर्ग के लोग सरकारी नौकरी में आरक्षण, राजनीति में हिस्सेदारी, पेशा कानून के तहत अधिकार और जनगणना में अलग कॉलम की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
2: हम लोग झारखंड आंदोलन कर रहे थे, क्या उम्मीद था कि झारखंड अलग मिलेगा तो यहाँ के नौजवानों को, खास करके पिछड़ा जातियों को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा।

0: आज दुर्भाग्य हो गया, आरक्षण तो जाने दीजिए, यहाँ हम लोग को मैंने चपरासी लगने लायक नहीं रह गया है, हम लोग को जीरो कर दिया गया है। अब इस क्षेत्र में हम लोग का तो जिंदगी निकल गया, लेकिन आने वाला भविष्य का अगर नहीं सुधार करके हम लोग जाते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य के नौजवान बच्चों का भविष्य अंधकार हो जाएगा। इसी के तहत आज हम लोग बंदी कर रहे हैं।
1: विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% का था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आकांक्षी जिला के रूप में चुने गए लातेहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार से दूर दराज के आदिवासी गांवों तक पक्की सड़क पहुंचाने की कोशिश तेज हो गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में देश भर में 62,500 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी। इस संबंध में सुरेंद्र प्रसाद वैद्य ने बताया कि इस योजना के तहत अब 250 आबादी वाली बस्ती भी पक्की सड़क से जोड़ी जाएगी।
2: पहले नियम था कि 500 लोग जहां रहते हैं वहीं सड़क बनेगी। इस नियम से हमारे बहुत से छोटे छोटे टोले छूट जाते थे। अब सरकार ने नया नियम बनाया है, अब 250 लोगों की बस्ती में भी सड़क बनेगी। जहां नक्सली समस्या है वहां 100 लोगों की बस्ती में भी सड़क बनेगी।
3: फिलहाल रोड नहीं बनने से पहले तो बहुत जर्जर स्थिति में हमारा क्षेत्र का ये जो बाईपास रोड है था, और आगमन का साधन बहुत अच्छा हो गया है। हम लोग कॉलेज या शहर की ओर जाते हैं तो सेफ्टी तरीके से आना जाना, कोई परेशानी पैसा है नहीं।
1: देवघर नगर थाना क्षेत्र के नंदन पहाड़ मोहल्ला स्थित सेवाधाम के पास चोरों ने आज अहले सुबह SBI की ATM मशीन की चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार 6 से 7 अपराधी ATM मशीन को गैस कटर से काट कर बाहर निकाला, फिर रस्सी से बांधकर करीब आधा किलोमीटर तक घसीटकर सुनसान जगह पर ले गए और वहां से कार में लोड कर फरार हो गए। पूरी वारदात पास के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मॉनसून की विदाई के बीच मौसम ने बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज रांची, धनबाद और गुमला समेत राज्य के 14 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। प्रादेशिक
4: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक हैं NCERT।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है उमंग कार्यक्रम में
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का सबसे मजबूत आधार है। आज की मेहनत कल के उज्जवल भविष्य की पहचान है।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन।
2: ईदूग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है,
0: आज का बरसात और मेंढक कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। पर्यावरण में हर जीव का यानी चींटी से लेकर हाथी तक

0: एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है।
1: जी।
0: हमें पशु पक्षियों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए।
1: जी, और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
0: और इसके साथ हमें मिला है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार जी का,
1: चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन जी ने लिखा है,
0: मैं आप लोगों का उमंग कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ, बड़ी ही सुंदर और आनंदमयी प्रस्तुति रहती है।
1: जी।
0: कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो जाता है, धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के।
0: जिला गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप और संगीता गोप के साथ साथ लिपि गोप और दीपाली गोप ने भी हमें संदेश भेजा है।
1: पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। आगे लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए के अंतर्गत प्रेरक प्रसंग की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है जो बेहद पसंद आ रही है। प्रेरक प्रसंग छोटे जरूर है लेकिन इसमें ज्ञान की जानकारी, शिक्षा का संदेश भरपूर प्राप्त होता है। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा जी एवं दशरथ मांझी जी के प्रेरक प्रसंग सुनकर सुखद संदेश प्राप्त हुआ। आगे के भी प्रेरक प्रसंगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रेरक प्रसंग सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी, हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, हम हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं, आइए इस सप्ताह अब हम चलते हैं चर्चा की दुनिया में। हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरस्कारों की।
1: अजीत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी व्यक्ति के महान काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है?
0: विमलेश जी, मेरा अनुमान है आप बात कर रही हैं नोबेल पुरस्कार की।
1: बिल्कुल सही अजीत जी, लेकिन आज की कहानी नोबेल पुरस्कार के साथ साथ उस व्यक्ति की भी है जिसके एक फैसले ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी जारी है, और उस विरासत को हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं।
0: तो चलिए श्रोताओं, आज सुनते हैं नोबेल पुरस्कार की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ष 1833 से, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बालक का जन्म हुआ, नाम था अल्फ्रेड नोबेल।
1: बालक अल्फ्रेड नोबेल को बचपन से ही विज्ञान और अध्ययन में विशेष रुचि थी। वे बहुत ही जिज्ञासु थे और हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। बड़े होकर वे रसायन विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में काम करने लगे।
0: श्रोताओं, उन दिनों सड़क बनाने और खानों का उत्खनन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
1: जी।
0: पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना बहुत ही श्रम साध्य कार्य था और इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
1: अल्फ्रेड नोबेल ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों पर भी शोध किया। शोध और प्रयोग करने के क्रम में एक बार उनकी प्रयोगशाला में भयंकर विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल को जान गंवानी पड़ी।
0: उनके इन प्रयोगों का भारी विरोध हुआ, लेकिन श्रोताओं, अल्फ्रेड ने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने डायनामाइट की खोज की।
1: खनन, सुरंग बनाने और निर्माण कार्यों में डायनामाइट के उपयोग से काम बहुत आसान हो गया। अब आसानी से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता था, लेकिन विस्फोटकों का इस्तेमाल युद्ध में भी होने लगा। डायनामाइट के कारण बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को जान गंवानी पड़ती थी। समाज में अल्फ्रेड नोबेल की कटु आलोचना हुई। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को सामूहिक स्थानों में भी लोगों की निंदा सुननी पड़ती थी।
0: और इसी क्रम में श्रोताओं, अल्फ्रेड नोबेल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन और इतिहास की धारा बदल दी।
1: क्या हुआ था अजीत जी?
0: विमलेश जी, वर्ष 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक अखबार ने गलती से स्वयं अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की खबर प्रकाशित कर दी जबकि वे जीवित थे।
1: जी।
0: अखबार में उनके बारे में प्रकाशित खबर उन्होंने स्वयं पढ़ी। मालूम है अखबार में क्या छपा था?
1: जी, क्या छपा था?
0: अखबार में छपा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई।
1: और श्रोताओं, इस घटना ने उन्हें गंभीरता से सोचने का अवसर दिया। वे सोचने लगे, मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस रूप में याद करेगी?
0: जी श्रोताओं, डायनामाइट के आविष्कार से उन्होंने अथाह धन कमाया था। अब उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी विरासत के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया। और पता है श्रोताओं, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया?
1: 1895 में अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसी व्यवस्था के लिए रखने के लिए निर्णय लिया जिसके ब्याज की राशि से उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
0: श्रोताओं, फिर हुआ ये कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार व्यवस्था की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
1: शुरुआत में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
0: और बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ।
1: जी।

0: विमलेश जी, मुझे इस पूरी कहानी में एक बात बड़ी प्रेरक लगती है।
1: वो कौन सी अजीत जी?
0: वो ये है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया उसे केवल अपने लिए रखने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगाया जिससे मानवता के लिए किए गए महान कार्यों को पहचान मिल सके।
1: जी अजीत जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। जी हाँ श्रोताओं, नोबेल पुरस्कार की कहानी केवल पुरस्कार पाने वालों की कहानी नहीं है, ये उन विचारों की कहानी भी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
0: तो श्रोताओं, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें वास्तव में क्या सिखाती है?
1: शायद यही कि जीवन में केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने दुनिया को क्या दिया।
0: जी बिल्कुल, और दुनिया को कुछ देने के लिए हमें पुरस्कार ही मिले ये जरूरी नहीं है।
1: जी,
0: कोई शिक्षक किसी बच्चे को शिक्षा देकर, कोई डॉक्टर सेवा करके, कोई वैज्ञानिक नई खोज करके, और कोई साधारण व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करके भी समाज में अपना योगदान दे सकता है।
1: यानी महानता केवल बड़े पुरस्कारों में नहीं बल्कि उन कामों में भी होती है जो किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
0: तो श्रोताओं, आज की कहानी से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए, और हमारा सवाल है,
1: हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारा अच्छा काम लोगों के काम आता रहे।
0: और यही सोच एक व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है,
1: और यही है नोबेल पुरस्कार की कहानी।
0: जी
1: तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आज की प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: हमारा आज का प्रश्न है, अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी,
0: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है चतुर गीदड़।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
2: मगरमच्छ अपने आप से।
3: तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। मित्र कछुए,
4: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो?
3: क्या बताओ मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं।
4: क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली?
3: अरे मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता।
4: हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है।
3: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा।
4: अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो,

0: मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
1: है? क्या कहा? मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था।
0: क्या कहा?
1: कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
0: आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। देखो, बेचारा मरा पड़ा है।
2: गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से कहता है,
1: अरे ये तो बिल्कुल शांत है।
3: ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है?
4: हाँ, देखते नहीं, ये तो मरा पड़ा है।
1: पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा।
4: नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है।
2: तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए कहता है,
1: अपने मित्र को देखो।
0: खोल दो अपनी आंखें। भाग गया गीदड़। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए। अब उसे पकड़ना कठिन है।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम चतुर गीदड़।
6: उस रात ऑफिस से निकलने में दुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, और सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
7: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
5: और अब सुनते हैं कार्यक्रम।
8: जानकारी देते हुए उनके दर्शन की चर्चा की गई है तथा बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा राजदरबार के एक विद्वान को पराजित किया और न्याय की स्थापना की।
9: त्रेता युग में आरुणि उद्दालक नाम के महर्षि थे। वे महापंडित, वेदों के ज्ञाता और तर्क वितर्क में निपुण दार्शनिक थे।
10: उनकी सुजाता नाम की पुत्री थी। ऋषि उद्दालक के सर्वश्रेष्ठ और प्रिय शिष्य थे ऋषि कहोड़। मेधावी और मेहनती कहोड़ वेद शास्त्रों में अपना अधिक समय बिताते थे। गुणवती, रूपवती और विदुषी सुजाता भी वेदों की ज्ञाता थी। एक दिन,
11: कहोड़, मैं तुम्हारे ज्ञान और सेवा से प्रसन्न हूं। जैसे ही तुम्हारे शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण होती है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी सुजाता से कर दिया जाए।
12: जो आज्ञा आचार्य।
11: तुम दोनों मेरे आश्रम में रह सकते हो, और मैं ये भी चाहूंगा कि अपने शिष्यों की शिक्षा का कार्य भी जारी रखो।

0: पति कहोड़ और पत्नी सुजाता संगमा नदी के किनारे ऋषि उद्दालक के आश्रम में सादगी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती हो गई।
1: भले ही क्यों ना मेरा शिशु अभी गर्भ में है, मैं उसे पवित्र मंत्रों से अवगत करवाऊंगी।
2: समय बीता, सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। उसके शरीर में 8 स्थानों पर विकृतियां थीं, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। शरीर में विकृतियों के बावजूद बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। सुजाता अपने नवजात शिशु को लेकर अपने पिता उद्दालक के आश्रम में आ गई। लगभग इसी दरमियान ऋषि उद्दालक की पत्नी को भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेत केतु रखा गया। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक को अपना पिता ही मानने और कहने लगे, और मामा श्वेत केतु को अपना भाई कहते थे। एक समान आयु के श्वेत केतु और अष्टावक्र मामा भांजे मानो भाई भाई की शिक्षा साथ साथ हुई।

0: ऐसे में दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक।
1: 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए।
2: ए, ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है, जाओ अपने पिता की गोदी में बैठो।
0: बालक अष्टावक्र ने अपमानित महसूस किया और रूठे हुए वो अपनी माँ के पास आए।
3: माँ, क्या मैं तुमसे जन्मा हूँ, है ना?
4: तुम रो क्यों रहे हो मेरे बेटा अष्टा, क्या हुआ?
3: माँ, मुझे बताओ कौन है मेरे पिता? तुम चुप क्यों हो? क्या महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं है?
4: हाँ अष्टा, महर्षि उद्दालक तेरे पिता समान है, वो तेरे धर्म पिता है बेटा।
3: तब कहोड़ कौन थे? मन कठोर कर सच बोलो माँ।
4: बेटा, वो पिता है तेरे बेटा, पिता है।
1: आखिर नाना और पिता का भेद तो खुलना ही था। गरीबी से परेशान और धन कमाने की आशा में कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए मिथिला में राजा जनक के दरबार गए। जब उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया तो राजा जनक ने उनका स्वागत किया।
5: राजा जनक, मैं ऋषि कहोड़। ओह, पूज्य ऋषि, आप सही समय पर आए हैं। हमारे यहां बंदी नाम का एक विद्वान है, शास्त्रार्थ वाद विवाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
6: हे राजन, मुझे कोशिश करने दे।
7: आचार्य कहोड़ और आचार्य बंदी के बीच होने वाला यह शास्त्रार्थ अत्यंत रोचक होगा और घातक भी हो सकता है।
8: देखते हैं क्या कौन विषय।
0: शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हुआ परंतु अधिक देर ना चल सका क्योंकि कहोड़ बंदी के सामने टिक ना पाए थे।
1: फिर बेचारे कहोड़ को भी बाकी पराजितों की तरह कठोर दंड दिया गया।
9: अत्यंत दुख है, मैंने एक और ऋषि को खो दिया है जो यज्ञ में भाग लेने आए थे।

0: अब यज्ञ सफल कैसे होगा?
1: जब महर्षि उद्दालक को ये समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बता दिया कि ऋषि कहोड़ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे।
0: श्वेत केतु अष्टावक्र है, मुझे प्रतिशोध लेना है और बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। आओ मिथिला राजा जनक की सभा में चलते हैं। सुना है 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए महायज्ञ को राजा जनक पूर्ण नहीं कर पाए।
2: हाँ,
0: उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है।
2: कब चलना है?
0: बस अभी तुरंत।
1: चौदह वर्षीय मामा भांजे श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों मिथिला में राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए।
3: बालक, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हो?
0: हम ऋषि उद्दालक के शिष्य हैं। हम मिथिला नरेश से मिलना चाहते हैं, कृपया आप हमें उनके पास ले चलें।
4: ब्राह्मण बालकों को राजा जनक के पास ले जाया गया।
2: बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है?
5: मेरा नाम श्वेत केतु है। हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं।
0: और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है तथा शास्त्रार्थ में पराजित हुए लोगों के भाग्य के बारे में भी। मैं बंदी को चुनौती देने और उन्हें पराजित होते देखने आया हूँ।
2: मुझे तुम्हें अवश्य सावधान करना चाहिए। तुम आचार्य बंदी के ज्ञान, उनके शास्त्रार्थ कौशल से परिचित नहीं हो। अब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है।
0: ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सामना कभी भी मेरी क्षमता के विद्वान से नहीं हुआ। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं दंभी बंदी को हारते हुए नहीं देख लेता।
1: जनक को लगा कि आश्वस्त अष्टावक्र जिद पर अड़े हुए हैं।
2: मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगे तो मैं तुम्हें आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा। तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है? जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता? और दिल किसके पास नहीं है? और यह भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज वेग से बहती है?
0: हे राजन, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बहती है।
2: अत्यंत सुंदर।
4: राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए।
2: ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है।
0: विद्वानों के संरक्षक और आश्रय दाता मिथिलेश की जय हो।
6: मिथिलेश की जय हो। मिथिलेश की जय हो। जय हो।
1: दरबार में बैठे सभी लोग खिल खिलाकर हंसने लगे।
0: मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं।
4: अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे।
2: अन्य सभी हंस रहे हैं।

0: ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार आप क्यों हंस रहे हैं?
1: आप सब अपने आप को महान समझते हैं और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है? परखा है मन की आंखों से? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है।
0: हे ब्राह्मण कुमार, तनिक समझाकर स्पष्ट करें।
1: हे राजन, मंदिर के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वयव है और मंदिर सावयव है। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता है राजन।
0: बालक, तुम तो विलक्षण हो और मेधावी वक्ता भी।
2: वाक द्वंद्व का अंतिम दिवस है आज। वाद विवाद करने के लिए मैं इन होनहार बालकों को यज्ञ मंडप में महापंडित बंदी से मिलने की अनुमति देता हूं। मंडप में एक वेदी पर आचार्य उद्दालक के शिष्य अष्टावक्र और दूसरी वेदी पर राज पंडित बंदी।
3: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक, और इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
4: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
3: मुकुल सिंह,
4: वीरेंद्र
3: और हमारी आज की विशेषज्ञ
4: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक थे NCERT। अब आइए सुनते हैं विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा, इसका 19वां संस्करण।
7: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 19वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा डिजिटल भारत तकनीक से परिवर्तन तक। इसमें भाग ले रहे हैं IT विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का जन सेवा का नेतृत्व 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान कार्यकाल तक प्रशासनिक दक्षता, जन केंद्रित सोच और तकनीकी नवाचार का एक अनूठा संगम रहा है। जब 2014 में डिजिटल इंडिया अभियान की नींव रखी गई थी तो ये केवल एक सरकारी योजना भर नहीं थी, ये भारत की शासन व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने वाला एक दूरदर्शी विजन था। और प्रधानमंत्री की ये स्पष्ट सोच रही है कि तकनीकी केवल अमीर या साधन संपन्न वर्गों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने और प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के मकसद से भी होना चाहिए। इसी सोच ने भारत में डिजिटल क्रांति का जो एक नया दौर देखा है, और जो डिजिटल डिवाइड की हम पहले बात किया करते थे, उस डिजिटल डिवाइड को पाटने का काम किया है। तो जहां एक तरफ पहले भारत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है रहा था, तो अब डिजिटल तौर पर भी भारत एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है, जिसमें हर गरीब तक अर्थव्यवस्था डिजिटल माध्यमों से पहुंच रही है। बहुत सारे ऐसे समाधान, ऐसी समस्याएं जिनका समाधान जटिल था, वो डिजिटल तरीकों से मिल रहा है। तो आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि डिजिटल भारत में तकनीकी से जो एक परिवर्तन यात्रा रही है, वो कैसे एक सफल यात्रा

0: ही है और कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने भारत को एक डिजिटल भारत का नया विजन दिया है और आने वाले समय में कैसे विकसित भारत बनाने में भारत का ये डिजिटल सफर बहुत महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण अंग साबित होने वाला है। तो इस विषय पर विस्तार से आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो विशेषज्ञ शामिल है। मैं स्वागत करना चाहूंगा तकनीकी और IT विशेषज्ञ प्रसून शर्मा जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: और हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक और तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ शंकर अय्यर जी भी जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
0: तो प्रसून जी, सबसे पहले मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा कि अभी हमने बात की कि हर व्यक्ति तक डिजिटल माध्यम से सुविधाओं के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जो एक डिजिटलीकरण है वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है, और इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री ने डिजिटल भारत की नींव रखी थी। आप कैसे देखते हैं वर्तमान समय में गवर्नेंस में जिस तरह से डिजिटल दौर ने एक नई भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है भारत में हर कोने कोने तक डिजिटलाइजेशन को पहुंचाना, उससे किस हद तक हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं?
1: जी, प्रधानमंत्री जी ने जो 25 साल में किया, जैसे फाइलों से फोन तक, कतारों से क्लिक तक, तो ये जो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चेंज भारतीय सरकार और गवर्नेंस में हुआ, ये जब प्रधानमंत्री जी पहली एक स्वागत करके ऐप उन्होंने गुजरात में चलाई थी, जिससे वो पब्लिक ग्रेवांसेस को डिजिटली एक्सेप्ट करते थे, वहां से स्वागत से लेके अब जैम तक जो प्रधानमंत्री जी ने तकनीक को जो टूल बनाया है कॉमन सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, चाहे अगर आप देख लीजिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तकरीबन 3 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जो कि पहले कहा जाता था कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे ही पहुंचता है, अब वो सीधा हमारे किसानों पे, हमारे जो गांव के हथकरघा में काम कर रहे हैं वो, या मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनके खाते में जा रहा है। तो ये तकनीक को एक सुशासन का टूल बना के और अंतिम पंक्ति में जो जरूरतमंद सिटीजन खड़ा है उनको एम्पावर किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने इन 25 सालों में।
0: बिल्कुल शंकर अय्यर जी, जैसा कि प्रसून जी ने बताया कि किस तरह से चाहे वो स्वागत पहल हो या जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने जो जैम ट्रिनिटी का एक नया इकोसिस्टम बनाया, तो जिस तरह से ये परिवर्तन रहे हैं, उन्होंने कैसे भारत में जो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है उसको पूरी तरह से बदला है, और आज हम देश में देखते हैं कि करोड़ों अब डिजिटल पहचान है लोगों के पास, उनके खाते हैं, बैंक में खुले हैं, एक मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से लोग जुड़े हैं, खातों में लगातार योजनाओं का सीधा लाभ नागरिकों तक पहुंच रहा है, तो एक पूरा जो तंत्र बना है वो कैसे डिजिटल दौर से संभव हो पाया है?
2: देखिए, एक नेता की जो अपनी एक पहचान होती है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेशन। वो मुख्यमंत्री होने से पहले भुज में जब भूकंप हुआ था तो एक प्रॉब्लम था तब कि कैसे जो JCB है वो कैसे दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि रोड सारे बिगड़ गए थे
0: जी।
2: तो जब ये सोचा जा रहा था तब नरेंद्र मोदी ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना JCB को ट्रेन पर ले जाया जाए। तो इट वॉज उनको कितने सारे JCBs को अहमदाबाद और उनके डिस्ट्रिक्ट्स में बाय ट्रेन, बाय रोड के बजाय बाय ट्रेन ले जाके पहुंचा के रिलीफ पहुंचाया गया। तो एक सोच है उनकी कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ वहां से उन्होंने एक SMS की सुविधा स्टार्ट की थी
0: जी।
2: जो मछुआरे हैं उनको सैटेलाइट इमेज देखने के बाद, मतलब मछुआरों को सिर्फ SMS आता था कि आप तट से इतनी दूर जाएंगे तो मच्छी की स्कूल, जो स्कूल ऑफ फिशेस बोलते हैं ना, मच्छी अपने साथ में एक एक झुंड में जाते हैं, तो उनको लोकेशन दिया जाता था ताकि वो ज्यादा डीजल खर्च ना हो, ज्यादा घर से ज्यादा देर दूर ना रहे और हर दिन एक अच्छा कैच उनको मिले। ये एक सुविधा थी। अभी हम लोग सब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, उन दिनों में वो मतलब दो प्रॉब्लम थे कि गुजरात में पानी का अभाव, जो पावर का अभाव, तो उन्होंने कनाल के ऊपर सोलार लगवाया, तो सोलार टॉप कनाल, ऐसे ये जो सुविधाएं थी। और जब अब हम लोग जब डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो है आधार। और जब आधार इम्प्लीमेंट हो रहा था, भले ही उनकी पार्टी की जो भी भूमिका रही होगी उस वक्त, लेकिन गुजरात में 100% इम्प्लीमेंट हुआ था जब वो मुख्यमंत्री, और जैसे वो सेंटर में आए तब तेल का भाव $120 था, कच्चे तेल का, तो इन्होंने उसको एक्सपैंड किया। तो ये जो हम लोग आज जो डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें

0: दो बातें हैं, एक है आपके पास एक नॉलेज है, एक सुविधा है तकनीकी, लेकिन उसको सोशलाइज कैसे करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी
1: जी।
0: अगर आपने वो जो अकाउंट्स खोलने की जो बात हुई थी, जो हर नागरिक के पास अकाउंट होना चाहिए, तो उन्होंने देश भर में जितने मैनेजर्स हैं बैंक्स के, उनको सबको चिट्ठी लिखी है। मतलब ये आधार की जो जर्नी है, इसको मैंने अपनी किताब में लिखा, और मैंने इसको उस वक्त जब मैंने कहा था कि ये 12 डिजिट रेवोल्यूशन है,
1: बिल्कुल,
0: तब लोग कह रहे थे कि अरे बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया आपने, लेकिन आज आप देखें डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो ये सचमुच में 12 डिजिट रेवोल्यूशन है।
1: बिल्कुल। और प्रसून जी, अभी जिस बात की हम, जिस विषय पर हमें भी चर्चा कर रहे थे कि जैसे तकनीक ने एक पूरे तंत्र को बदल दिया है, पहले जब ये बात कही जाती थी कि केंद्र से भेजा जाने वाला एक रुपया जमीन पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के विजन को अगर हम देखें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस माध्यम से सरकार ने अब तक ये आंकड़ा है कि लाखों करोड़ रुपए तक बचाए हैं, सीधे लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचा है, सीधे बैंक खातों में अब किसी भी योजना का लाभ पहुंच जाता है, बिचौलियों के बीच कोई पैसा हस्तांतरित नहीं होता है, जिससे जो योजनाओं का लाभ है और जो हेरा फेरी है उसको रोका गया है बड़ी संख्या में। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो DBT मॉडल है उसने भारत के नागरिक और सरकार के बीच एक विश्वास का नया संबंध स्थापित किया, और कैसे तकनीक ने इसमें खासतौर पर बड़ा रोल निभाया है?
2: जी बिल्कुल, अगर आप उसके तथ्य देखिए, तकरीबन DBT के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर हुई है लाभार्थियों में, और जो अनुमानित बचत है जो पहले बिचौलियों के पास जाता था वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास एक अनुमानित आंकड़ा है, तो इतनी बड़ी बचत और सीधा लाभार्थियों तक इसका पहुंचना, ये बहुत बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। दूसरा, इससे जो हमारे आधार से जो प्रमाणीकरण या KYC होता है, उससे जो राशन कार्ड या खाद सब्सिडी है वो तकरीबन 1.8 लाख करोड़ की बचत हुई है। मनरेगा में 98% जो मजदूरी समय पर पहुंची है, पहले ये भी होता था कि वो कई महीनों वेट करना पड़ता था उनको अपना जो भी मजदूरी लेने के लिए, अब तकरीबन मतलब उनको टाइम पे पैसा भी मिल रहा है, सही पैसा मिल रहा है, और जितना उनका भुगतान होना है वो सीधा उनके पास आ रहा है, तो वो किसी पे निर्भर नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने एक विश्वास की नई नींव रखी है जो कि टेक्नोलॉजी आधारित है, और वो टेक्नोलॉजी आधारित नींव ना सिर्फ भारत में, अब जो इंडिया स्टैक करके जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 24 देशों ने अडेप्ट करने के लिए भारत से सहयोग मांगा है।
1: भारत के विश्व भर को मिल रहे सहयोग की आपने बात की, तो एक और भारत बड़ा योगदान पूरी दुनिया में दे रहा है, वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन का योगदान। तो विश्व बैंक का ही अगर हम एक ताजा आंकड़ा अपने श्रोताओं को बताएं तो दुनिया भर में होने वाले कुल जो डिजिटल तरीके से लेन देन है उसका लगभग 46% से ज्यादा अकेले भारत में ही होता है। तो UPI ने एक बड़ी क्रांति पैदा की है शंकर जी, और हम देखें तो अब इस बात को तो खैर हम सभी मानते हैं, हमारे लिए तो एक सामान्य सी बात हो गई है कि हम कहीं भी पहुंचे, गांव में, रेहड़ी पर, चाय की दुकानों में, तो हर जगह UPI के जरिए अब लेन देन होता है। तो किस तरह से अर्थव्यवस्था का ये नया दौर है भारत का, जिसमें कि जमीनी स्तर पर हम डिजिटल ट्रांजेक्शन की एक अभूतपूर्व क्रांति को देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस विजन को रखा पूरे देश के सामने कि भारत में एक पारदर्शिता के साथ डिजिटल तरीके से ट्रांजेक्शन हो सके, तो कैसे ये दौर बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए?
0: ये जो नींव रखी गई थी आधार की, उसके ऊपर कैसे बिल्डअप हुआ, कैसे हर कुछ महीनों में, सालों में हम लोग ने एक मंजिल और तैयार की, जैसे पहले था आधार, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री ने जो जनधन योजना की है जिसमें 50 करोड़ के लोगों के अपने अपने खाते खुलवाएंगे, उसमें मैक्सिमम जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं, फिर उसके बाद में जब NPCI ने UPI स्टार्ट किया और जब नोटबंदी हुई उसके बाद में कैसे इसको प्रोत्साहन मिला, लेकिन सबसे ज्यादा तो जो एवोल्यूशन हुआ, जो हमने इनोवेशन किया है वो कोविड के वक्त में। आप देखो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप क्या वैक्सीनेशन दे पाते विदाउट कोविड के, और कम से कम 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसी तरह हम लोग, जो हमको भी अंदाज नहीं होता है कि कुछ सालों पहले हम लोग जब हाईवे से जाते थे तो टोल के लिए कितनी बड़ी क्यू लगती थी, लेकिन अभी फास्टैग है और गाड़ियां ऐसे एकदम स्मूथली निकलती है। इसी तरह आप देखिए

0: कि जो यूपीआई की ट्रांजैक्शन की बात आप कर रहे थे जो एकदम करोड़ों में हो रहा है दिन में, एक दिन में करोड़ों में हो रहा है ट्रांजैक्शन, उसमें एक मैं हमेशा जो मैं एमबीए की बिटसॉम में एमबीए की क्लास को पढ़ाता हूँ और हर साल उस क्लास को या कहीं पे फिर भी मैं जब बोलने जाता हूँ तो मैं लोगों को पूछता हूँ कि आप पिछली बार अपने बैंक कब गए थे, तो लोग कई महीने अपने बैंक के ब्रांच में गए नहीं है, मैंने मतलब पिछली बार आप कब चेक लिखा आपने, तो वो भी नहीं होता है। मैंने फिर मैं पूछता हूँ पिछली बार आप एटीएम कब गए थे, तो कुछ लोग गए होते हैं एक महीने में या 15 दिन पहले। वैसे मैंने कहा पिछले 10 मिनट में या 1 घंटे में आपने कितने यूपीआई ट्रांजेक्शन किए, तो सारे हाथ ऊपर होते हैं
1: जी,
0: जितने क्लास में होते हैं कहीं पर। तो हम लोग अभी मतलब इसको जैसे एकदम बहुत नेचुरल हो गया है कि हाँ भाई गए आप सब्जी लेने गए तो यूपीआई कर दिया, ऑटो रिक्शा वाला आपको पूछता है आप पैसे देने निकले या उसके पास खुले नहीं होते तो वो बोलता है कि अरे जीपे कर दीजिए। तो इस तरह की जो सुविधा को हमने अपने लाइफ में ले लिया, और ये जो आमतौर पर कहा जाता है कि गरीब लोग तकनीकी एडॉप्शन में पीछे होते, लेकिन इतना फास्ट एडॉप्शन जो हुआ है ये दर्शाता है कि हमने किस तरह से उसको सोशली और पॉलिटिकली इसको स्थापित किया है। और इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं सराहना करूंगा,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उन्होंने उसको उस मैसेजिंग को कॉन्स्टेंट रखा है कि हम ये करेंगे ऐसे करना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए टेलीमेडिसिन, जो मतलब डॉक्टर के पास आप ना पहुंच पाए, गाँव में डॉक्टर ना हो तो भी आप वीडियो के तौर पे मेडिकेशन या अपनी जांच करा सकते हैं वीडियो के कॉल के थ्रू। और जो एजुकेशन में हो रहा है हम लोग इसको भांप नहीं पा रहे, लेकिन जितना लोग YouTube वगैरह से कोर्स ऑनलाइन कोर्स से सीख रहे हैं उतना शायद वो अपने स्कूल में या कॉलेज में ना सीख पा रहे हो।
1: बिल्कुल, यानी अवसरों की
0: बहुत बड़ी डिजिटल स्टैक,
1: अवसरों की अपार संभावनाओं को खोल दिया है भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने। प्रसून जी का भी मैं इसमें विचार लेना चाहूंगा, जैसा वर्तन हमने देखा है कोविड के दौर का उन्होंने जिक्र किया, उस वक्त का आरोग्य सेतु, कोविन पोर्टल जैसे तुरंत समाधान हमारे पास आ जाते हैं, डिजिटल लेन देन की हम यूपीआई की तो बात कर ही रहे हैं। तो अब जो एक डिजिटल परिदृश्य हर इंसान में, भारत में हर नागरिक के जीवन में रच बस गया है, वो कितना बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि आमतौर पर हम जब एक किसी भी चीज को अपना लेते हैं तो हमारे लिए वो सामान्य सी बात लगती है, लेकिन दुनिया भर में देशों को दशकों लग गए इस तरह के परिवर्तन को पाने में, लेकिन भारत ने चंद वर्षों में इस चीज को हासिल कर लिया, कितना बड़ा ये एक परिवर्तन है।
2: जी, एक तरह से ये क्रांति है जिसको डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है, और हर क्षेत्र में अगर आप देखिए एक और बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जेम करके, जो जब स्टार्ट हुआ जिसमें जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट किया गया और 400 करोड़ से शुरू हुआ और आज 5 लाख करोड़ का सालाना जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है वो जेम के थ्रू होता है, और उसमें से जो अपने छोटे एमएसएमई या उद्यमी उनको 9 लाख करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से। तो एमएसएमई भारत की रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, और उनको अगर ऐसे प्रोक्योरमेंट्स में जो बिचौलिए या जो पेमेंट में दिक्कत या डिले होता था उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जेम के माध्यम से बहुत ही सजग रूप से एड्रेस किया गया, ना सिर्फ एड्रेस किया गया उसके रिजल्ट्स दिए गए और एमएसएमईज को मजबूत किया गया। यही वजह है कि हमारे एमएसएमईज अब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स के टॉप 3 नेशंस में हैं, क्योंकि ये ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस हुआ है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा सक्सेस है, ना सिर्फ भारत के लिए सारे डेवलपिंग नेशंस के लिए, क्योंकि इस तरीके से टेक्नोलॉजी फॉर गुड फॉर एम्पावरिंग कॉमन सिटीजन्स इंक्लूडिंग एमएसएमईज हमारे फार्मर्स और स्टार्टअप्स, ये अद्भुत है और इसका रोजमर्रा में भी काफी इफेक्ट है, चाहे आप मतलब कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और जो बाकी इकोसिस्टम है जैसे मेड इन इंडिया या हमारे स्टार्टअप की इनोवेशंस हो रही है उनको भी मौका मिल रहा है सरकारी प्रोक्योरमेंट्स में अपने सॉल्यूशंस लगाने के लिए, चाहे वो हमारे फार्म्स में स्मार्ट फार्म्स हो सेंसर लग रहे हो या हमारे स्टार्टअप अंतरिक्ष में अपना स्पेस शटल भेज रहे हो। तो ये एक उपलब्धि है और ये एक इम्पैक्ट है प्रधानमंत्री जी के विजन का।
1: श्रोताओं, जन सेवा से देश सेवा इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल भारत से तकनीक से परिवर्तन की यात्रा, और इन दिनों इस विशेष श्रृंखला में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों का जो एक

0: परिवर्तनकारी नेतृत्व रहा है भारत को, जिसने नई दिशा दिखाई है, उस पर अलग अलग संस्करणों में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। एक और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा मैं प्रसून जी, वो है डिजी लॉकर। जो पेपरलेस गवर्नेंस है उसकी दिशा में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब करोड़ों ऐसे अकाउंट्स हैं डिजी लॉकर पर। हम पहले दफ्तरों में, कार्यालयों में जो कई जटिलताएं थी, अपने पेपर्स ले जाने पड़ते थे, तो एक पेपरलेस था इस समाधान ने दी। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो इससे कैसे एक तो पारदर्शिता के तौर पर डिजिटल लॉकर ने काम किया है कि जो एक सत्यापित डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे डिजिटल लॉकर में रहते हैं, और साथ ही नागरिकों की सुविधा को इसने और कैसे बढ़ाया है?
1: जैसे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग पे फोकस किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और ये डिजी लॉकर और आधार उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तकरीबन 70 करोड़ के आसपास डिजी लॉकर है। चाहे आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है या एक मोबाइल का सिम लेना है, आप डिजिटली, पहले कई हफ्ते या महीने लगते थे, आप कुछ सेकेंड्स में आप ये कर सकते हो, और आपको कोई फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी ले जानी नहीं है। इवन अगर आप देखिए, जो हमारे एयरपोर्ट्स में जब हम ट्रांजेक्ट करते हैं तो वहां पे आपका फेशियल रिकॉग्निशन से आप पूरा जो भी सिक्योरिटी गेट्स है उसको पास कर सकते हैं कुछ मिनटों में, जो पहले घंटों में होता था वो मिनटों में हो रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री का विजन था भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग प्रदान करना गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एक जीता जाता सक्सेसफुल उदाहरण है डिजी लॉकर, आधार और इससे रिलेटेड जो सेवाएं हैं। ना सिर्फ भारत सरकार उस पे सेवाएं दे रही है, जो हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड है या इनोवेशन वर्ल्ड है, वो भी इस पे अपने अपने सॉल्यूशंस बना के दे रहे हैं। चाहे वो मान लीजिए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सत्यापन करना हो, उनको अब बैंक नहीं जाना है, तो उससे काफी सुविधाएं मिलती हैं। चाहे वो विड्रॉल की हो, चाहे उनकी सब्सिडीज या उनको जो महीने का जो भी पैसा मिलता है वो मिलना हो, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने बनाया है जिसपे वो खुद भी सर्विसेज दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉमन गुड जो भारतीय सरकार ने बनाया है, वो एक सराहनीय कदम है। किसी एक कंपनी या किसी कुछ मुट्ठी भर लोगों की प्रॉफिट के लिए ये नहीं बनाया गया है।
0: बिल्कुल। अभी शंकर जी, प्रसून जी बात कर रहे थे जेम पोर्टल की। सरकारी खरीद में जो दशकों से एक अधिकार एक चला आ रहा था, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी समस्या थी, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने जो जेम पोर्टल लॉन्च किया, अब उसमें हम देखते हैं कि न केवल छोटे उद्योगों को नया एक रास्ता मिल रहा है सरकारी खरीद में, अब उन उद्योगों के उत्पादों को खरीदा जा रहा है, बल्कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए हुए सामान भी अब सरकारी दफ्तरों में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो व्यापार की जो सुगमता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उसको कैसे इस तरह के इनिशिएटिव्स ने बढ़ाया है, और क्योंकि ये एक डिजिटल पहल है, इससे जो हम ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की जो बात करते हैं उससे कैसे इससे मदद मिली है?
2: बहुत बड़ा चेंज जो हुआ है, एक बदलाव जो हमारे सिस्टम में हुआ है, वो हमने भागीदारी स्थापित की। हम लोग जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं एमएसएमई के, जैसे वे शर्मा जी ने कहा, तो उसमें क्या किया है हमने, हमने भागीदारी स्थापित की है। हमने जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पारदर्शिता के लिए डिजिटल लाया, लेकिन उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की जितने अवसर हैं वो सारे देश में है। अब कोई भी किसी भी दूर दराज एरिया से, इवन प्रधानमंत्री के दफ्तर में जो थर्मस फ्लास्क है वो पौंडीचेरी से गया है, कोई महिला बनाती है और वो सप्लाई। तो जो सुविधाएं हैं वो एक बात है, लेकिन जिस तरह से भागीदारी हमने लाई है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम में, कोई भी जो लोकतंत्र में, हमने कोई प्रॉब्लम जो लॉकडाउन और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी उसको ओपन किया था। अब आप कोई भी बात हो आप देख सकते हैं, कोई भी कोर्ट में आप अपीयर हो सकते हैं। ये जो भागीदारी लाई है जो बिजनेस में, जैसे आपको किसी के साथ, आप घर पे नहीं है लेकिन आपके घर में कोई सामान खरीदने गया हो, तो आप व्हाट्सएप, जो टेलीकॉम की फैसिलिटी है, जो आधार की फैसिलिटी है, जो यूपीआई की फैसिलिटी है, उससे आप कंटिन्यूस। और जितने लोग आजकल डिजिटली अपना सामान बेच रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, आमतौर पे हमारे जीवन में ऐसे वो शामिल हो गया है कि हम लोग इसको कोई ऐसा, हम लोग इससे अचरज नहीं होता हमको, लेकिन हम लोग कितनी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर, कितनी चीजें हमारा प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, ड्राइवर होता है, जो भी होता है, उसके साथ हमारा जो संपर्क है, जो सामाजिक संपर्क एक तरफ है, लेकिन जो व्यवहारिक संपर्क, जो बिजनेस रिलेशन है, वो टेक्निकल, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पावर होता है। जिस तरह से एकदम लास्ट माइल जो, या गांधी जी कहते थे कि द लास्ट पर्सन इन द क्यू, जो एकदम छोटे से छोटा आदमी उतना ही सशक्त है जितना अमीर से अमीर है तकनीकी के कारण।
0: प्रसून जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में ही जिक्र किया था स्वागत पहल का। 2003 में गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त एक बड़ी क्रांतिकारी पहल की थी, जैसा कि आपने भी बताया, संयुक्त राष्ट्र में बाद में उसे सम्मानित भी किया गया था उस पहल को। इसी मॉडल को अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक इसका परिष्कृत रूप हमारे सामने आता है सीपी ग्राम्स नाम से, इस तंत्र से जो तकनीकी के माध्यम से देखा जा रहा है कि जो जनता की समस्याएं हैं उसके त्वरित समाधान करने की एक सरकार की सोच है, और राज्यों के स्तर पर भी अपनी अपनी पहल की जा रही है। तो कैसे ये एक जो तंत्र बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा जनता से सीधे जुड़ने का, उनके ग्रीवांस को के समाधान का, कितना बड़ा ये एक डिजिटल माध्यम से सफल हो पाया है, कितना असरदार है ये?
1: बहुत ज्यादा असरदार है, और इसका जो सामान्य हम माई गॉव के रूप में जानते हैं उसमें तकरीबन 6 करोड़ के आसपास सुझाव आते हैं, और अब वो शिकायतों से सुझाव में परिवर्तित हो गए हैं, और तकरीबन 8 लाख शिकायतें और उनमें से 99% का शिकायतों का समाधान हुआ। दूसरा डिजिटल माध्यम अगर आप देखिए, आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मन की बात करके, जहां पे प्रधानमंत्री डायरेक्ट देशवासियों से मिलते हैं, देश में देश में भारत ने क्या किया उसका लेखा जोखा, और इवन छोटी से छोटी बात कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, कुछ नई पहल, उसके बारे में बातचीत करते हैं, और उसका फिर डिजिटल माध्यम से लोग उसमें सुझाव या अपना जो रिएक्शन है वो प्रधानमंत्री जी को भेजते हैं। तो ये एक डायरेक्ट वार्तालाप का जो इकोसिस्टम तकनीक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने डेवलप किया है वो बहुत सराहनीय है, और इससे अगर आप देखिए, आपने खुद महसूस किया होगा आकाशवाणी की जो श्रोताएं हैं और एंगेजमेंट है कितना ज्यादा बढ़ा है, और इसको एक तरह से एम्पावरमेंट के रूप में प्रधानमंत्री जी ने इसको इवॉल्व किया है सारे इकोसिस्टम को। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रभावी पहल है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और अब एक ये मैच्योर गवर्निंग मॉडल्स में मतलब पार्टिसिपेट करने लायक हो गई है।
0: बिल्कुल, और क्योंकि एक सफल लोकतंत्र वही होता है जिसमें सहभागिता होती है, समावेशी वो लोकतंत्र होता है, और समावेशिता के लिए, सहभागिता के लिए जब डिजिटल तरीकों का उपयोग होता है तो वो एक समस्या का समाधान लेकर आता है। जैसा कि आपने माईगोव का जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि 2014 में शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म के बाद अब 3 करोड़ से भी अधिक पंजीकृत नागरिकों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जन भागीदारी का मंच बन चुका है। तो शंकर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जब एक समावेशी लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो उसमें ऐसे प्रयास कैसे एक सफल लोकतंत्र की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि हम देखें चाहे बजट को लेकर सुझाव हो, जो शिक्षा नीति पर हमने देखा कि बहुत सारे परामर्श और सुझाव इस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार तक पहुंचे, और खासतौर पर आप क्योंकि आर्थिक विश्लेषक हैं तो जो आर्थिक नीतियां होती हैं उसमें भी जब जनता की आवाज डिजिटल माध्यम से सरकार तक पहुंचती है तो कैसे एक समावेशी लोकतंत्र बनता है, और सरकार के इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं?
2: बहुत सराहनीय है, जैसे बजट के पहले आप सबसे सुझाव मांगते हैं। पहले ये होता था कि सिर्फ इकोनॉमिस्ट से या जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए उनसे मांगा जाता था, लेकिन अब ये हुआ है कि आप डायरेक्टली अपने सुझाव एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जब सरकार मांगते हैं। इसको तो क्राउड सोर्सिंग की जो बेनिफिट्स है उसको मतलब पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया गया है, और हम लोग उसको और आगे कर ये दिशा है, उसको अगर बाकी सांसद और एमएलए लें तो अपने अपने क्षेत्र में इसको बहुत डेवलप कर सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र की जो सुविधाएं, जो दिक्कतें हैं उसको आप एक्सेप्ट करें एक प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जिस लेवल पर इसकी हम लोग जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन की, हमको एक तो हम देश के नेतृत्व की सराहना करते हैं, लेकिन लोगों की क्षमता, लोगों में जो उत्साह है, जो लोगों में जो एक्सेप्टेंस है, उसकी भी सराहना करनी चाहिए कि भारत के 100 करोड़ से ऊपर की जनता में एक रेडीनेस है, एक कोई मतलब इससे कोई झिझक नहीं है कि टेक्नोलॉजी से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से सामाजिक तौर पे हो, लोकतांत्रिक तौर पे हो, व्यावहारिक तौर पे हो, हम कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ले जाते हैं आगे। ये अपने आप में इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है कि आपके लोग इस विचारधारा से जुड़ने में इतना उत्सुक है और इतना उनकी पार्टिसिपेशन है।

0: एक और बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक पहल पर शंकर जी आपसे ही मैं विचार चाहूंगा। भारत के गांवों में सदियों से एक बड़ी समस्या थी कि जमीन के जो मालिकाना हक है उसको लेकर विवाद रहते थे। स्वामित्व योजना सरकार ने शुरू की, इस योजना के तहत जो ड्रोन की तकनीक है उसके जरिए मैपिंग के माध्यम से गांवों में जो संपत्तियां हैं उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया, लोगों को डिजिटल कार्ड बांटे गए और करोड़ों संपत्तियों के अब कार्ड लोगों को बांटे भी जा चुके हैं। इस योजना ने हम देखें तो गांवों में जो अर्थव्यवस्था है उसका एक पूरा इकोसिस्टम ही बदल दिया है। जहां जहां ये योजना पहुंच चुकी है संपत्तियों का वहां पर अब मोनेटाइजेशन हो चुका है और इस वजह से जो बैंकों से लोन लेने में दिक्कत आती थी संपत्तियों के एवज में वो भी अब उस समस्या को भी सॉल्व किया जा चुका है। तो स्वामित्व योजना पर आपके क्या विचार है? प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है कि डिजिटल तरीके से उस मैपिंग कर जो गांव के रिहायशी इलाके हैं उनके सही रिकॉर्ड को किया जाए और लोगों को उनका सही मैपिंग के जरिए कार्ड दिया जाए।
1: नहीं, बहुत बढ़िया पहल है ये, और इससे जो समाज में पहले होता था कि लड़ाई झगड़े होते थे कि किसकी स्वामित्व है, किसकी जमीन कितनी है, वो सारे सॉल्व होते हैं। और इसको इस तरह से आप देखें, जैसे कि हम लोग ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बिचौलियों को बाहर निकाला, उसी तरह से यहाँ पर जो फांदेबाजी होती थी जमीन को लेके उसको एकदम से कम किया है। इसमें एक और पहल जुड़ गया है जो सैटेलाइट प्रोग्राम है हमारे देश के, उस सैटेलाइट इमेजरी को इस जियो लोकेशन से इससे जोड़ा जा रहा है। जैसे कि अब मनरेगा की प्रोग्राम, तो मनरेगा में क्या काम हो रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें क्या काम हो रहा है, ये सारे इंटीग्रेट हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है, उसकी अपनी जमीन है, उसके पास में एक डिजिटल मैप है, डिजिटल कार्ड है, उसमें कोऑर्डिनेट्स होगा, उस कोऑर्डिनेट्स को हम सैटेलाइट मैपिंग से जोड़ेंगे तो उसकी सॉइल की, उस वेदर की, उस कंडीशन उसको पता चलेगा और उसने कब बोना है, किस फसल को बोना है, कब उसको काटना है, ये सारे सुविधाएं अभी इसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो स्वामित्व योजना को हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट के तौर पर ना देखें, इसके आगे उसका क्या होना है वो बहुत देश के किसान के लिए है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ी पहल।
0: बिल्कुल प्रसून जी, क्योंकि भारत अब उस राह पर चल पड़ा है जिसमें डिजिटल समाधान से भारत ने अपनी कई समस्याओं को सुलझाया है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है और प्रधानमंत्री जिस विजन के साथ आगे चल रहे हैं, चाहे वो हार्डकोर जो डिजिटल तकनीक है सेमीकंडक्टर या चिप उसके निर्माण से लेकर डेटा सेंटर्स का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, आगे आने वाले समय में जो जिस विजन के साथ भारत काम कर रहा है वो कैसे आने वाले समय में भविष्य में भारत को डिजिटल क्षेत्र में एक लीडरशिप की तरह खड़ा कर सकता है जिस तरह से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: जी, भारत ऑलरेडी एक डिजिटल सुपर पावर है। अगर आप देखिए पूरे विश्व में तीन ही तरह की डिजिटल इकोनॉमीज हैं। पहला जिसको हम यूएस फोकस मानते हैं, जिस गूगल, एप्पल, फेसबुक ऐसी कंपनियां यूएस बेस्ड चला रही है। दूसरा है चाइना बेस्ड बैटेक्स जैसे बाइडू, अलीबाबा और ये कंपनीज चला रही है। भारत ने एक तीसरा ऑप्शन दिया है पूरे विश्व को जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, जो प्रॉफिट के लिए नहीं बना है, एम्पावरमेंट के लिए बना है। तो ये भारत ने पूरे विश्व को ना सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, उसकी अडेप्टेशन अगर आप देखिए 150 करोड़ भारतीयों ने उसको जिस तरीके से अपनाया और बहुत छोटे समय में इतना ज्यादा उसको यूसेज या प्रोत्साहन मिला है, वो अपने आप में एक सराहनीय इकोसिस्टम प्रधानमंत्री ने बनाया है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार जो कर रही है पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जिसमें डेटा सेंटर से लेके, क्योंकि पूरे विश्व में दो ही कंट्रीज हैं जिसमें 1 अरब से ज्यादा की आबादी, वो है भारत और चाइना। तो ये एक तरह से डेटा प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं पूरे विश्व में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरह से ऑयल होता है। डेटा के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम यूजलेस हैं, जैसे कि हमारी कारें बिना पेट्रोल के या ईंधन के। तो उसका जो एक तरह से कैपेबिलिटीज हमारी सरकार जानती है, तो इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि हमारे डेटा सेंटर हो, हमारे खुद की चिप कैपेबिलिटी हो, जिसमें ना सिर्फ हम चिप डिजाइन करें, हम उसको फैब्रिकेट करके, मैन्युफैक्चर करके, उसको सॉल्यूशन में एम्बेड करके ग्लोबली सेल भी करें। चिप एक तरह से किसी भी मशीन का एक प्रोसेसिंग यूनिट या दिमाग होता है, चाहे वो हमारा मोबाइल कैमरा हो या हमारी कार हो या हमारी वॉशिंग मशीन हो, तो उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसमें स्टोर होते हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम भारतीय सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति के तहत टेक्नोलॉजी ला रही है, टेक्नोलॉजी बनाने वालों को ज्वाइंट वेंचर्स में ला रही है, हमारे डोमेस्टिक इकोसिस्टम में मार्केट तैयार कर रही है, स्किल्ड लेबर्स तैयार कर रही है, और उसके रिलेटेड जो हमारे एमएसएमईज या हमारे फार्मर्स हैं उनको भी तैयार कर रही है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है। जैसे हमारे फार्मर्स अगर यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अब हमारी भारतीय सरकार ने बहुत सारे एफटीएस भी साइन किए हैं जो कि एक ग्रोथ का इंजन बनेंगे टेक्नोलॉजी के साथ मिलके पूरे भारतीय इकोसिस्टम के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए और नॉर्मल भारतीयों के लिए भी।
0: 25 सालों के प्रधानमंत्री के एक नए दृष्टिकोण और भारत को विकसित बनाने की सोच और इस अविरल सफर ने इस साबित किया है कि जब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक अत्याधुनिक तकनीक आपस में मिलते हैं तो न केवल प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पर निर्णायक चोट होती है, प्रशासन में पारदर्शिता आती है, बल्कि एक समावेशी और सशक्त समाज तैयार होता है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जोड़ा जाता है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत को विकसित बनाने में भारत की यह परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसी विचार के साथ हम आज के कार्यक्रम के संस्करण को यहीं समाप्त करते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रसून शर्मा जी और शंकर अय्यर जी, आप दोनों का, कि आप कार्यक्रम में जुड़े और जन सेवा से देश सेवा इस श्रृंखला में आप शामिल हुए, अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 19वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा डिजिटल भारत तकनीक से परिवर्तन तक। इसमें भाग ले रहे थे आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा, इसका 19वां संस्करण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं क्रीड़ा जगत कार्यक्रम।

0: क्रीड़ा जगत के आज के संक में दोस्तों आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अमित, आपका भी स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार रेखा, और कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: अमित, लंबी प्रतीक्षा के बाद ये एशियाड संपन्न हुआ, जो कि 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के नागोया शहर में आयोजित किया गया था, और इसमें एक बार फिर से भारतीय खिलाड़ियों ने सिद्ध कर दिया कि हम किसी से कम नहीं।
1: बिल्कुल रेखा, 21 गोल्ड के साथ कुल भारतीय पदकों की संख्या 85 रही
0: जी।
1: और अलग अलग खेल में, बहुत से ऐसे खेल में भारत ने पहली बार पदक लिए। ओवरऑल एक पहले एक चार्ट हम अगर बता दें तो भारत को कुल 21 गोल्ड मिले
0: जी हाँ।
1: 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल मिले, कुल पदकों की संख्या 85 रही
0: जी हाँ।
1: अगर हम अलग अलग खेल की बात करें तो एथलेटिक्स में 1 गोल्ड 9 सिल्वर और 14 ब्रांच मेडल मिले।
0: मैं आपको रोकना चाहती हूँ, एथलेटिक्स में जो एक गोल्ड मिला 4x400 रिले रेस में, उसमें तो मेरी भी सांसें थम गई थी। मुझे लग रहा था जिस तरीके से हमारे ये टीम के खिलाड़ियों ने बैटन एक दूसरे को दिया, एक वक्त लग रहा था कि शायद हम दूसरे पोजीशन पे आए, लेकिन आखिरी बैटन लेकर जब रामराज दौड़ रही थी तो उनका जो स्टेप्स था वो कॉन्फिडेंट भरा था, और इतने कहे तो चपलता से वो दौड़ रही थी, वो स्वर्ण पदक मिला, मुझे मेरी सांसें थम रही थी, लग रहा था कि ये स्वर्ण तो हमारे कब्जे में आ जाए। हालांकि पुरुषों में कांस्य पदक मिला, वहां मलाल रहा हमें जी।
1: शूटिंग की अगर बात करें तो शूटिंग में 3 गोल्ड मिले
0: जी,
1: 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले
0: जी हाँ। और अमित, मैं बताऊं कि शूटिंग में भी जब सुनहरा पदक मिल रहा था, वो भी मैचेस मैंने बहुत ध्यान से देखा था, इतना सुकून लग रहा था। और अब हम बात करते हैं तीरंदाजी की। तीरंदाजी में बहुत शानदार सफलता मिली हमारी भारतीय टीम को, 5 स्वर्ण पदक मिले, 2 रजत पदक मिले और 2 कांस्य पदक मिले। मुक्केबाजी में भी हमने 3 गोल्ड मेडल जीते, यहाँ पे हमें रजत पदक नहीं मिला लेकिन कांस्य पदक

0: तीन हमें मुक्केबाजी में भी मिला, कुश्ती में भी हमने 2 स्वर्ण पदक हासिल किया, 2 रजत और 2 कांस्य पदक मिला। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम पदक तालिका में पीछे तो हुए
1: पीछे तो हैं,
0: जी,
1: लेकिन हमारी रैंकिंग भी ऊपर आ गई। 15वें नंबर से हम 4 नंबर पर आ गए रेखा,
0: बिल्कुल ये
1: तो ये
0: रैंकिंग
1: भारत का
0: हमारा
1: ऐतिहासिक
0: प्रदर्शन
1: प्रदर्शन।
0: रहा। लेकिन एक बात है, जो हम सोच रहे थे कि शतक का आंकड़ा पार करेगा हमारा भारत,
1: जो
0: इस बार
1: पिछले बार की तुलना
0: एक सौ
1: में
0: सात मेडल मिले थे, लेकिन इस बार हमें उतने मेडल्स नहीं मिले। लेकिन भारत ने कई ऐसे खेल हैं जिसमें कि शानदार सफलता हासिल की है
1: बिल्कुल
0: पहले
1: अलग
0: तो।
1: अलग अलग खेल में जो स्वर्ण मिले हैं
0: जी
1: रेखा, उस पे भी चर्चा हो जाए।
0: जी
1: जैसे शूटिंग में सुरुचि सिंह हरियाणा की और कमलजीत भी हरियाणा के थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और सबसे बड़ी बात थी कि एक ने कुश्ती और दूसरे ने चोट के कारण एथलेटिक्स को छोड़ा था,
0: जी
1: और उसके बाद उन्होंने नेशनल में भाग लिया। वही इस स्पर्धा में भारत की पहली एशियन गेम्स चैंपियन बनी।
0: जी हाँ, नीरू हांडा हरियाणा की हैं और टीना चेनाई हैदराबाद के खिलाड़ी हैं, और इन के 5 खिलाड़ी हैं, सुरुचि सिंह, कमलजीत, नीरू हांडा और कीनन चेनाई। और नीरू हांडा ने जहां व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक हासिल किया, वहीं मिश्रित में भी कीनन मिलकर भारतीय टीम के लिए शानदार रही। कबड्डी की हम बात करें,
1: कबड्डी में पुष्पा राणा के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम ने दबाव झेला, मुकाबला दर मुकाबला और भारतीय पुरुष टीम ने भी कबड्डी के
0: और एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे कि मैंने 4x400 मीटर रिले की बात कही थी, 4 धाविकाएं हैं, और अगर इनके संघर्ष की बात करें तो चारों की अलग अलग कहानी है। लेकिन एक साथ मिलकर जिस तरह से इन्होंने गोल्डन फिनिश किया, वाकई बहुत शानदार रहा। और इसमें एक खिलाड़ी हैं किरण पहल, हरियाणा की रही हैं, दूसरी हैं एम आर पुनप्पा, और तीसरी प्राची चौधरी उत्तर प्रदेश की हैं, और एम आर पुनप्पा कर्नाटक की रहने वाली हैं, और विद्या रामराज, जिन्होंने फाइनल में ब्रिटेन लेकर जो जीत हासिल की, वो है तमिलनाडु की खिलाड़ी। और ये सभी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई आर्थिक संकटों का मुकाबला किया और उसके बाद यहां तक पहुंची और एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण 4x400 मीटर रिले में महिलाओं को दिलाया।
1: कुश्ती में भी भारत को 2 गोल्ड मिले रेखा।
0: जी
1: सुजीत कलकल हरियाणा के हैं, फाइनल में 2-9 से पिछड़ने के बाद वापसी की ओलंपिक चैंपियन को और 11 सेकंड की जंग को उन्होंने
0: गोल्ड
1: गोल्ड में
0: मिला।
1: बदल दिया। पहरावा में बदला। गोल्फ की तो मुश्किल शुरुआत के बाद उन्होंने वापस की और भारत को हासिल किया।
0: और तीरंदाजी की बात करें तो आंध्र प्रदेश की हैं ज्योति सुरेखा वेन्नम, और इनके हम अपने कार्यक्रम में भी लगातार चर्चा करते हैं क्योंकि इनकी उम्मीदें थी। का प्रदीप है महिला कंपाउंड वर्ग में टीम इवेंट जो हुआ था उसमें इन तीनों ने मिलकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। चिकिता के साथ है, फिर डबल्स में मेडल मिला, चिकिता के साथ साहिल जाधव रहे, और मिक्स्ड कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल थे, जिसमें साहिल जाधव महाराष्ट्र के खिलाड़ी थे, गणेश आंध्र प्रदेश के, और कुशल दलाल हरियाणा के खिलाड़ी थे। इन सबों ने मिलकर मिक्स्ड कंपाउंड वर्ग का खिताब अपने देश के लिए हासिल किया और उसमें स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष कंपाउंड टीम की बात करें तो फाइनल में भारत पिछड़ा, फिर वापसी की और चीन को हराकर सोना झटका भारत ने, ये शानदार सफलता रही। और अगर हम महिला टीम की बात करें तो बहुत बड़ी सफलता है जिसमें झारखंड का भी योगदान रहा है।
1: बिल्कुल, दक्षिण कोरिया का 1998 से चला आ रहा दबाव तोड़ा भारतीय टीम ने। कीर्ति को कभी धनुष खींचने के लिए कमजोर माना गया, कुमकुम के परिवार के पास नया धनुष खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और अंकिता के पिता घर घर दूध पहुंचाते थे, फिर ऐसे खिलाड़ियों ने देश के लिए इतिहास लिख डाला। कुमकुम मोहोत महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, शूट अप तक फाइनल में पहुंचा, आखिरी निर्णायक तीर पर परफेक्ट 10 और भारत को पहली व्यक्तिगत महिला रिकर्व गोल्ड दिलाया इन्होंने।
0: जी और बॉक्सिंग की बात करें, लवलीना बोरगोहेन, और इस पे काफी उम्मीदें थी, प्रधानमंत्री ने भी इनके साथ मुलाकात की, और बहुत खुशी की बात है कि लवलीना ने अपने जन्मदिन के दिन ही, पिछले अगर एशियाड की बात करें जो हांगझोउ में हुआ था तो उसमें सिल्वर मेडल लवलीना ने लिया था, और इस बार अपने जन्मदिन के दिन उसने स्वर्ण पदक झटक कर अपना नाम रोशन किया।

0: वर्मा के तूफानी अर्धशतकों की मदद से भारत ने हसन नवाज की आक्रामक पारी के बावजूद रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर एशियाई खेलों के पुरुष क्रिकेट में अपने स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव किया। अभिषेक ने 28 गेंद पर 61 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 22 गेंद पर नाबाद 51 रनों की पारी खेली, जिससे भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 211 रन का बड़ा स्कोर किया। पाकिस्तान खराब शुरुआत के बाद 192 रन तक ही पहुंच पाया।
1: अब हॉकी की बात करना जरूरी है, क्योंकि पहली बार भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला टीम की बात करें तो कभी 1982 में एशियाई खेलों में सोना जीतकर भारतीय महिला टीम ने जो इतिहास रचा था, उसके बाद 44 सालों तक उस स्वर्णिम पल का इंतजार करना पड़ा।
0: बिल्कुल।
1: और भारत ने चीन को 1-0 से हराकर एशियाई खेलों का महिला हॉकी स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। निर्णायक गोल लाल रेमसियामी ने 10वें मिनट में किया और इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधे अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। और ये जीत सिर्फ गोल की जीत नहीं रही अमित, मैं आपको बताऊं कि ये उन बेटियों की जीत है जिन्होंने वर्षों की निराशाओं, हार और इंतजार के बीच भी हिम्मत नहीं छोड़ी।
0: बिल्कुल।
1: उन परिजनों की जीत है जिन्होंने अपने बेटियों को हॉकी स्टिक थमाई, छोटे शहरों, गांवों और मैदानों की जीत है जहां आज भी खिलाड़ी सीमित सुविधाओं के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। और पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो ये पहला मौका है जब दोनों टीमों ने एक ही एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और इसी के साथ पुरुष टीम ने भी लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 का टिकट हासिल किया। मौजूदा ओलंपिक की अगर स्पर्धा की बात करें तो उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीती थी, लेकिन मलेशिया को जिस तरह से फाइनल में उन्होंने 5-1 से करारी शिकस्त दी, तो ये एक बार एहसास हो गया कि भारतीय टीम में अभी काफी दमखम है और हॉकी में उनकी जितनी पकड़ है धमक है, कई टीमें एशियाई टीमें उनसे काफी पीछे हैं। 8 बार की ओलंपिक चैंपियन भारत ने देश की हॉकी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा और एशियाई खेलों का अपना 5वां स्वर्ण पदक भी इस वर्ष हासिल किया।
0: और इसके अलावा रेखा, कुछ खेल ऐसे रहे जहां की पहली बार हमने पदक जीता है।
1: जी।
0: जैसे मिक्स मार्शल आर्ट में सुचिका तारियाल ने महिला ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। 2026 में MMA पहली बार एशियाड में शामिल हुआ था। सॉफ्ट टेनिस की बात करें तो जय मीना ने पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर सॉफ्ट टेनिस में भारत को पहला एशियाई पदक दिलाया।
1: जी।
0: पोल वॉल्ट की बात करें तो बारानिका एल्गोबेन ने महिला पोल वॉल्ट में कांस्य पदक जीतकर पुरुष और महिला दोनों वर्गों को मिलाकर पोल वॉल्ट में भारत का पहला एशियाड का पदक रहा। रोइंग डबल स्कल्स में सतनाम और सलमान खान ने पुरुष डबल स्कल्स में कांस्य पदक जीता और यह इस स्पर्धा में भारत का पहला एशियाई पदक था।
1: और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पदकों का रंग बदला। महिला रिकर्व टीम की बात करें तो अंकिता भगत, कीर्ति और कुमकुम मोहर ने महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीता। इससे पहले 2022 में इस टीम ने कांस्य पदक जीता था। व्यक्तिगत महिला रिकर्व की बात करें तो कुमकुम मोहर ने इसमें स्वर्ण जीतकर इस वर्ग में भारत के लिए नया इतिहास बनाया। महिला व्यक्तिगत ट्रैप यानी कि निशानेबाजी प्रतियोगिता में नीरू ढाढा ने स्वर्ण पदक जीता। वह महिला व्यक्तिगत ट्रैप में एशियन गेम्स गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। और महिला व्यक्तिगत गोल्फ में प्रणवी उर्स का भी पदक रहा, स्वर्ण पदक रहा, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि रहा। ये तो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में शायद हम थोड़ा कम नाम सुने हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, काफी चर्चित हैं और गोल्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आप तो समझ ही गए होंगे अमित कि मैं किनका नाम कह रही हूँ। ये वैभव सूर्यवंशी हैं और एशियन गेम्स में इन्होंने इतिहास रच दिया है। इतिहास में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय टीम ने शनिवार को हुए फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता और उस वक्त वैभव की उम्र 15 साल 190 दिन थी। एशियन गेम्स के इतिहास में गोल्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय होने का रिकॉर्ड इससे पहले निशानेबाज सौरभ चौधरी के नाम था। उन्होंने 2018 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, तब उनकी उम्र महज 16 साल थी।
0: तो रेखा, आपने जब इस स्टार क्रिकेट खिलाड़ी की बात की तो कुछ और खिलाड़ियों की कहानी हम बताते हैं आपको कि दो पीढ़ियां एक जीत, 17 साल की कुमकुम ने परफेक्ट लगाया।
1: खास खास में आज दोस्तों हम इस दो पीढ़ियों की बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल रेखा, दो पीढ़ियों की जो बात हो रही है उसमें दो पीढ़ियां, लेकिन जीत एक ही है, देश के लिए खेलना, देश के लिए पदक लाना। और ऐसे ही खिलाड़ियों की हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एशियन गेम्स

0: 2026 में भारत की कहानी सिर्फ मेडल की ही नहीं है या उन खिलाड़ियों की कहानी है जिन्होंने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया बल्कि उसी दबाव को ताकत बना लिया। इनमें दो नाम सबसे
1: चर्चा में है।
0: एक 17 साल की युवा तीरंदाज कुमकुम मोहोड़ हैं और 35 साल की हॉकी गोलकीपर सविता पुनिया, और दोनों की उम्र में 18 साल का अंतर है। वही हमने कहा कि दो पीढ़ियां हैं लेकिन जिद एक है। खेल अलग अलग लेकिन दोनों की कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा ये है कि मुश्किल वक्त में देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ इन्होंने दिया।
1: कुमकुम के सामने साउथ कोरियाई तीरंदाज की चुनौती थी इस वर्ष। स्कोर 3-5 का था और स्वर्ण पदक दांव पर। एक सेट और खराब जाता तो कोरिया की खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत जाती। तीसरी वरीयता वाली कोरियाई खिलाड़ी के सामने 17 साल की अनुभवहीन भारतीय तीरंदाज थी। ऐसे मौके पर कुमकुम ने अनुभव की कमी को हिम्मत से पूरा किया। उन्होंने अगला सेट जीता और स्कोर 5-5 कर दिया। अब फैसला शूट ऑफ में होना था। कुमकुम ने निशाना साधा और तीर सीधे 10 पर लगा। कोरिया की खिलाड़ी सिर्फ 8 तक पहुंचे। उस एक तीर के साथ कुमकुम ने इतिहास रच डाला। वे रिकर्व में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। उनके नाम 2 गोल्ड और 1 सिल्वर है। उन्होंने दबाव में वही किया जो चैंपियन करते हैं, शांत रहकर सही फैसला।
0: और अब बातें हम करें सविता पुनिया की। महिला हॉकी फाइनल में चीन के खिलाफ आखिरी मिनट चल रहा था, भारत आगे था, गोल्ड के साथ लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक का टिकट भी दांव पे लगा था। चीन को पेनल्टी कॉर्नर नहीं पेनल्टी स्ट्रोक मिला, यानी गोलकीपर और गोल के बीच सिर्फ एक फासला था, या तो चीन बराबरी करे या भारत गोल्ड जीत ले। सविता गोल लाइन पर खड़ी थी और ऐसे क्षण में वर्षों की ट्रेनिंग, अनुभव और तैयारी एक ही सेकंड में परीक्षा बन जाती है। सविता ने बहुत ही धैर्य के साथ काम किया और शॉट को पढ़ा, दाईं ओर छलांग लगाकर गेंद रोक दी। उस एक बचाव ने न सिर्फ गोल्ड जीता बल्कि ओलंपिक का डायरेक्ट टिकट भी भारतीय टीम को मिला। 2 साल पहले सविता खेल छोड़ने के करीब थी और आज वही सविता एशियाड गोल्ड जीतने वाली टीम की अहम खिलाड़ी बनी।
1: बिल्कुल, और खास में इस जानकारी के बाद दोस्तों थोड़ी और बात। और आज तो हमारा कार्यक्रम ही एशियाड को समर्पित है।
0: बिल्कुल, होना भी चाहिए।
1: और अब थोड़ी हम अपनी कमियों को भी आंकें कि क्यों हमें किस किस खेल में नुकसान मिला है और किस खेल ने हमें पदकों का सम्मान दिलाया है, उसकी बात भी करें। टेनिस दल की भी बात करें क्योंकि 40 वर्ष बाद भी हमारे हाथ खाली रहे हैं। भारत ने इस बार 2022 के हांगझो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदकों का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया, लेकिन सोने की चमक उतनी फीकी नहीं पड़ने दी। हांगझोऊ में जिन 28 स्पर्धाओं में भारत ने स्वर्ण जीते थे उनमें से 20 इस बार हाथ से निकल गए। इसके बावजूद 13 नई स्पर्धाओं में भारत ने सोना जीतकर पदकों की कहानी को नया मोड़ दे दिया। यानी कुछ दरवाजे बंद हुए तो भारतीय खिलाड़ियों ने नए रास्ते खोले और चौथे नंबर पर कायम रहकर देश के मान को बढ़ाया।
0: सही कहा रेखा आपने। एशियन गेम्स की मेडल टैली पर अगर हम नज़र डालें तो भारत ने कई यादगार प्रदर्शन किए, लेकिन ओवरऑल तस्वीर ऐसी नहीं रही जिससे बहुत बड़ी छलांग हम कह पाएं। ऐसा कुछ मन में मलाल रह गया। पिछले एशियाड में भारत ने 106 मेडल जीते थे
1: जी।
0: और इस बार करीब 20% मेडल हमारा ओवरऑल कम रहा
1: जी।
0: गोल्ड मेडल की संख्या भी 28 से घटकर 21 हो गई। यानी जश्न मनाने की वजह तो है लेकिन आत्ममंथन करना भी बहुत जरूरी है। फिर भी नागोया ने भारत को सबसे बड़ी उम्मीद दी। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है ये प्रूफ हो गया। बस जरूरत है उसे समय पर पहचानने, सही कोचिंग देने और एक बड़ा मंच तैयार करने की।
1: बिल्कुल, और होंगझोऊ में भारत के स्वर्ण पदकों का बड़ा हिस्सा निशानेबाजी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी से आया था। इन तीन खेलों ने मिलकर 28 में से 18 स्वर्ण पिछली बार दिलाए थे। इस बार नागोया में इन खेलों ने पदक तो खूब दिलाए लेकिन स्वर्ण से चूक गए हम। निशानेबाजी के 7 स्वर्ण 3 हो गए। इसमें भी पिछली बार जिन स्पर्धाओं में स्वर्ण मिले थे उनमें से कोई बचा नहीं सके। वहीं एथलेटिक्स के सभी 6 स्वर्ण हाथ से निकल गए और हाथ एक लगा, वो भी 4x400 मीटर रिले में। तीरंदाजी में कुल पदकों की संख्या वही रही लेकिन स्वर्ण जीतने वाली स्पर्धाएं बदल गई हैं। लेकिन कई ऐसे खेल हैं जिसमें भारत ने छलांग लगाई है। 4x4 मीटर रिले ने हांगझो के रजत को स्वर्ण में बदला। महिला रिकर्व टीम ने कांस्य को स्वर्ण में बदला। कुमकुम मोहोड़ ने व्यक्तिगत रिकर्व में नया स्वर्ण दिलाया। मुक्केबाजी में हांगझो में कोई स्वर्ण नहीं मिला पर नागोया में 3 स्वर्ण पदक आए। लवलीना बोरगोहेन ने रजत को

0: स्वर्ण में बदला, तो परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने भी नई स्पर्धाओं में स्वर्ण जीते। कुश्ती में भी काफी कुछ बदलाव हुआ। सुजीत कलकल ने स्वर्ण जीता तो अमन सहरावत ने अपने पिछले कांसे को स्वर्ण में बदला। महिला गोल्फ में प्रणवी उर्स ने भारत का व्यक्तिगत स्वर्ण जीता। महिला हॉकी में भी कांसे स्वर्णिम आभा बिखेरने लगा। और कुछ खेलों में तो भारत ने अपनी बादशाहत कायम रखी। पुरुष और महिला कबड्डी में, पुरुष और महिला क्रिकेट में ये चारों स्वर्ण पदक भारत के नाम रहा। पुरुष हॉकी टीम ने भी अपना खिताब जताया। दूसरी ओर बैडमिंटन की बात करें तो तीन पदकों की संख्या घटकर एक रह गई, जबकि टेनिस और घुड़सवारी में भारत का खाता ही नहीं खुल सका। टेनिस दल 40 साल के बाद खाली वापस लौटा है, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। और भारतीय खिलाड़ियों ने 36 खेलों में से इस बार के एशियाई खेलों में चुनौती पेश की, जिनमें से 20 में पदक जीते। सर्वाधिक 24 पदक एथलेटिक्स में, जबकि सबसे ज्यादा स्वर्ण तीरंदाजी में जीते थे। नागोया में महिला और पुरुषों के भी आंकड़ों को देखा जाए तो महिलाओं की टीम को, महिलाओं को 11 स्वर्ण मिले, 11 रजत और 16 कांस्य पदक मिले। कुल 38 पदक महिलाओं के खाते में आए। पुरुषों की टीम को 7 स्वर्ण पदक मिले, 14 रजत पदक मिले और 17 कांस्य पदक मिले। और मिश्रित स्पर्धा में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक मिले। कुल 85 मेडल्स में ये आंकड़ा है महिला और पुरुष टीम का।
1: भारत एशियाई खेलों में पदकों का शतक नहीं लगा पाया, लेकिन 85 पदकों में से 22 ऐसे पदक रहे जो पहले कभी नहीं जीते थे। इनमें 2 पदार्पण खेलों मार्शल आर्ट्स और सॉफ्ट टेनिस में पदक जीतकर भारत ने इतिहास रचा। सूचिका तारियाल ने मार्शल आर्ट्स और जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में कांस्य पदक जीते। पुराने खेलों में भी नई उड़ान भरी भारतीय खिलाड़ियों ने। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग की डबल स्किल्स में पुरुषों की क्वाड्रेंट टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किए। कुछ खेलों में भारत ने पुरानी स्पर्धाओं में नई उड़ान भरी। निशानेबाजी में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन इस खेल में भारत ने 4 ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो पहले कभी नहीं मिली थी। महिला स्कीट टीम ने कांस्य, मिश्रित स्कीट टीम ने कांस्य और ट्रैप में 2 स्वर्ण पदक जीते। इनमें नीरू डाडा का स्वर्ण सबसे खास रहा। वह व्यक्तिगत ट्रैप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी।
0: पोल वॉल्ट की बात करें तो पोल वॉल्ट में बारोनिका को कांस्य पदक मिला। स्क्वाश में अनाहत को रजत पदक मिला। एकल स्पर्धा में लवलीना को 75 किलोग्राम हर वर्ग में स्वर्ण मिला। नेत्रा कुमानन को डिंगी स्पर्धा में कांस्य पदक मिला। सेपक टकरा में भारतीय पुरुष टीम को कांस्य पदक मिला। प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक हासिल किया। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। हॉकी महिला और पुरुष टीम दोनों ने एक साथ कमाल किया और 4 ओलंपिक कोटे भी भारतीय टीम को मिले, 2 हॉकी के जिसमें पुरुष और महिला के। इसके साथ ही तीरंदाजों को भी ओलंपिक का कोटा मिला। इस तीरंदाज में कुमकुम को व्यक्तिगत और चिकिता साहिल को मिश्रित टीम का कोटा मिला।
1: 5 की हैट्रिक पे रहे 5 खिलाड़ियों कुमकुम, नीरू, रुद्राक्ष पाटिल, गोलवीर सिंह और विश्या रामराज ने पदक की हैट्रिक लगाई, जबकि 23 ने 2-2 पदक जीते।
0: कुछ तीरंदाज ऐसे थे जो अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने में कामयाब रहे। तीरंदाजी में कुल पदकों की संख्या 9 रही, पर स्वर्ण जीतने वाली कई स्पर्धाएं बदल गईं। तो ये उपलब्धियां रही। और दोस्तों हम आपको बता दें कि तीरंदाज कुमकुम मोहोद और पहलवान सुजीत कलकल को जसपाल राणा पुरस्कार और राजा रणधीर सिंह पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आईची नागोया एशियाई खेलों में किए गए शानदार प्रदर्शन के आधार पर भारतीय ओलंपिक संघ ने उनका चयन किया है। आईओए ने एशियाई खेलों की सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए इन पुरस्कारों की शुरुआत की है। साल की शुरुआत में इन 2 दिग्गजों का निधन हो गया था। कुमकुम ने अपने पहले एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण सहित 3 पदक जीते हैं। उन्होंने महिला रिकर्व तीरंदाजी में दक्षिण कोरिया के लंबे समय से चले आ रहे दबे को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। आईओए आने वाले दिनों में एक समारोह के दौरान कुमकुम और सुजीत को सम्मानित करेगा।
1: जापान की संस्कृति और मेहमान नवाजी की शानदार झलक के साथ संगीत और रोशनी से सजे भव्य कार्यक्रम के बीच रविवार को आईची नागोया एशियाई खेलों का समापन हो गया। और इन खेलों के दौरान 353 से अधिक रिकॉर्ड बनाए, जिनमें कम से कम 50 विश्व रिकॉर्ड शामिल हैं। 2 सप्ताह से अधिक समय तक चले इस आयोजन के बाद एशिया के 45 देशों के खिलाड़ी मिजो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में समापन समारोह में शामिल हुए। समापन समारोह करीब 90 मिनट तक चला। ट्रैप निशानेबाज नीरू डांडा 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक विजेता खिलाड़ी के नेतृत्व में भारतीय

0: ने परेड में हिस्सा लिया। सफेद और नीले रंग की पोशाक पहने लगभग 30 भारतीय खिलाड़ी और अधिकारियों ने एथलीट परेड में तिरंगा लहराया। वन एशिया की समापन समारोह की अवधारणा को व्यक्त करने के लिए स्टेडियम के केंद्र में एक षटभुजाकार मंच बनाया गया था और यह शो का मुख्य आकर्षण था। भव्य समापन के दौरान इसे लालटेन से सजाया गया था, जो जापानी गर्मियों का एक विशिष्ट प्रतीक है।
1: बहुत शानदार तरीके से आगाज भी हुआ। और दोस्तों, हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, लेकिन चलते चलते एक छोटी सी बात। 144 करोड़ की जनसंख्या वाला देश क्यों पदकों में पीछे रह जाता है और काफी छोटे छोटे देश हैं जो हमसे आगे रह जाते हैं, ये बात सोचने पे विवश करती है कि हम कहाँ चूक रहे हैं। एशियाई खेलों में अगर भारतीय प्रदर्शन की बात करें तो हमारी तुलना में छोटी अर्थव्यवस्था और कम आबादी वाले देश हमसे काफी आगे बढ़ रहे हैं। करीब 3.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भारतीय है और 144 करोड़ की आबादी के मुकाबले बहरीन की अगर हम बात करें तो हमसे वो 70 गुना छोटी है। इसके बावजूद आबादी के अनुपात में बहरीन का पदक प्रदर्शन भारत से 200 से ज्यादा गुना बेहतर रहा। आबादी के हिसाब से यदि बात की जाए तो भारत से ऊपर रहा। दूसरे और तीसरे नंबर पर जापान और दक्षिण कोरिया है और ये सब देश भी आबादी में काफी कम है, लेकिन पदकों की यदि बात करें तो 12.3 करोड़ आबादी वाले जापान ने 83 स्वर्ण समेत 269 पदक जीते, जबकि करीब 5.2 करोड़ आबादी वाले दक्षिण कोरिया ने 39 स्वर्ण समेत 150 पदक अपने नाम किए। यानी भारत की आबादी जापान से करीब 12 गुना और दक्षिण कोरिया से करीब 29 गुना ज्यादा है, फिर भी जापान ने भारत से 3.2 गुना और दक्षिण कोरिया ने भारत से 1.8 गुना अधिक पदक जीते। ये बातें सोचने के लिए है और कई बार हमें सोचने पर विवश करती है कि कहां हम चूक रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी के बाद भी अगर रिजल्ट हमें उचित स्तर पर नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं, तो क्या कमी है, इस बात पर हमें सोचना होगा। और अगर हम बात करें तो कई मामलों में हम उज्बेकिस्तान से भी पीछे रहे हैं, बहरीन के बराबर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सोचना होगा और भारतीय एशियाई खेल महासंघ जो है वो भी इस पर सोचेगा कि अगली बार पदक का आंकड़ा कैसे बढ़े। दोस्तों, वक्त अब हमें कह रहा है कि कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव आ चुका है। इसी के साथ आज का ये अंक यहीं तक। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण, इसी के साथ अपनी दोस्त रेखा
0: और अमित को विदा दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हुए हैं। आइए आपको बताते चले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। तो अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिला कार्यक्रम। 4:50 से आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार और 5:02 से आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। पांच बजकर 30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोक। 6 आप पुनः सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। छह बजकर 2 से आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। 7 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 से आप सुनेंगे आदिवासी आंकड़ा। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे खड़िया भाषा में।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से देश सेवा के महासंकल्प के तहत आज पूरा देश विकास के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण की एक नई चेतना से जुड़ रहा है। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री ने दुनिया को एक मंत्र दिया है, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाकर हम कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं, झारखंड के तमाम जिलों में इसकी अनूठी मिसालें देखने को मिल रही हैं।
1: आज जब वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण असंतुलन एक गंभीर चुनौती बन चुका है, तब भारत ने दुनिया को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का सदियों पुराना मार्ग दोबारा दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिशन लाइफ के तहत प्राकृतिक संसाधनों के विनाशकारी दोहन को रोकने और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की मुहिम अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। इस विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
2: भारत अब दुनिया के साथ अपनी भागीदारी का और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड जैसे अभियान ऐसे ही लक्ष्यों की तरफ हमारे संकल्पों को मजबूत करते हैं। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके निर्माण का नेतृत्व करके भारत पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अपनी अवधारणा से दुनिया को अवगत करा चुका है। मिशन लाइफ इसी कड़ी में एक अगला कदम है। साथियों, मिशन लाइफ को विश्व के हर कोने में, हर देश में, हर नागरिक तक पहुंचाने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। हमें एक मंत्र को याद रखना है, प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं प्रकृति उनकी रक्षा करती है। मिशन लाइफ प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी हर इस लाइफस्टाइल को समाहित करेगा जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनाया था और जिसे हम अपने जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री के इसी विजन को धरातल पर उतारते हुए राज्य का साहेबगंज जिला आज पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आजीविका का एक बेहतरीन मॉडल बनकर उभरा है। साहिबगंज में मिशन लाइफ के तहत न केवल जंगलों को पुनर्जीवित किया जा रहा है बल्कि मृदा अपरदन को रोककर वन जीवों और इंसानों के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाया जा रहा है। इस वर्ष साहिबगंज वन प्रमंडल के विभिन्न रेंजों में 5 लाख से ज्यादा का अभूतपूर्व पौधारोपण किया गया है। पर्यावरण और स्थानीय परिस्थिति पर इसके दुर्गामी प्रभावों को लेकर साहिबगंज के वन प्रमंडल पदाधिकारी परवल गर्ग बताते हैं,
3: मिशन लाइफ भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है जिसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सभी चीजों को संग्रहित करना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हमारे जिला में हो रहा है वो पौधारोपण है। इस मानसून ऋतु में हमने लगभग 5 लाख से भी अधिक पौधे लगाए हैं और इससे आसपास के ग्रामीणों को अपने विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए, जैसे वो जंगल पर निर्भर रहते हैं, फल फूल दवाइयों जलावन सब चीज के लिए, वो सब में उनको मदद मिलती है। साथ ही रोजगार मिलता है पौधारोपण से। पौधारोपण के साथ साथ वहाँ जल एवं मृदा संरक्षण की कार्रवाई होती है।
1: वृक्षारोपण की यह मुहिम केवल कागजों या भाषणों तक सीमित नहीं है। साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड के राधा कृष्णपुर गांव में जब आप कदम रखेंगे तो आपके चारों तरफ हरियाली की

0: चादर दिखाई देगी। इस अकेले गांव और इसके आसपास के वन क्षेत्रों में इस वर्ष लगभग 50,000 से ज्यादा पौधा लगाए गए हैं। इस परियोजना ने सबसे पहला और बड़ा प्रहार स्थानीय स्तर पर होने वाले पलायन पर किया है। वन विभाग ने इस वन क्षेत्र की देखरेख और पौधों की सुरक्षा के लिए स्थानीय आदिम जनजातीय युवकों को मानदेय पर बहाल किया है। तालझारी वन क्षेत्र के सब बीट ऑफिसर प्रेम शाह इस बदलाव को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं।
1: प्रेम कुमार शाह, तलझारी रेंज में एसडीओ के पद पर कार्यरत हूँ। प्लांटेशन में हमेशा हम लोग निरीक्षण करते रहते हैं ताकि पौधे को बचाया जा सके। ये प्लांटेशन पिछले साल किया गया था। इन पौधों के होने से यहाँ के जीव जंतु और पक्षियों को आश्रय प्राप्त हुआ है। साथ ही पिछले साल से प्लांटेशन यहाँ किया जा रहा है जिससे यहाँ के लोगों को काफी रोजगार प्राप्त हुआ है। इन प्लांटेशन के तहत हम लोगों ने फलदार वृक्ष का रोपण भी किया है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ कुछ सकवा प्लांटेशन ये सब किए हैं। हम लोग हमेशा ग्रामीणों के साथ मिलकर ताकि वन विभाग का संबंध उनसे बना रहे और उनके सहयोग के माध्यम से हम लोग गाछ बचाने का कार्य और करते रहते हैं ताकि ग्रामीणों में तक जागरूकता भी फैलता रहे।
0: जिन आदिम जनजातीय और स्थानीय युवाओं को इस हरित क्रांति की रक्षा का जिम्मा मिला है उनके चेहरों की मुस्कान यह बयां करने के लिए काफी है कि कैसे सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर रुक करने वाले युवा अब अपने ही गांव और पहाड़ी इलाके में रहकर प्रकृति की सेवा भी कर रहे हैं और सम्मानजनक आजीविका भी कमा रहे हैं। तालझारी में तैनात स्थानीय गार्ड अनु मरांडी अपने अनुभव साझा करते हुए कहते हैं।
2: अनु मरांडी है और मैं तालझारी प्रखंड से बिलोंग करता हूं और तालझारी प्रखंड वन विभाग के द्वारा हमारे एरिया में राधा किशनपुर में यहां भी 50,000 गाछ लगा हुआ है और यहां का भी कुछ कुछ देखरेख करते हैं और हमारे एरिया गंगतिया में रोड साइड में बहुत सारा पौधा लगा हुआ है, गेबियन लगा हुआ है, उसका रखवाली करते हैं और काम भी मिला है, रोजगार भी मिला है। इस योजना से हमारे जीवन में या मेरा जीवन में बहुत बदलाव हुआ है।
0: साहिबगंज वन प्रमंडल ने इस पूरे अभियान में रणनीतिक समझ दिखाते हुए व्यावसायिक और औषधीय महत्व के पौधों को प्राथमिकता दी है। यहाँ बड़े पैमाने पर आम, सखुआ, केंदु, बांस और अन्य काष्ठीय पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों के बड़े होने के साथ ही ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आय के नए द्वार खुल गए हैं। जहाँ एक तरफ पौधों की मजबूत घेराबंदी यानी फेंसिंग करने से जंगली जानवरों से ग्रामीणों की फसलें सुरक्षित हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ इन पेड़ों से मिलने वाले उत्पादों ने कुटीर उद्योगों को बल दिया है। इस जमीनी बदलाव के गवाह बने स्थानीय ग्रामीण चुन्ना हासदा और फुलवंती मरांडी कहते हैं।
3: नाम है चुन्ना हल्दा। वन विभाग के थ्रू से काम परिवार में हम लोग किए इस गांव में। शुरू से कम 6 महीना काम चला और इस जंगल में हम लोग लगाए हैं। केंद और सखुआ पत्ता भी होता है और सागवान शीशम ये भी गाछ हमें लोग परिवार के रूप में खाते और लगाए हैं।
4: मेरा नाम है फुलवंती मरंडी। वन विभाग से जो हम लोग का ये काम चला है उसी से हम लोग को बहुत फायदा मिला है। वन विभाग में जो सखुआ का पेड़ लगाया है, केन का पेड़ लगाया है और बांस का पेड़ भी लगाया है और सखुआ का पत्ता से हम लोग पत्ता देते हैं बेचते हैं तो कुछ पैसा हो जाता है।
0: साहिबगंज की हरी भरी वादियों से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं राज्य के ही कोडरमा जिले की, जहां मिशन लाइफ का एक दूसरा पहलू जल संरक्षण एक जन क्रांति का रूप ले चुका है। दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर प्रकृति को कैसे सहेजा जाता है, कोडरमा इसका जीता जागता उदाहरण है। कोडरमा के ग्रामीण और शहरी इलाकों में जल संचयन के लिए सामुदायिक भागीदारी की एक नई इबारत लिखी गई है। जिले की जरगा पंचायत का कजहा टाड़ गांव, जो कभी पानी की बूंद बूंद को तरसता था और बंजर भूमि में तब्दील हो चुका था, आज वह गांव जल संरक्षण के कारण पूरी तरह हरा भरा हो चुका है। इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया है यहाँ की महिलाओं ने, जिनका नेतृत्व किया देश की जानी मानी जल योद्धा पार्वती देवी ने। पार्वती देवी अपने संघर्ष और सफलता की कहानी बताते हुए कहती हैं।
5: 300 पौधा

0: ओपन हुआ और 1000 वो यही टीसीबी कटा और मेड़बंदी होगा कर। बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सारा अनाज मिलेगा, धान चार गहूँ सरसों लोटनी मड़ुआ जौ बूट सब मिलेगा। अच्छा फसल होता है, बारिश के पानी जब से रुका है अपने आप खड़ा हो गया, सब कोई होने लगा, जागरूक बन गई।
1: जल संरक्षण के क्षेत्र में असाधारण और साहसिक प्रयास करने के लिए पार्वती देवी को देश के सर्वोच्च नागरिक मंच यानी राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके इस सम्मान ने पूरे राज्य की महिलाओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। आज कजहाटांड गांव की देखा देखी आसपास की अन्य ग्रामीण महिलाएं भी अपने अपने क्षेत्रों में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने में जुट गई हैं। गांव की ही एक अन्य महिला रिंकी देवी बताती हैं कि पानी रुकने से अब उनके खेतों और पशुपालन की सूरत बदल गई है। पानी का
0: जैसे कि
1: पानी
0: कोई
1: बंद
0: ऐसा ऐसा खेत है ना सर, जैसे कि पानी वहाँ जमा नहीं होता, खेती भी नहीं होता है। तो हम लोग टीसीपी काटे, मेड़बंदी किया ना, पानी जम जाता है तो फिर वही पानी हम लोग यूज करते हैं खेती करने के लिए।
1: मिशन लाइफ की यह लहर सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि कोडरमा के शहरी क्षेत्रों में भी लोग पानी की बर्बादी रोकने के लिए बेहद आधुनिक और जागरूक कदम उठा रहे हैं। झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र में करीब 10,000 घरों को वर्षा जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल संचालक और सामाजिक कार्यकर्ता अजय अग्रवाल ने इस मुहिम की शुरुआत तब की जब उनके घर और स्कूल का एकमात्र कुआं पूरी तरह सूख गया था। उन्होंने हार मानने के बजाय तकनीक का सहारा लिया। अजय अग्रवाल बताते हैं,
2: गर्मी की छुट्टी में हमने बड़े मन से ये पंसोखा बनाया एंड दिस इज नॉट जस्ट अनदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये पंसोखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग विथ इंटीग्रेटेड ओवरफ्लो वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम इन 3 स्टेजेस। जो हमने बचपन में कक्षा 6 में पढ़ा था कि पानी को कैसे फिल्टर किया जाता है, तो वो टेक्निक हमने इस्तेमाल की ओवरफ्लो पानी के फिल्टर करने के लिए। नहान घर और किचन से पानी निकलता है जिसमें साबुन और सर्फ का अंश होता है, उस पानी को बोलते हैं ग्रे वाटर। एक पनसोखा उसके लिए और तीसरा पनसोखा ब्लैक वाटर के लिए जो हमारे टॉयलेट से सेप्टिक टैंक से निकलता है।
1: कोडरमा में पर्यावरण के प्रति इस जागरूकता को बनाए रखने के लिए प्रशासन भी पूरी तत्परता से काम कर रहा है। जो नागरिक अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उन्हें न केवल प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्कि होल्डिंग टैक्स में विशेष छूट देने जैसे अनूठे प्रावधान भी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी विभाग खुद लोगों की मदद कर रहा है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अंकित गुप्ता इस प्रशासनिक पहल के बारे में बताते हैं।
3: मैक्सिमम लोगों की निर्भरता जो है अर्बन एरियाज में ग्राउंड वाटर लेवल पे ही है, तो हमारा उद्देश्य
1: वाटर
3: क्या है, हार्वेस्टिंग
1: हार्वेस्टिंग
3: स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना, लोगों को उसके लिए जागरूक करना, और जो बरसात के मौसम में जो हमारा पानी बह के वेस्ट हो जाता है उसको हम लोग सुरक्षित रूप से हार्वेस्ट कर सके, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन पे है उसमें जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो स्थायी रूप से बना रहे। विभिन्न जो हमारे पास टोटल होल्डिंग्स है 29,000 है, उसमें से लगभग 10 से 12 हजार जो होल्डिंग्स है उनके पास वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, मतलब 100% यूटिलाइज भी हो रहा है और मतलब सही साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है जिसके कारण वाटर रिचार्ज भी हो रहा है। उनके लिए विभागीय स्तर से भी होल्डिंग में उनको छूट देने का प्रावधान है।
1: बहरहाल साहेबगंज के घने जंगलों से लेकर कोडरमा के जल संचित गांव तक मिशन लाइफ ने यह साबित कर दिया है कि पर्यावरण का संरक्षण किसी एक विभाग या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सामूहिक कर्तव्य है। लगातार नीचे गिरते भूजल स्तर और तेजी से बदलते मौसम चक्र को देखते हुए आज पानी की एक एक बूंद को बचाना और धरती को हरा भरा बनाना हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और उनका अत्यधिक दोहन हमारे आने वाले कल को खतरे में डाल सकता है। साहिबगंज और कोडरमा के इन जागरूक नागरिकों ने यह दिखा दिया है कि दैनिक जीवन में छोटे छोटे और मामूली बदलाव लाकर हम न केवल पर्यावरण को बचा सकते हैं बल्कि प्रधानमंत्री के जन सेवा से देश सेवा के सपने को भी साकार कर सकते हैं। आकाशवाणी रांची के लिए साहेबगंज से आनंद कुमार ओझा और कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा के साथ समाचार कक्ष से मैं

0: कुंदन कुमार वर्मा।
1: इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन मिशन लाइफ पर आधारित हमारी यह विशेष प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। पर्यावरण को बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम सब भी अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लें। समाचार कक्ष की इस विशेष प्रस्तुति की संपादक हैं महविश रहमान और प्रवक्ता तथा आलेखकार कुंदन कुमार वर्मा के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त कामिनी को दीजिए इजाजत। इस यात्रा में झारखंड के बदलते स्वरूप को लेकर कल फिर एक नए विषय के साथ हम इसी समय आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम, लेकर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं दिल का रिश्ता फिल्म से, ये प्यारे से गीत के साथ। आवाजें अलका याग्निक की और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने, शब्द रचना समीर का।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिकित्सकों से चिकित्सा पेशे को केवल आजीविका का साधन न मानकर करुणा, संवेदनशीलता और निस्वार्थ सेवा का माध्यम बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज कहा कि डॉक्टरों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे मरीजों को आत्मीयता का अनुभव हो और संस्थान की प्रतिष्ठा भी बढ़े। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय चौरा में शिक्षकों की कमी को लेकर विद्यार्थियों ने आज आक्रोश जताते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने सिद्धो कान्हू चौक के पास टाटा पटमदा मुख्य सड़क जाम कर दिया। विद्यार्थी शिक्षकों की कमी दूर करने और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने कर उन्हें विद्यालय में वापस भेजने की मांग की। सूचना मिलने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर उनकी जनसमस्याएं सुनी और आंदोलन समाप्त करने का प्रयास किया। जमशेदपुर के सोनारी में कागल नगर गोल्डन टाउन स्थित सेटन पिंक सैलून से जुड़े 2,51,80,000 रुपए की कथित ठगी के मामले में पुलिस ने 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता के अनुसार फ्रेंडली लोन, बिजनेस पार्टनरशिप और सैलून में निवेश करने के नाम पर रकम ली गई है। पुलिस बैंक रिकॉर्ड, चैट और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडल गोलचक्कर के पास आज एक सड़क हादसे में चांडल पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैकेनिकल विभाग के छात्र प्रेम कुमार महतो की मौत हो गई है। इस हादसे में दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कॉलेज में शोक सभा आयोजित कर मृत छात्र को श्रद्धांजलि दी गई। देवघर नगर थाना क्षेत्र के नंदन पहाड़ मोहल्ला स्थित सेवाधाम के पास चोरों ने आज अहले सुबह SBI की ATM मशीन की चोरी की घटना को अंजाम दिया। 6 से 7 अपराधियों ने ATM मशीन को गैस कटर से काट कर बाहर निकाला, फिर रस्सी से बांधकर घसीटते हुए कार में लोड कर फरार हो गए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज से। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण पर एक नज़र डालते हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ही संगीतकार के संगीतबद्ध किए कुछ गाने। 5:30 पर होगा फिल्म संगीत का अगला कार्यक्रम। 6:00 हम आपको सुनवाएंगे मुख्य समाचार।

लगातार आकाशवाणी के रांची केंद्र से 6:30 पर होगा 6:02 पर आप सुनेंगे बंगला कार्यक्रम सातरंग। 6:30 पर सुनिएगा संथाली कार्यक्रम जिसमें लांगड़ी लोकगीत होगा मतांग हांसदा और साथियों के स्वर में। भेंटवार्ता होगी अंधविश्वास और ग्रामीण जीवन और तकार होंगे भोलानाथ टुड्डू। दो लोग ही सुनिए बंगाली हांसदा और साथियों के स्वर में। छह बजकर पचपन मिनट पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनेंगे फरमाइश श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। चर्चा होगी पालक मेथी धनिया और मूली की खेती। संथाली लोकगीत सुनिएगा दुखिया मार्डी और साथियों के स्वर में। आज के मेहमान के अंतर्गत भेंटवार्ता होगी शुकर पालन से लाभ। भेंटवार्ताकार होंगे कृष्णा कुमार और इनसे बातें करेंगे ठाकुर चंद्र मुर्मू। संथाली लोकगीत का आनंद लीजिएगा राम टुड्डू और साथियों के स्वर में। 8:00 आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 पर सुनिए आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 10:00 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 11:00 हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz से। श्रोताओं समय है कार्यक्रम गुलदस्ता का। गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। श्रोताओं आज आप गुलदस्ता कार्यक्रम में सुनेंगे एक ही संगीतकार रवि के संगीतबद्ध किए कुछ गाने। पहला गाना हमने लिया है फिल्म गुमराह से। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अगला गीत हमने लिया है फिल्म भरोसा से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और यही सुनते हैं अगला गीत फिल्म काजल से, गायक लगा रहे मोहम्मद रफी। श्रोता आज सुन रहे हैं एक ही संगीतकार रवि के संगीतबद्ध किए कुछ गाने।

क्षमा करेंगे, ये गाना मैं आपको नहीं सुनवा सकता हूँ किसी कारणवश। और आइए सुनते हैं फिल्म प्यार का सागर, इस फिल्म का गाना आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की है।

इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोता, आज सुन रहे थे एक ही संगीतकार रवि के संगीतबद्ध किए कुछ गाने। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से। कुछ ही पल में आप अगला कार्यक्रम सुनेंगे फिल्म संगीत का।

अभी आपने सुना फिल्म ससुराल का ये नगमा। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। और आइए सुनते हैं फिल्म सफ़र का ये गाना, आवाज़ें मन्ना डे की।

0: और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अगला गीत है फिल्म निकाह से। गायक लगा रहे हैं सोनू निगम और बाला सुलेख।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz से। कुछ ही पल में आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिकित्सकों से चिकित्सा पेशे को केवल आजीविका का साधन न मानकर करुणा, संवेदनशीलता और निस्वार्थ सेवा का माध्यम बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे मरीजों को आत्मीयता का अनुभव हो और संस्थान की प्रतिष्ठा भी बढ़े। डुमरी विधायक जयराम महतो ने राज्य सरकार से झारखंड में भाषा मित्रों के नेतृत्व में टीम गठित करने की मांग की है। मेदिनीनगर स्थित सर्किट हाउस में उन्होंने कहा कि टीम में ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो भाषा के क्षेत्र में काम कर चुके हों। रांची के गेतलसूद डैम पर निर्मित 100 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से फुल लोड उत्पादन शुरू हो गया है। इसके पहले 29 अगस्त को 50 मेगावाट उत्पादन शुरू हुआ था। इस प्लांट का निर्माण केंद्र सरकार के उपक्रम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी की मॉनिटरिंग में LNT कंपनी ने किया है। इसके निर्माण में करीब 488 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें वित्तीय सहायता के तौर पर विश्व बैंक की ओर से कुल लागत की 50% यानी करीब 244 करोड़ रुपए दिए गए हैं। धनबाद के IIT ISM में आज सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज ईस्टर्न जोन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने स्टार्टअप, नवाचार और स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। जमशेदपुर के सोनारी में कागल नगर गोल्डन टाउन स्थित सेटन पिंक सैलून से जुड़े 2,51,80,000 रुपए की कथित ठगी के मामले में पुलिस ने 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता के अनुसार फ्रेंडली लोन, बिजनेस पार्टनरशिप और सैलून में निवेश के नाम पर रकम ली गई। पुलिस बैंक रिकॉर्ड, चैट और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: জীবনের পথে পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ও 16 ফেব্রুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মেঘনাদ সাহা। শ্রোতা বন্ধু, নিয়ে নিচ্ছি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: फिरलाम विज्ञापन बिरतिर पर।

0: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब की।
1: মাতাং হাসদা আর সাঁওতেন কোয়া সাপড়াওতে লাগনে সারিমন আঞ্জম কিয়া।
2: उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं, याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: निये संदेश तैनम अंधविश्वास और ग्रामीण जीवन इदि कतेन मन बीएन टुडु तिकना थुतिबन अंजोमा।
4: समाज रेगे मार्शाल डाहरते हिजू लहाते आड़ी लेकान अंधविश्वास और बोंगा बुरु रे विश्वास दोहो काते को तहें कना। समाज रे चेत लेका अकील ज्ञान हेज इदीना, उनका गे दिसोम रीन समाज होड़ को अंधविश्वास डाहर बागी काते अकील ज्ञान डाहर को पंजा किया। आर जहाँ जाति रेनांग समाज रे ओल पढ़ाओ रेनांग ज्ञान डहारते बांग को रेलाओ लेना, ओना समाज रे दो नीत हो डाइन आर भूत रेनांग विश्वास मेना। नुआ विश्वास दो खाली मन मनाओ लगी सुमुंगे, नीतो मानवा समाज रे दो खाली आदिम जाति कोआ समाज रेगे नौकान विचार दो मेना। आदिवासी समाज रे विशेष कते लड़का सांताल मुंड और उरह समाज तलारे नौकान अंधविश्वास डेहर तेदगे मेना। आर नोआ रेनांग मुख्य कारण दो शिक्षा रेनांग अभाव। नीत धारिज हो आदिवासी समाज रे शिक्षा रेनांग विशेष आहला बांग उछेन अकाना। आर मिट्टंग कारण दो धन रेनांग अभाव होते ते होड़ होपन को ज्ञान डहारते बांग को लहा ओचो दड़ेया को कना। अंधविश्वास हो आड़ी लेकान मेना, जेमन जे ओकोई दो डाहनी रे विश्वास ओकोई दो भूत रे विश्वास। आड़ीगान समाज दो रुआ हासु रेहो ओझा गुनी आर सोखा कथाते चलाव कते सीम सुकरी मेरोंग भिड़ी बोंगा कते बेसो साना कुआ। होड़ समाज रे नौका हूँ विश्वास मेना, चे होड़ बोंगा काते ओना मायांगरे हुड़ूरे एम लेखान ओना बछर भागी हुड़ू हुयुआ। नुआ कदो सनाम गे भूल विचार कना। नीत हूँ आबोआ सांताल समाज रे आतु दिसोम रे डाहनी रेनांग आड़ीगान विश्वास मेना। जहाँ बूढ़ी एरा किंबा कुड़ी अभाव आर नाचारते बेस लेका बाय नाकी आर सजाव कते बेस लेका बाय होरो बांदे दड़ेया, उनी चेतान रेदो डाहनी रेनांग विश्वास हिजुआ। उनी गोज लेगे पापी मोने ताको दड़ा ओझा आर सोखा ओड़ा रे सुनुम आर चावले जांग को नियल ओचो कोआ। ओझा आर सोखा दो ओ शिक्षित होड़गे विशेष कते दो तहेना को दुख आकान होड़ को शोषण को बढ़ाया सीमजोम आर बीन रानते बेसो होर को उदु अकोआ सोखा दो समाज रे नियाव अणझेव को बढ़ाया अशिक्षित होर तलारे मरांग मरांग कथा लय कते समाज रीन होर को गुजु डहारते को ठेलाव को कना नित दो विज्ञान रेनांग विकास हुईना आड़ी लेकान रान को तैयारेना आर जहाँगे ब्रेन मलेरिया न्याम के दिया किंबा टीबी न्याम के दिया उनकुआ रान लगिन हो आड़ी आसानी ते हुयु कना आर होड को बेसो कना सरकार जगह जगह रे अस्पताले खुलवाका रुआ हासु खान अस्पताले डॉक्टर ठेन नेल ओचो कते रान इदी कते एमा कुआ लगती कना जहां लेकान दुग्गे होड़मोर तहन रेहो डॉक्टरी रान जोम कते बेसो गया को बोंगा बुरुदो मिटंग मन तल दहय होर कना समाज रीन होड़ा मनेरे भय जन्म काते समाज रे शांति दहय रेनांग होर कना जुदी समाज रीन होड़ा मनेरे चांदो बोंगा आर बोंगा भय बाय तहना इनंग खान समाज रे उत्पात हुयुआ आर शांति भंग आर समाज रेनांग उन्नति बाय हुयुआ जहाँ के जनम आकान होड़ को नुआ संसार मेना बोना सनाम कोगे आबो उहर रेंग दरकार आर कोनाते पाप आर पुण्य रेनांग भय को पैदा किया आर

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
2: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
1: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
3: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
0: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
6: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
5: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसबी कराई है।
6: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे रे, अरे कहाँ चल दिए
7: एनएसबी कराने?
6: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: अरे छुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
9: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
8: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
9: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
8: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
9: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
9: जी हाँ, कानून भी यही कहता है, शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
10: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
9: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
10: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
9: और लड़के की 21 वर्ष है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
11: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हम हमेशा अपनी प्रगति किसी और की तुलना में ही नापने के आदि होते हैं। हमारी पूरी
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिकित्सकों से करुणा और सेवा भावना के साथ काम करने का किया आह्वान। कहा, चिकित्सक दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा से पीछे न हटें। केंद्र सरकार ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन के साथ छोटे और मझौले उद्यमों में इक्विटी निवेश से जुड़े प्रस्ताव को दी मंजूरी। दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड में होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 6,000 पुलिस जवान तैनात। 5,000 होमगार्ड के साथ केंद्रीय बलों की होगी तैनाती। मौसम विभाग ने झारखंड में 9 अक्टूबर तक मेघ गर्जन और तेज हवा के साथ छिटपुट बारिश का जताया अनुमान। 10 अक्टूबर से मौसम साफ होने की उम्मीद। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को JSCA स्टेडियम में होने वाले दूसरे T20 मुकाबले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां अंतिम चरण में। दोनों टीमें कल पहुंचेंगी रांची। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से चिकित्सा पेशे को केवल आजीविका का साधन न मानकर सेवा और करुणा की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टरों को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़े और आने वाली पीढ़ियां उनके उदाहरण का अनुसरण करें।
1: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लॉजिस्टिक्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश भर में राजमार्ग, रेलवे लाइन, जलमार्ग, हवाई अड्डे और नए बंदरगाह विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में इक्विटी निवेश से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें MSMEs बहुत स्ट्रांग हैं। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का MSME ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड MSME और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: डुमरी विधायक जयराम महतो ने राज्य सरकार से झारखंड में भाषा मित्रों के नेतृत्व में टीम गठित करने की मांग की है। मेदिनीनगर स्थित सर्किट हाउस में उन्होंने कहा कि टीम में ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो भाषा के क्षेत्र में काम कर चुके हों।
3: जो भाषाविद हैं, जिन्होंने भाषा के क्षेत्र में कई रिसर्च किए हों, उनके नेतृत्व में एक टीम गठन हो और उनको ये कहे कि आप झारखंड का भ्रमण करें, गांव तक जाएं, अंतिम फायदान तक जाएं और वहां के लोगों से बातचीत करें कि वो किस भाषा में बात करते हैं और उसके अनुसार एक सकारात्मक रिपोर्ट सरकार के सामने वो प्रस्तुत करें और उस रिपोर्ट के आलोक में सरकार ये तो प्रखंड में जाकर भाषा का चयन करे ताकि लोगों में उनकी जो भाषा है वो पहचान उनकी कायम रहे।
0: इसके साथ ही विधायक ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। राज्य भर में 6,000 से अधिक पुलिस जवान और 5,000 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि त्योहार के दौरान अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। शांति समितियों को भी सक्रिय किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगी। पहले यह बैठक 12 सितंबर को तय थी, लेकिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और अन्य कारणों से 7 अक्टूबर कर दी गई थी। अब यह बैठक 8 अक्टूबर को होगी। भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला का विषय है डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस सेवा से सरकार की सैकड़ों योजनाओं से जुड़े लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नागरिकों तक आसानी से पहुंच रहे हैं।
4: कॉमन सर्विस सेंटर्स में आज सरकार की सैकड़ों सर्विसेज गांव के लोगों तक पहुंच रही हैं। ये कॉमन सर्विस सेंटर्स लाखों युवाओं को रोजगार का भी माध्यम बने हैं। आदिवासी क्षेत्र के नागरिक भी ये सेवाएं क्या है, ये सेवाएं कैसे ली जाती है, ये सेवा कितनी सार्थक है इसको भी जानते हैं और आज वो कॉमन सर्विस सेंटर से कमा रहे हैं।
0: डिजिटल इंडिया सीएससी सेवा से झारखंड के चतरा जिले में लोगों को सरकारी योजनाओं और वित्तीय सेवाओं में लाभ तो मिल रहा है, साथ ही लोगों के लिए यह सेवा जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन भी बना है।
5: मेरा नाम शिव पूजन कुमार है। सीएससी सेंटर चलाता हूँ मैं। यह सेंटर 5-6 साल से लगभग चला रहा हूँ। अपने दुकान में लोगों को डिजिटल सहायता पहुंचाने का काम करता हूं और इससे मेरे परिवार की रोजी रोटी चलता है।
6: मेरा नाम मोहम्मद साहबान है। कॉमन सर्विस सेंटर ने मेरी जिंदगी को बहुत सरल बना दिया है। सीएससी सेंटर एक छत के नीचे एक ही सारा काम आसानी से कर देता है, चाहे पैसा ट्रांसफर करना हो या किसी बीमा करना है तो किसी वृद्धा पेंशन।
0: बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति ऋतुराज, डीडीसी आशीष अग्रवाल समस्याओं की जानकारी लेकर समाधान का भरोसा दिया। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में आज सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज ईस्टर्न जोन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद ढुल्लू महतो ने युवाओं को स्टार्टअप, नवाचार और स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया।
7: सेवा फर्स्ट इनोवेशन 2026 के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जमीनी स्तर से हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं और आज सेवा संकल्प अभियान के तहत आईएसएम आईआईटी में इस ताके हम लोगों ने सारे वैसे अभ्यर्थियों से जुड़ने का प्रयास किया और उन लोगों को हम लोगों ने प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने कहा हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए।
0: और अब मौसम का हाल। झारखंड के मौसम में फिर बदलाव हुआ है। मौसम तक राज्य के विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। इधर राजधानी रांची और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 9 अक्टूबर को जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले दूसरे मुकाबले को लेकर सुरक्षा समेत सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। दोनों टीमें कल रांची पहुंचेंगी। एयरपोर्ट से होटल और होटल से जेएससीए स्टेडियम तक खिलाड़ियों के लिए विशेष रूट तय किए गए हैं। इन रूटों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। रामगढ़ कॉलेज में अंतर महाविद्यालय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। रामगढ़ कॉलेज की टीम चैंपियन बनी, जबकि हजारीबाग की कोलंबस कॉलेज उपविजेता रहा। कॉलेज ने और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिकित्सकों से करुणा और सेवा भावना के साथ काम करने का किया आह्वान। कहा, चिकित्सक दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा से पीछे न हटें। केंद्र सरकार ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन के साथ छोटे और मझौले उद्यमों में इक्विटी निवेश से जुड़े प्रस्ताव को दी मंजूरी।

0: दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड में होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 6,000 पुलिस जवान, 5,000 होमगार्ड के साथ केंद्रीय बलों की होगी तैनाती। मौसम विभाग ने झारखंड में 9 अक्टूबर तक मेघ गर्जन और तेज हवा के साथ छिटपुट बारिश का जताया अनुमान। 10 अक्टूबर से मौसम साफ होने की उम्मीद। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को जेएससीए स्टेडियम में होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां अंतिम चरण में। दोनों टीमें कल पहुंचेंगी रांची। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आज का

0: इस अंक में आप सुनेंगे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
1: देश भर में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस यहां 7 अक्टूबर से वोट बचाओ देश बचाओ अभियान चलाने जा रही है, जिसमें जिले के हर प्रखंड में रैलियां और सभाएं की जाएंगी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं विधायक सोनाराम सिंकू ने बताया कि इस देशव्यापी अभियान में पश्चिमी सिंहभूम जिला भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा।
2: SIR जब चालू हुआ तो हम लोग को देखने को मिल रहा है, आप सब जान रहे हैं कि कितने लोगों का नाम काटा जा रहा है और दस्तावेज देने के बावजूद भी उन लोग को दोबारा नोटिस दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग पूरे देश में वोट बचाओ देश बचाओ अभियान चालू किए हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये आह्वान किया है हम लोग को, चुनाव आयोग दिनेश कुमार जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं या उसको जेल की सलाखों में नहीं जाते हैं तब तक आंदोलन करना है सड़क से सदन तक। और ये जनता को भी हम लोग को जागरूक करेंगे, ये प्रखंड स्तर तक पंचायत स्तर तक ये आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। हमारे प्रदेश से भी लोग आएंगे, हर प्रखंड में हम लोग को ये विरोध प्रदर्शन करेंगे ये दिनेश कुमार के विरोध में।
1: अखिल भारतीय आदिवासी गोंड समाज की ओर से पिछले दिनों जिले के मनोहरपुर में रानी दुर्गावती जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से गोंड समाज के लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीरांगना थी, लेकिन इतिहास ने उन्हें भुला दिया।
3: समाज को कहीं भी स्थान नहीं मिला। अब धीरे धीरे हमारा समाज जागृत हो रहा है। रानी दुर्गावती जी के आज इस जयंती में हम लोग उपलब्ध हुए हैं। रानी दुर्गावती एक स्वाभिमान मानी रानी थी, वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहती थी और आज हम रानी दुर्गावती से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये रानी दुर्गावती का जो साम्राज्य था वो इतना समृद्धशाली साम्राज्य था।
1: चक्रधरपुर रेल मंडल ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत सभी रेलवे स्टेशनों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। खासकर गांधी जयंती के अवसर पर रेल क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाकर गांधी जी को याद किया गया। आज से ठीक 100 साल पहले गांधी जी जिले में आए थे और चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। इस बात को याद करते हुए चक्रधरपुर के मंडल रेल प्रबंधक तरुण होरिया ने कहा कि यह वर्ष इस लिहाज से विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के दिए हुए संदेशों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
4: आज से 100 वर्ष पहले गांधी जी उतरे थे, चक्रधरपुर शहर में आए थे, झारसुगुड़ा भी गए थे, हमारे डिवीजन में आए थे 1926 में और अभी इस साल 2026 है, तो ये साल बहुत स्पेशल है। गांधी जी के आए 100 साल हो गए और गांधी जी का संदेश फैलाना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए कि हमको सफाई रखनी चाहिए, आपस में भाईचारा रखना चाहिए।
1: स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दौरान जिले के अन्य स्थानों पर भी साफ सफाई का अभियान चलाया गया। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।

आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद आप सबों की है। गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, विनोद गोप, आशीष गोप, विकी गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप और शुभम गोप। बड़े बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, समीमा खानम, निम्मी बिट्टू, किरण रोशनी, परी मुस्कान, नविहा। बड़े बाजार चाईबासा से भगीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। गांव कोयड़ा से पोंडे बोईपाई, रेशनल बोईपाई, यशमती बोईपाई, कश्मीरा बोईपाई, मोनिका बोईपाई, सुनीता बोईपाई, मीनाक्षी बोईपाई और तारकेश्वर बांदा। मोहल्डिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविबारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अनु, तनु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पानी प्रधान, नीक पानी प्रधान। रुद्रपुर उत्तराखंड से राजीव, सुमन और आदित्य। बरियातू रांची से नीतीश, मेघा, आकांक्षा और अरब। वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोला राम, मथुर, मधुलकड़ा, नताशा और बेबी। बड़े बाजार चाईबासा से विनोद कुमार, पवन, मीना पवन। बड़ा बम्बू सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्यामदेव नायक और सीमा। ग्राम गिलियलोहर से कोमल बेसरा, बसंती, रमेश, अनु, बनमाली और सिद्धू कुमारी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म ब्लैकमेल का ये गाना, आवाज़ है किशोर कुमार की है।

अगली पसंद आप सबों की है। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और आसमानाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर रदीबा, सरीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी, छोटा निमरी चाईबासा से बाबूराम शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी और रोहन कुमार, चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमहिनी महतो, मनोरमा और दीनबंधु, न्यू कॉलोनी नीमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना देवी, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अंश, अंशु और अनीस, अमला टोला चाईबासा से फुलवंती गुप्ता, गोरख प्रसाद गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू, बड़ा निमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये नगमा, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज से, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
1: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
0: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
2: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
0: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
3: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मील चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
4: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
5: मैं APO का डायरेक्टर हूँ। मेरा APO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
6: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
6: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चसी भैया मसी को नेतवन आज में थनवा मीन बार जरूरी संदेश को नेतम दला खर्च कर मुचे ते आरंभ रसकलन के नवा संथाली लोक गीत ते राम टुडू आर सांतेन को सपड़ाते।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम आप फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। तो आइए, रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहली फरमाइश है भिलाई छत्तीसगढ़ से, मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म संगम का ये गाना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

बड़ी बाजार चाईबासा से भगीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हाथी मेरे साथी का गाना, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की है।

अगली फरमाइश है बोरखेड़ा पिरामल जिला उज्जैन से विनोद मुन्नत, कुमारी नेहा जैन, दीपक मयंक मुन्नत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, परी मुन्नत। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म साजन का ये नगमा। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

अगली फरमाइश है, सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा, बिहारी कॉलोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम, आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कसम वादे का ये नगमा। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

अगली फरमाई साहब सबों की, छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। आप सभी सुनना चाहते हैं जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का गाना। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है।

अगली फरमाइश छत्तीसगढ़ भाटपारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की है। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कशूर का ये नगमा। आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की है।

श्रोता सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। अगली फरमाइश आप सबों की सदाबहार रेडियो श्रोता संघ जिला बुरहानपुर मुकाम पोस्ट मोहत से मुशर्रफ खां तड़बी, जरीना तड़बी, मुबारक तड़बी, परवेश तड़बी, बिटिया रोजमीन तड़बी, तैमूर तड़बी, भैया तड़बी, रीना मुशर्रफ तड़बी, रोजूबाई तड़बी, सन्नी बाबू, परूप तड़बी और समस्त परिवार तड़बी परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कुदरत का ये गाना, आवाज़ें किशोर कुमार की है।

अगली फरमाइश है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से सुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सौतन की बेटी। इस फिल्म का गाना आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और साधना सरगम की है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का रजनीगंधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से, और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: का ये रांची केंद्र है, आपसे
1: वहीं से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए

0: 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने, तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत ये परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी।

0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतकम में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजीनगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
1: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
2: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
1: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई हैं।
3: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और उसमें यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ।
1: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों को सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
0: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Clears 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of the government. Defence Ministry inks 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Peaceful polling held for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. Results on Friday. Belgian-born scientist Francis Hausen wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. In men's cricket, West Indies set a target of 172 runs for India in first T20 of 5-match series in Lucknow. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning, briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
6: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8%,
7: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद न्यू रेलवे लाइंस, waterways, ports and airports. To ensure that all these developments are planned in an integrated and unified manner, the Prime Minister launched the PM Gati Shakti National Master Plan 3 years ago. Now keeping future requirements in mind, an integrated transport and logistics authority will be established to study and plan all these aspects.
6: Ek integrated transport and logistics authority ka nirman kiya jayega.
5: Mr. Vaishnav said the cabinet has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund for equity investments in small and medium enterprises.
6: इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का
7: 10,000 करोड़ रुपीस MSME growth fund will be established to provide long-term equity capital to MSMEs with strong growth potential. The fund will be operated with the support of the Ministry of MSME and the Ministry of Finance and will be professionally managed to ensure effective allocation of capital. The fund will place a strong emphasis on manufacturing-focused MSMEs, with nearly half of its corpus expected to be directed towards the manufacturing sector. This focus aims to support MSMEs in leveraging the significant growth opportunities emerging in the sector.
6: Manufacturing se related MSMEs, jinke liye bahut badi opportunities abhi aa rahi hai.
5: Prime Minister Narendra Modi in a social media post said, this cabinet decision is a big boost for MSME sector and a major step towards creating the next generation of Indian business leaders. He added that the Integrated Transport and Logistics Authority approved by the cabinet will bring greater coordination, data-led planning and multimodal integration across India's transport ecosystem. Prime Minister Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Mr. Modi stated this while interacting with Global System for Mobile Communications Association board members at Seva Teeth today ahead of the India Mobile Congress. The India Mobile Congress is scheduled to be held from 7th to 10th of this month in New Delhi. He emphasized the need to make technology and digital services affordable and accessible, particularly for the Global South, and highlighted the importance of taking technology to the last mile to prevent a widening digital divide. The Ministry of Defence has signed a contract worth over 660 crore rupees with BrahMos Aerospace Private Limited for procurement of BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was inked in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. With a minimum of 68% of indigenous content, the project encourages active participation of various Indian industries, including MSMEs. The BrahMos system, fitted on board various frontline warships, is the Indian Navy's primary surface-to-surface missile system for maritime strike operations. It will bolster India's maritime security architecture and defense capabilities. The Defense Research and Development Organization, DRDO, today conducted a successful flight trial of the indigenously developed high-altitude platform. On its successful flight trial, Defense Minister Rajnath Singh congratulated the team, saying it is an important milestone in India's Atmanirbhar Bharat journey towards realizing a long-endurance stratospheric airship. This is Akashwani giving you the news. For news at your fingertips, follow us on X at AIR News Alerts and join our WhatsApp channel, Akashwani News. The Union Cabinet today passed a resolution congratulating Prime Minister Narendra Modi for completing 25 years as the head of government. Mr. Modi first became the Chief Minister of Gujarat on 7th of October 2001. He went on to become the Prime Minister in 2014, and tomorrow he will complete 25 years at the helm of government. Addressing the media after the cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, Prime

0: मद्देनजर रखते हुए तवील मुद्दती कौमी ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार करेगी। जनाब वैष्णो ने मजीद कहा कि ये इदारा मुल्क में मरबूत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी के आला तरीन इदारे के तौर पर काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: काबीना ने छोटी और दरमियानी दर्जे की कंपनियों में सरमायाकारी के लिए 10,000 करोड़ रुपए के छोटे और दरमियानी दर्जे की कंपनियों के तरक्याती फंड के क्याम को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णो ने कहा कि ये फंड कारोबार के काबिल और फलने फूलने की हामिल आला कदरों वाली छोटी और दरमियानी दर्जे की कंपनियों के लिए तवील मुद्दती सरमाया फराहम करेगा। इसके अलावा ये फंड खिदमात, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा पर मबनी शोबों और स्ट्रेटेजिक वैल्यू चेन की भी मदद करेगा। काबीना ने हुकूमत के सरबराह के तौर पर 25 बरस मुकम्मल करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश करने वाली करारदाद को भी मंजूरी दी। जनाब मोदी साल 2014 में वजीर आजम बने और कल वो हुकूमती सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल करेंगे। इत्तला तो नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 25 साल मुद्दत कार भारतीय जमहूरियत के इस्तेकाम की गवाह है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि काबीना मीटिंग के लिए फैसले एमएसएमई शोबे और अगली नस्ल के भारतीय सनती रहनुमा तैयार करने में अहम कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ये फैसले एसएमईज को फलने फूलने, जदीद टेक्नोलॉजियों से हमाहंग होने, मैन्युफैक्चरिंग को उसअत देने, आलमी बाजारों में पहुंच बनाने और आलमी वैल्यू चेन से मरबूत होने के प्लेटफॉर्म की पेशकश करते हैं। वजारत दिफा ने भारतीय बहरिया के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर्स की सरकारी खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से ज्यादा के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे पर अंदरून मुल्क डिजाइन करदा, तैयार करदा और मैन्युफैक्चर किए गए साजो सामान को खरीदने के तहत नई दिल्ली में दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। कम अज कम 68% अंदरून मुल्क तैयार करदा साजो सामान के साथ ये प्रोजेक्ट एमएसएमई समेत मुख्तलिफ भारतीय सनअतों की सरगर्म शमूलियत की हौसला अफजाई करता है। वजारत ने कहा कि 3 बरस से ज्यादा के अरसे में ये प्रोजेक्ट रोजगार के मौके पैदा करेगा। ये भारतीय बहरी सिक्योरिटी ढांचे और दिफाई सलाहियतों को फरोग देने के साथ साथ अंदरून मुल्क जदीद टेक्नोलॉजी के सिलसिले में जारी कोशिशों के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। दिफाई तहरीक और तरक्की के इदारे DRDO ने देसी साख्त के तैयार करदा हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म HAPS की कामयाब आजमाइशी परवाज मुकम्मल की। वजारत दिफा ने बताया कि भारतीय फिजाइया सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन, शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दीगर शहरी इदारों के तालमेल के साथ ये आजमाइश अंजाम दी गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कामयाब आजमाइशी परवाज पर DRDO टीम को मुबारकबाद दी है। वजीर दिफा ने कहा कि ये स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाने में मुल्क के आत्मनिर्भर भारत सफर का अहम संग मील है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तज़किरा कर रहे हैं कि UPI के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
2: भारत के डिजिटल अदायगियों के इको निजाम में अक्सर तब्दीली आई है। ये हर शहरी के लिए अदायगी के एक सहल और महफूज निजाम तक रसाई के नजरिए पर मबनी है। अदायगियों का मरबूत निजाम UPI भारत के अदायगियों के قومی کارپوریشن این پی سی آئی نے تیار کیا ہے اور یہ بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے سلسلے میں ایک انقلابی قدم بن کر ابھرا ہے۔ گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उजागर किया कि यूपीआई अब सिर्फ हमारी सरहदों तक महदूद नहीं है।
1: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
0: 25 अगस्त 2016 को यूपीआई का आगाज किया गया था और महज एक दहाई में डिजिटल अदायगियों के सिलसिले में यूपीआई एक यकसर तब्दीली वाला कदम साबित हुआ, जिससे अदायगियां तेज, सहल और काबिल रसाई हो पाई। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए दिल्ली के एक तालिबे इल्म जतिन ने कहा कि जब से यूपीआई उनकी जिंदगी का हिस्सा बना है तब से चीजें आसान हो गई हैं।
2: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और उसमें यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ।
0: 2025 तक दुनिया की बरवक्त अदायगी का तकरीबन 49% हिस्सा यूपीआई का है। दिल्ली से भानु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
3: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल की 5 असेंबली सीटों और आसाम की एक लोकसभा सीट पर जिमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग पुरअम तौर पर मुकम्मल हो गई। तमिलनाडु के मदुरान तकम और धारापुरम, पुडुचेरी के थट्टन चावड़ी और मगरबी बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर में वोट डाले गए। आसाम के नागांव लोकसभा सीट में भी वोटिंग हुई। वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। सीनियर बीजेपी रहनुमा और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में कायदे हिजब इख्तलाफ राहुल गांधी के जरिए बार बार भारतीय इंतखाबी कमीशन और दीगर आईनी इदारों को निशाना बनाने पर उनकी नुक्ताचीनी की है। नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि सियासी पार्टियों को अवाम के फैसलों को कबूल करना चाहिए और अवाम की खिदमत करनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया कि वो अवामी हिमायत हासिल करने में नाकामी के बाद आईनी इदारों पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि आईनी इदारों को निशाना बनाना मुल्क और कांग्रेस पार्टी किसी के मफाद में नहीं है।
4: कांग्रेस पार्टी को 55 वर्ष इस देश में शासन करने का मौका मिला है और उसमें से 2 साल इमरजेंसी लगा के शासन किया और उस इमरजेंसी के समय में संविधान का प्रीएम्बल को बदल दिया। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और आज ये लोकतंत्र की बात करता है।
3: इससे पहले अपोजिशन पार्टियों ने खसूसी नजरसानी के अमले में मुबैना बेजाब्तगियों और चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का मुतालबे को लेकर पार्लियामेंट से इंतखाबी कमीशन के हेडक्वार्टर निर्वाचन सदन तक एहतजाजी मार्च निकाला। ताहम सिक्योरिटी अहलकारों ने इंतखाबी कमीशन की जानिब बढ़ते हुए उन्हें आकाशवाणी के करीब रोक लिया। इसके बाद लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा और दीगर हामियों के साथ आकाशवाणी भवन में दाखिल हो गए और उन्होंने इहाते में एहतजाज शुरू कर दिया। बाद में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत उन कांग्रेस रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया जो आकाशवाणी भवन के इहाते में धरना दे रहे थे। आज अपोजिशन के एहतजाज के सिलसिले में इंतखाबी कमीशन ने वजाहत की है कि सहपहर 4 बजे तक किसी भी सियासी जमात ने अपने नुमाइंदों के जरिए उससे मुलाकात का वक्त नहीं मांगा। एक प्रेस बयान में कमीशन ने कहा कि ताहम सहपहर 4 बजे उसे दिल्ली पुलिस से इतला मिली कि राहुल गांधी की क्यादत में अरकान पार्लियामेंट का एक वफद कमीशन से मिलना चाहता है और एक मेमोरेंडम देना चाहता है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने कहा कि 240 अरकान पार्लियामेंट के साथ इस मीटिंग की दरखास्त की गई थी और मुजवजा मकाम पार्लियामेंट एनेक्सी था। इंतखाबी कमीशन को यह दरखास्त गैर मामूली लगी जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। कमीशन ने कहा कि जाब्ते के मुताबिक ऐसी मीटिंग इंतखाबी कमीशन के अहाते में होती हैं। तिब्बत का 2026 का नोबेल इनाम बेल्जियम में पैदा होने वाले साइंसदान फ्रांसिस हेल्जन को दिया गया है, जिन्होंने जुनूबी खुद पर मौजूद बर्फ के एक बड़े जखीरे को खला से जमीन तक पहुंचने वाले पुरेसरार जर्रात यानी न्यूट्रिनोस की दरियाफ्त के लिए एक डिटेक्टर में तब्दील कर दिया। 82 साल प्रोफेसर हेल्जन अमरीका की विस्कॉन्सिन मेडिसन यूनिवर्सिटी में पार्टिकल फिजिक्स के माहिर हैं। उन्होंने उस बैन अलावी टीम की क्यादत की जिसने जुनूबी खुद पर आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी तैयार की। ये एक न्यूट्रीनो डिटेक्टर है जिसने 2013 में काम शुरू करने के कुछ ही अरसे बाद जमीन के बाहर से आने वाले इंतहाई ज्यादा तवानाई वाले न्यूट्रीनोस की निशानदेही की थी। हुकूमत ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को एयर चीफ मार्शल के रैंक पर 29वां चीफ ऑफ एयर स्टाफ मुकर्रर किया है। ये तकरीरी 31 अक्टूबर की दोपहर से नाफिजुल अमल होगी। जनाब दीक्षित एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की जगह लेंगे। मर्दों के क्रिकेट में 5 T20 मैचों की सीरीज के तहत लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले T20 मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत की जीत के लिए 172 रन का निशाना रखा है। वेस्ट इंडीज की टीम ने 19 ओवर्स और एक गेंद में 171 रन बनाए और वो ऑल आउट हो गई। अब से कुछ देर पहले भारत ने 5 ओवर्स में 2 विकेट पर 47 रन बना लिए थे। इससे कबल भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कसीर रुखी मनसूबा बंदी को बरुए कार लाने के लिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की मरबूत अथॉरिटी कायम कर ₹10,000 करोड़ भी मंजूर किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों की ये कहते हुए सिताइश की है कि इनसे MSME शोबे को खास तौर से फरोग हासिल होगा। मरकजी काबीना ने सरबराहान हुकूमत की हैसियत से क्यादत के मसलसल 25 बरस मुकम्मल करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। वजारत दिफा ने भारतीय बहरिया के जहाजों के लिए ब्राह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर्स की सरकारी खरीद के लिए 660 करोड़ के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी और मगरबी बंगाल के 5 असेंबली हलकों और आसाम में नागांव लोकसभा सीट के जिमनी चुनाव की पोलिंग पुरअम तौर पर मुकम्मल हो गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान साझेदारी और सतत विकास की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: स्कंद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: स्कंद जी। भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध और दबाव मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना साझा दृष्टिकोण रखते हैं और दो ये ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनके पास संसाधन संपन्नता, तकनीकी क्षमताएं और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता है, और दो ऐसे देश हैं ये जिनके पास मैत्री और पारस्परिक सद्भावना की एक लंबी परंपरा रही है। ऐसे में हम जब तमाम बातों का जिक्र करते हैं तब एक ऐसी अभिलाषा जो पेरिस समझौते से शुरू हुई थी, जिस तंत्र की हम बात कर रहे हैं, ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म की, जो हमारे सामने आज आई है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहां से इसकी जरूरत महसूस हुई, इसके बारे में बताएं।
2: इसकी पृष्ठभूमि अपने श्रोताओं के लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा। पेरिस एग्रीमेंट, देखिए, वैश्विक तापन की जिस तरह हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये पिछले 2-3 दशक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जनता के सामने, विश्व के सामने और सब संस्थाओं के सामने है। और 12 दिसंबर 2015 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पेरिस में साइन हुआ। 195 देशों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। और जो सबसे खास बात है उस एग्रीमेंट की, कि कुछ लीगली बाइंडिंग रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस या कमिटमेंट्स सब सिग्नेटरीज से लिए गए कि आप कार्बन एमिशन को कम करने के लिए अपने देश में क्या प्रयत्न करेंगे। इसमें जो बातें हुई उसमें ये है कि दुनिया का विकास हो, टिकाऊ विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, पर एक लो कार्बन, जो भी नई तकनीक आ रही है वो लो कार्बन की हो, जिससे कि विश्व में जो ऊष्मा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो तापमान जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जब औद्योगिकरण 17वीं शताब्दी कह लीजिए, 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ, उसपे 2% से ऊपर आ जाए। इस सब परिप्रेक्ष्य में अब हर देश को एक अपने विकास के किस अवस्था में है उसके हिसाब से सबने कमिटमेंट्स किए। भारत ने भी किए, हर देश ने किए, जापान ने किए। और एक जो नया इसमें एक रास्ता था आर्टिकल 6.2 पेरिस एग्रीमेंट का, उसमें देश या कंपनियां एक दूसरे के साथ कार्बन क्रेडिट्स का व्यापार कर सकते थे। तो ये इस तरह है कि मान लीजिए जैसे भारत है, भारत का बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और भारत एक नेट सेलर है कार्बन क्रेडिट्स का। जिस तरह से हमने अपना डेवलपमेंट किया है, बहुत सोलर एनर्जी और इस तरह का सब है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो भारत इस स्थिति में है कि कार्बन क्रेडिट्स दूसरे देशों को बेच सके और उसका ये रूप आज भारत जापान के बीच में किस तरह ये ट्रेड होगी उसका समझौता हुआ है।
1: स्कंद जी, ये जो एक रणतंत्र हमारे सामने रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य कहा गया है कि उन्नत तरीके से निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहिए। आपने भी इसी बात का जिक्र किया कि भारत सक्षम है ऐसा करने में, तो जलवायु वित्त जुटाने की जहां तक बात है तो भारत इन तकनीकों को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। आज हमारे पास जो तकनीक है, परियोजनाएं जो लगातार सरकार आगे लेकर के आ रही है, उनसे क्या लगता है कि इस तंत्र को कितना बढ़ावा मिलेगा, कितनी मजबूती आएगी उसमें?
2: बहुत बढ़ावा मिलेगा। देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे एल्यूमिनियम है, स्टील है और पेपर बनाने का है, उसमें भारत की जो मशीनें हैं वो पुरानी है भारत के उद्योग में, और उनके नवीनीकरण की, आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। तो जिस तरह जो ये एग्रीमेंट जापान के साथ हुआ है, तो जापान नई तकनीक जो उनके पास है उसको बहुत सस्ता भारत को देगा, जिससे भारत कार्बन एमिशन भारत की इंडस्ट्रीज के कम होंगे और भारत उस दिशा में आगे बढ़ेगा बिना बहुत पैसा खर्च किए। ये एक बहुत बड़ा लाभ इस जो आज एग्रीमेंट हुआ है ऑपरेशनलाइज, उससे भारत को होगा।
1: थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो 7 अगस्त 2025 को सहयोग ज्ञापन, 8 जून 2026 को नियमों को अपनाना और अब 30 सितंबर को परिचालन नियमावली जारी हुई, तो ये प्रक्रिया संस्थागत तैयारी के कार्यान्वयन को बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत इस दिशा में सबसे तेजी से प्रयास कर रहा है और जो भी तरीके हैं वो पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने और भरोसेमंद बनाने के लिए भी है, तो ऐसे में जेसीएम का कितना महत्व हमारे सभी के लिए हो जाता है?
2: जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कार्बन क्रेडिट की स्कीम का पूरा एक स्थापना की गई। होता क्या है कार्बन क्रेडिट, उसकी यूनिट्स मानी जाती हैं और एक यूनिट इक्वल टू करीब करीब 1 मैट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है।
1: जी,
2: और फिर एक ये प्रक्रिया भी स्थापित की गई कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे या कंपनी स्तर पर कैसे खरीदा बेचा जाएगा। उसके बाद भारत ने बहुत जल्दी इस पर काम किया और 2022 में एक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बनाया और एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के नीचे कैसे इंडिया की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम काम करेगी, कौन कैसे बेचेगा क्या करेगा, ये पूरा एक तंत्र उसके लिए बनाया गया। और जापान ने भी इसी तरह बनाया। उसके बाद जैसा आपने कहा 7 अगस्त 2025 को सबसे पहले एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन भारत और जापान के बीच में हस्ताक्षर हुए। 8 जून 2026 को रूल्स उसके बने, रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। और अभी जो कुछ दिन पहले भारत और जापान ने साइन किया वो है ऑपरेशनल मैनुअल फॉर ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म की कैसे इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। कि मान लीजिए वो भारत की कोई संस्था कुछ कार्बन क्रेडिट जापान को बेचना चाहती है तो जापान उसको कैसे खरीदेगा, कैसे अकाउंटिंग होगी उसकी, कहाँ उसका रजिस्टर रखा जाएगा और कैसे वो पैसा ट्रांसफर होगा। तो अब बहुत तेजी से इसकी जमीन पर ये स्कीम जो है वो उतर आएगी।
1: स्कंद जी, जेसीएम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भारत में उच्च स्तरीय उत्सर्जन कटौती और उत्सर्जन निष्कासन को बढ़ावा देना, तो इसका भारत के जो पर्यावरणीय लक्ष्य हैं, कम कार्बन विकास की दिशा में हमें काम करने की बात की जाती है, तो इसका व्यवहारिक असर आपको किस तरह से दिखाई देता है? कितना सक्सेसफुल होने के चांसेस आपको लगते हैं कि हाँ इस दिशा में आगे बढ़ने से हम जिन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं उनको प्राप्त करने में सक्षम होंगे?
2: अपना हमारा जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने के बहुत सारे स्रोत हैं। एक जगह जहां भारत सोलर या गैस उससे ऊर्जा का उत्पादन अधिक करना चाहते हैं, एक रास्ता ये हो गया। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगीकरण में जो कैपिटल इक्विपमेंट आता है उसमें अब नई तकनीक की आवश्यकता है जो कि ज्यादा कार्बन एमिशन उसमें ना हो। जैसे स्टील का मैंने जिक्र किया, उसमें कोक इस्तेमाल होता है, बहुत आता है, हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, इंडोनेशिया से मंगाते हैं, उसमें से कितना धुआं निकलता है, कितना कार्बन निकलता है, कितना जला देते हैं। ये जो नई नई तकनीकें हैं ये बहुत महंगी हैं। और जापान के साथ जो आज हमारा अभी कुछ दिन पहले एग्रीमेंट हुआ उसमें हमारा ईयू और यूके के साथ तो पहले से ही इस तरह का एक एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के साथ
1: जी,
2: कि हम अपना कार्बन क्रेडिट उनको बेचकर ये नई तकनीकें लें जिससे कि भारत के जो उद्योग हैं वो अपना नवीनीकरण कर सकें, अपना आधुनिकीकरण कर सकें और उनके कार्बन एमिशन कम हो जाएं। क्योंकि जो एक बड़ा भारी खतरा यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर मान लीजिए स्टील भारत यूरोपियन यूनियन को निर्यात करता है तो अगर वो एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी यूनिट से आ रहा है जिसका कार्बन एमिशन ज्यादा है तो वो उसके ऊपर कुछ टैक्स लगा देंगे
1: जी।
2: नॉन टैरिफ बैरियर वो लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भारत का ईयू के साथ जो समझौता, देखिए बहुत दिन से बात चल रही है एफटीए की और एक आध चीज उसमें अभी नई डिसाइड हुई, उसमें ये भी है, तो इसका एक बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकता है भारत के निर्यात पर अगर इस तरह का जो यूरोपियन यूनियन कोशिश कर प्रयत्न कर रहा है वो अगर और देश भी करे तो। इसलिए एक ये बहुत ही पेचीदा मामला है, पर जो जापान के साथ जिस तरह का हमारा एग्रीमेंट हुआ है और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, भारत के निर्यात पर उस पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा।
1: स्कंद जी, जिस तरह आप भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा अगर एक चीज मैं ये जोड़ना चाहूं कि भारत और जापान विशेष रूप से रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे में पारदर्शिता होना, भरोसा होना बहुत ही लाजमी है, तो अपने जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं उनके साथ में भी हम किस तरह के लाभ उठा सकते हैं? खासतौर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की आप बात कर रहे थे और भी तमाम क्षेत्र जिन पर असर पड़ता है, क्या क्या लाभ मिलने की संभावना नजर आती है?
2: देखिए जापान के साथ जैसा आपने कहा और आरंभ में भी कहा था, जिस तरह की हमारी मित्रता है और जिस तरह का एक कोऑपरेशन है, जापान ने भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है हमेशा। अगर आप देखें तो मेट्रो दिल्ली में और जो सब शुरू हुई वो जापान के ओडीए से शुरू हुई, अभी बॉम्बे टू अहमदाबाद देखिए, बहुत ट्रेन जो बन रही है बुलेट
1: बुलेट ट्रेन।
2: ट्रेन, वो जापान की तकनीक भी वहां पे आ रही है, वहां से धन कुछ असिस्टेंस भी आ रही है, लोन क्रेडिट आ रहे हैं, ये पूरा जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया, तो बहुत तरह से मैं समझता हूँ कि भारत और जापान के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हैं और सामरिक तो हैं ही, वो इकोनॉमी में आर्थिक केवल ये व्यापार वाला रिश्ता नहीं है, ये एक रिश्ता है जिसमें जापान बहुत भारत की औद्योगिक विकास में, मॉडर्नाइजेशन में, नवीनीकरण में और आधुनिकीकरण में बहुत योगदान कर रहा है, और जिस तरह का एग्रीमेंट अभी ये साइन हुआ उससे एक और रास्ता खुल जाएगा कि कार्बन क्रेडिट्स के मैकेनिज्म के द्वारा ये जो आधुनिकीकरण है उसकी फाइनेंसिंग हो जाएगी। देखिए दुनिया के बाजार में हर चीज मिलती है,
1: जी
2: पर हर चीज के लिए आपको धन चाहिए, भारत को भी अपना प्रायोरिटाइजेशन करना होता है, तो उसमें कुछ नई तकनीकें अगर एक और रास्ते से आ जाए जो ना आउटराइट परचेज का है ना एक ODA का है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का, मैं समझता हूँ भारत के विकास के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है।
1: जी एक अंतिम प्रश्न आपसे और पूछना चाहूंगा। अगर आगे की राह को हम देखें तो परिचालन नियमावली के बाद अब इस तंत्र की सफलता के मानक क्या होंगे हमारे लिए, और आने वाले समय में उत्सर्जन की कमी या तकनीकी हस्तांतरण जिस पर हम बात कर चुके हैं, और जलवायु वित्त के क्षेत्र में भारत जापान के किस तरह के परिणामों की उम्मीद की जा सकती है साझेदारी में?
2: मैं समझता हूँ कि अगले 6-8 महीने में और साल भर में कुछ न कुछ आंकड़े जरूर आएंगे कि जो ऑपरेशनलाइजेशन का जो समझौता कल परसों साइन हुआ है उसके अंतर्गत कितने कार्बन क्रेडिट्स, जैसा मैंने कहा कि 278 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स भारत आज तक दूसरे देशों को दे चुका है पिछले 10 वर्ष में, तो जापान को अब और कितने देता है, और ये देखिए एक ये खाका सा बन जाता है, तो दूसरे देशों के मान लिया ऑस्ट्रेलिया है या कोई और देश यूरोप के, आप और भी कोई चाहें कि भारत से कार्बन क्रेडिट्स को खरीदना चाहें और टेक्नोलॉजी तकनीक हमको देना चाहें,
1: जी
2: तो इस एग्रीमेंट के बेसिस पर और उसी टेम्पलेट पर दूसरे एग्रीमेंट भी बन जाते हैं, तो दूसरे एग्रीमेंट्स को करना बड़ा आसान हो जाता है, किसी और देश के कनाडा करना चाहे, अमेरिका तो खैर अब इस समय है नहीं, इस पेरिस एग्रीमेंट से बाहर ही निकल गए हैं, सबसे ज्यादा
1: जी
2: एमिशन वैसे उनका होता है,
1: जी जी
2: पर भविष्य बताएगा कि अमेरिका किस दिशा में जाना चाहता है जहां तक जलवायु परिवर्तन का सवाल है या वैश्विक तापमान का सवाल है, क्योंकि में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है उन दोनों की नीतियों में और उनके जो भी वो
1: जी
2: विश्वास करते हैं, तो वो तो भविष्य बताएगा, पर मैं समझता हूँ कि विश्व के और जो देश हैं अमेरिका को छोड़कर वो जलवायु परिवर्तन की गंभीरता से पूरी तरह चौकस हैं और उसको नकारते नहीं हैं और अपनी तरफ से सब मिलजुल कर बहुत प्रयत्न कर रहे हैं
1: जी
2: कि पेरिस एग्रीमेंट का वो अनुकरण करें और जहां तक हो सके उसमें जो भी कमिटमेंट्स जिस देश ने भी किए हैं कि वो अपना कार्बन उत्सर्जन कितना कम करेंगे, देखिए भारत में प्रधानमंत्री बार बार टारगेट्स वगैरह लगाते हैं
1: जी
2: कि हम 2037 तक इतना कर देंगे, फिर 50 तक इतना कर देंगे, ये सब क्योंकि ये तो देखिए विश्व के लिए है, विश्व की अच्छाई के लिए है कि प्रकृति का बिल्कुल ही नाश ना हो जाए, एनवायरमेंट का नाश ना हो जाए, और दूसरी चीज जो हम लोग दिल्ली में देखिए हमेशा एक पोल्यूशन की बात होती है, तो कैसे वो पोल्यूशन कम हो जो लोगों का हेल्थ भी अच्छी रहे, तो
1: जी
2: बहुत सारी इसमें बातें हैं जो इससे कवर होती है, और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है कि भारत और जापान मिलजुल कर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं,
1: जी
2: और ये एक टेम्पलेट बन सकती है और देशों को भी एक दूसरे का साथ देने के लिए, तकनीकी सबका आधुनिकीकरण हो जिससे पूरे विश्व को लाभ होगा, पूरे मानव समाज को लाभ होगा, मैं तो कहता हूं कि पूरी एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम,
1: जी
2: हमारे पूरे प्लैनेट को लाभ होगा।
1: जी स्कंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान साझेदारी और सतत विकास की संभावनाओं पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289 09 4044।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पे। श्रोताओं, आइए सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल।

इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का गजलों का कार्यक्रम महफिल अभी समाप्त होता है। श्रोता आज सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज़ में गजल। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पे। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग।

सुरों की रंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म ताजमहल से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर।

अभी आपने सुना फिल्म अनाड़ी का ये गाना, आवाज़ें थी लता मंगेशकर की। और आइए सुनते हैं फिल्म जब याद किसी की आती है। गायक कलाकार है महेंद्र कपूर।

0: டவுன்லோட் சேவை சார்த்திய.
1: अगला गीत है फिल्म साजन बिन सुहागन, गायक लगा है यशुदास।

कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं फिल्म। हमराही का ये गाना आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है।

0: इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का सुरों के रंग कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें MSMEs बहुत स्ट्रांग हैं। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीज का MSME ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड MSME और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था। आयोग ने कहा कि ये अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं निशाना बना रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की, भवन से हिरासत में ले लिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया। सम्मेलन में करीब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। निदेशालय ने करीब 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद किया जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास निगरानी कर रही थी। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने वेस्ट इंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8%,
4: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद न्यू रेलवे लाइंस, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान्ड इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो। नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड एंड इंटीग्रेटेड Transport and Logistics Authority will be established to study and plan all these aspects.
2: एक Integrated Transport and Logistics Authority का निर्माण किया जाएगा।
3: Mr. Vaishnaw said the cabinet has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund for equity investments in small and medium enterprises. Prime Minister Narendra Modi in a social media post said, this cabinet decision is a big boost for MSME sector and a major step towards creating the next generation of Indian business leaders. He added that the Integrated Transport and Logistics Authority approved by the cabinet will bring greater coordination, data-led planning and multimodal integration across India's transport ecosystem. Prime Minister Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Mr. Modi stated this while interacting with Global System for Mobile Communications Association GSMA board members at Sevatirth today, ahead of the India Mobile Congress. The India Mobile Congress is scheduled to be held from tomorrow till 10th of this month in New Delhi. Senior BJP leader and Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has criticized Congress Party and leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, for repeatedly targeting Election Commission of India and other constitutional bodies. Talking to the media in New Delhi today, Mr. Rijiju said political parties should serve the people and accept the electoral mandate.
5: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं
6: एवरी डे द ड्रामा दैट राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी कीप क्रिएटिंग ओवर द इलेक्शन कमीशन एंड द रिपीटेड अटैक्स दे मेक ऑन द सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू स्टॉप नाउ इन अ डेमोक्रेसी इफ यू सर्व द पीपल यू

स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह यानी कि 5:56 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।